0: ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको मुल्क में दस्तरस दें तो नमाज पढ़ें और जकात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है।
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ
0: और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद भी अपने पैगंबरों को झुटला चुके हैं।
1: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ
0: और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी।

والشمس تجري لي.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं।

ए नबी, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिबे जलालो करम है उसका नाम बड़ा बाबरकत है। सोदा

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, ज़िलक़ाद की 25 और मई की 13 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल और मशरक वुस्ता में जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने चीन और ऑस्ट्रिया की वज़राए खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सदर ने आइंदा बजट में पसमानदा तबकात को रिलीफ फ्राहम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों ने अदविया साजी के शोबे के फरोग के लिए 10 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। लबनान और मकबूजा बैतुल मकदस पर इसराइली हमलों में 14 अफराद शहीद हो गए हैं। रात कराची में ख्वातीन टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 153 रन से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम की जान माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में मुल्क की अमनो अमान की सूरत हाल से मुतालिक एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में बदउनवानी के खिलाफ अदम बर्दाश्त के लाहे अमल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को जदीद तरबियत और महारत से आरास्ता किया जाना चाहिए। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद में जेर तामीर जेल रवा साल सितंबर में फाल हो जाएगी। आज़रबाईजान ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों को सराहा है। ये 27 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान की गई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर खुसूसन मशरक वुस्ता में जारी अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आइंदा हफ्ते बाकू में मुनाकिद होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम की कामयाबी के लिए सदर इल्हाम अलीयेव के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा इस समर पर अफसोस जाहिर किया कि मसरूफ तरीन सरकारी उमूर के बायस वो जाती दार करते हुए आइंदा हफ्ते बाकू में मुनाकिद होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम की कामयाबी के लिए सदर इल्हाम अलीयेव के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ताहम उन्होंने

0: We'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।
1: One FM.

101 FM。

0: 101 FM。
1: The Artist Season 1

0: बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: मार का हक सिर्फ फतह नहीं, ये ईमान, इत्तेहाद और यकीन की जीत है।

0: जब कौम एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हौसले, बहादुरी और कामयाबी की ये दास्तां मार्काए हक,
1: मार्काए हक के लिए तैयार है
0: पाकिस्तान की शानदार फतह।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: जब दिल में ईमान हो और सफों में इत्तेहाद, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है।
1: ए दुश्मन ईमान देख जरा, मेरी कौम का एक एक वीर जवा, तेरी आँख में डाले आँख खड़ा।
0: तारीख गवाह है, ये सरजमीन हमेशा सुरखरू रही है और रहेगी, और इसका सबूत है मार्काए हक। पाकिस्तान की अजीम फतह, मार्काए हक सिर्फ जीत नहीं, ये कौम का फखर है।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

This is FM 101.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया और चीन के वज़ीरे ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। बरेसगीर के मारूफ उर्दू शायर और मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रात कराची में ख़वातीन टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के 153 रन से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। 101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी 1 आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: This is FM 101.
1: 101 FM.

0: जब दिल में ईमान हो और सफों में इत्तेहाद, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है।
1: दुश्मन ईमान देख जरा, मेरी कौम का एक एक वीर जवां, तेरी आँख में डाले आँख खड़ा।
0: तारीख गवाह है, ये सरजमीन हमेशा सुरखुरू रही है और रहेगी, और इसका सबूत है मार्का-ए-हक़।

जनाब, आज 13 मई हो चुकी है और 2026 का सीन है। पिछले साल के हवाले से जो भी मामला हुए थे, जो भी हालात वाक़या थे, जो हमने फतह हासिल की थी, इस पे बारहा बात हो रही है और हम भी कर रहे हैं, अपने तय कर रहे हैं और बहुत बात कर चुके हैं। लाइव शोज हमने जो रोड शोज़ किए थे, इनमें हमने बात की और बिल्कुल जनाब इसमें भी मैंने कहा था और आज फिर कहूँगा कि मार्क का एक हक के हवाले से मैं अभी बात कर रहा था कि ये इसी नज़रिए की झलक था, वो नज़रिया कि जिस नज़रिए के बिना पर ये पाकिस्तान बना था और इस नज़रिए की हिफाजत के हवाले से आज भी जो है इसकी हिफाजत के हवाले से, इसकी क्या कहते हैं कि इसके तहफ़ुज़ के हवाले से, इसको प्रमोट करने के हवाले से, इसको बुलंद बाला रखने के हवाले से हमेशा जो है ना ये कौम कोशा रहती है। तो बिल्कुल जनाब, मार्क का हक जो था वो इसी नज़रिए की झलक था, जहां पाकिस्तान ने ये साबित किया कि वो ना सिर्फ अपनी सरहदों का मुहाफिज है बल्कि अमन का अलमबरदार भी है। सो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी हवाले से, किसी भी चले दुश्मन की भी बात की जाती है, कभी पहल नहीं किया, लेकिन बात फिर वही कि जब हमें तंग किया जाता है या हमें आंख दिखाई जाती है या खुदा ना खास्ता हम पर उंगली उठाने की कोशिश या जसारत भी की जाती है ना, तो हम वो करते हैं जो कि इस दुनिया ने देखा था, तारीख ने रकम किया था कि नाको चने किस तरह से चुबवाए जाते हैं। सुनने में, लिखने में तो अच्छा लगता है, अजीब लगता है, लेकिन इसका अमली मुजाहरा जो है वो हमने बिल्कुल विटनेस भी किया था। तो जनाब, जब आजकल की सूरत हाल की बात की जाती है, आज के मामलात की बात की जाती है, चाहे वो खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल हो या आलमी सतह पर जो है वो तनाज़ियात का मामला हो, तो पाकिस्तान जो है, हमारी पाकिस्तानी रियासत जो है, ये जो पाकिस्तान की स्टेट है, ये जो गवर्नमेंट है, इस हवाले से हमेशा देखते हैं कि चाहे वो किसी भी दौर की हुकूमत हो, लेकिन हमेशा कोशिश ये की गई है कि पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा एक ज़िम्मेदार रियासत का जो किरदार अदा करने का सबूत है ना, वो दिया है। और बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान हमेशा एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर मुज़ाकरात, तवाज़न और क़याम अमन की जो है वो बात करता है और करता रहेगा, क्योंकि यही जो है ना पाकिस्तान की, इस मुल्क पाकिस्तान की, इसकी मुसल्ला अफवाज की असल पहचान है। और इस पहचान को अगर मैं तीन लफ्ज़ों में समोना चाहूँ ना, जो कि मैं अपने रोड शोज में भी कहता रहा हूँ, कि ताकत और तहमुल का हसीन इम्तिजाज अगर है ना, वो पाकिस्तान है।

0: जब कौम एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती।
1: इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम
0: हौसले, बहादुरी और कामयाबी की ये दास्तां मार्काए हक,
2: मार्काए हक के लिए तैयार है
0: पाकिस्तान की शानदार फतह।
3: पाकिस्तान
4: पाकिस्तान।
0: जब दिल में ईमान हो और सफों में इत्तेहाद तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है।
5: दुश्मन ईमान देख जरा, तेरी कौम का एक एक वीर जवां, तेरी आँख में डाले आँख खड़ा।
0: तारीख गवाह है, ये सरजमीन हमेशा सुरखरू रही है और रहेगी, और इसका सबूत है मार्काए हक। पाकिस्तान की अजीम फतह मार्काए हक सिर्फ जीत नहीं, ये कौम का फखर है।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफा कहते हैं शो लाइव है सिटी वाइब्स।

मुकम्मल जनाब 9:54 हुए चाहते हैं और बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहता है आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में। मुकम्मल जनाब जब भी मौसम की बात की जाती है आपसे हमेशा ये लाजमी

लाजमन कहा जाता है कि असल मौसम जो होता है वो इंसान के अंदर का, उसके दिल का, उसके मन का मौसम होता है। तो कोशिश यही किया कीजिए कि अपने दिल के, अपने मन के, अपने अंदर के मौसम को समरखा कीजिए, यानी कि अपने मिजाज को जो है ना वो आपने मोतदल रखना है, अच्छा रखना है, हशाश बशाश रखना है, खुशगवार रखना है। क्योंकि वो क्या है ना कि बाहर के मौसम जितने भी तल्ख हों, जितने भी तुंदो तेज़ हों, जब तक आपका मिजाज अच्छा है, आपका मूड अच्छा है, तो आप अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरों की ज़ात पर भी एक मस्बत वे में, एक अच्छे वे में असर अंदाज होते हैं। तो कौन ये नहीं चाहता कि लोग उसे इम्प्रेस हों, लोग उसे मुतासिर हों, मैं तो चाहता हूँ। तो कोशिश यही की जाती है और की जानी चाहिए कि एक अच्छे खुशगवार अंदाज के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ जो है ना वो तबादला ख्याल होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और मेल मिलाप होना चाहिए। वेल, मौसम की बात कर लेते हैं। आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है जनाब 33, यानी कि 33 हो गया है, और मैक्सिमम जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है जनाब 38 तक जाने वाला है, यानी कि 38, और मिनिमम की बात कर लीजिए 24 आज रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो आज रहने वाला है वो है 43%, यानी कि 43%। इसके साथ 6 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से आज हवाएं चलने वाली हैं। शाम के औकात में उम्मीद है कि मौसम खुशगवार हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जनाब फिर वही बात कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वेल, इसी के साथ कुछ ट्रैक शामिल करते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तमाम दस्तयाब वसायल बुरोएकार लाए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलिया और चीन के वज़राए खारिजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। बरे सगीर के मारूफ उर्दू शायर और मुजाहिद आजादी मौलाना हसरत मुहानी की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रात कराची में खवातीन टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलाक्वामी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 153 रन से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ओके जनाब, चलें तो कट ही जाएगा ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। आतिफ असलम की आवाज़ में इनसे पहले गालिबन मुसर्रत नज़ीर थी, और होपफुली आपने डोनर ट्रैक इंजॉय किए होंगे और महसूस हुए होंगे। वेल, 10:06 हुए, चाहते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना BGM जो है वो ऐड कर लेते हैं। चलें जी। वेल जनाब, 10:07 हुए चाहते हैं और आपके ऑनलाइन पैगाम भी कुछ ही देर के बाद रीड किए जाएंगे, और देखते हैं कौन कौन है, कहां से हैं, क्या बातें हो रही हैं। जनाब, सवाल आपसे ये है कि अगर आपके पास अकल है और आपके पास शऊर भी है, तो आपने मुझे इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है ना, जो डिफरेंस है, वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक बताना है, ठीक है? सो आपसे जानते हैं कि आप क्या कहते हैं, आपकी नज़रिए के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपकी अकल के मुताबिक, अकल क्या है और शऊर क्या है, ठीक है? वेल, इस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब, कल जो था 12 मई नर्सों का जो था वो आलमी दिन मनाया गया था, आलमी योम नर्स के नाम से, इंटरनेशनल नर्सिस डे के नाम से ये जाना जाता है। और ये एक नर्स थी जिनका नाम काफ़ी मुश्किल सा नाम है जनाब। ये नर्स थी फ्लोरेंस नाइंगेल के नाम से ये जानी जाती हैं। सो इनकी सालगिरह के हवाले से ये दिन जो था वो डेडिकेटेड था, और 92वीं ये जो नर्स थी कहलाई जाती थी, और शुमारिया दान भी इनको कहा जाता था, यानी कि जो स्टैट्स का इल्म रखने वाले जो अफराद होते हैं, इनको इस पर भी अबूर हासिल था। तो जनाब, इन मोहतरमा को, इन मौसूफ़ा को जो है वो जदीद नर्सिंग के बानी के तौर पर जो है ना वो याद रखा जाता है, और इनकी 200वीं सालगिरह जो है वो मनाई गई थी। मैं जनाब, हम इनकी सालगिरह से हट के भी, और इनके हवाले से ये जो दिन डेडिकेटेड है, इसे हट के भी तमाम जो नर्सिस हैं, चाहे वो मेल नर्स हैं, चाहे वो स्पेशली जब सिस्टर्स की बात की जाती है, हमेशा यहाँ पर तो हमारी जो ख़वातीन नर्सिस होती हैं, इनको सिस्टर्स कहा जाता है ना, सो क्या ही बेहतरीन इंसान होते हैं। मैं कहता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपने जाना है ना, डॉक्टर मिले ना मिले, नर्स अगर आपको नहीं मिले ना, तो आपका जो पेशेंट है, जो आपका मरीज़ है, खुदा ना खास्ता, वो हल्कान हो जाता है। उसके जो लवाहिकीन होते हैं साथ में, जो उसके दोस्त अहबाब होते हैं, वो भी जलील हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा होता है, और ये मैंने खुद विटनेस किया है। इस पर किसी भी किस्म का जो हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, इस पर कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा जो नर्स होते हैं ना, इन पे हमारे जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं। सो मैं, मुझे याद है कि मेरी नानी अम्मा पिछले साल, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। सो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी नर्सों के साथ, और क्या ही बेहतरीन अंदाज़ में वो उनकी खिदमत करती थी, करते भी थे। और मेरी नानी की अच्छी बात ये थी कि वो पैसे

0: भूसे भी दे देती थी। सो जनाब, तमाम नर्सों को, तमाम नर्सेस को, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही क्या कहते हैं कि एक बेलोस होकर जो है ना, वो तमाम इंसानों की, तमाम मरीजों की खिदमत करते हैं। सबको सलाम है, सबको सैल्यूट है। और कल का जो आपका गुजरा हुआ आलमी दिन था, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे ही हमेशा काम करते रहिए और इंसानियत की खिदमत करते रहिए। हमारे साथ एक कूलर मौजूद है, जानते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक हो? एफएम 101 की शान तो हमारी जान सर, मुस्तफा साहब।
0: सर क्या हाल चाल है, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
1: सर बोधी जट गल कर रहे हैं सर।
0: बोधी जट आ गए ने। बोधी साहब की हाल चाल है?
1: सर ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह सर, दुआवां तोड़ियां ने सर, जबरदस्त प्रोग्राम सर, तुहाडी आवाज सुनने वास्ते बड़ा बेचैन सर रहने
0: असीं। अच्छा, हां जी सर, साडी आवाज की, साडी आवाज की कुंगरो अज दे
1: जा रहे ने फैसलाबाद सर।
0: अच्छा जा रहे
1: ने, तुहानू सर सुन रहे ने सर इस टाइम गड्डी दे विच।
0: चलो सर, आरिफ साहब नु ते और न्याज साहब नु सब नु सलाम ते खैरियत नाल पहुंचो जिथे भी जाना है तुहानू मकसूद ते खैरियत नाल आपड़ो। ठीक हो गया
1: सर? सर खैर हो तो सर, प्रोग्राम बड़ा अच्छा है सर, तुसी अकल दी गल कर रहे हो, ते मार का हक दी सर गल कर रहे हो, ते सर साडी पाक फौज नु सर साडा दो हथां नाल सर सलूट है।
0: सलूट है जी, सलूट है, बिल्कुल सर।
1: सर साडी पाक नेवी भी सर इन्हां नु भी सलूट है सर, साडी जिन्नियां जिहड़ियां ने पाक फौजियां जो भी सर इन्हां नु खास सलूट है सर, ते इन्हां दे नाल सर खड़े हैं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर,
1: हां जी सर, ते बड़ा सोहना प्रोग्राम होता।
0: चलो सर, बड़ी मेहरबानी, खुश रहो, अच्छा लग गया ताड़े ना गल करके। ठीक है
1: सर, सानू भी अच्छा सर लगता तुहाडे नाल गल करके, साडे तमाम सुनणा सर सर सर सरिया इला की ने, ते ए सर वनोवन दी शान ने भी सर जितो आया काल, ते मैं ते कहना आउन ते तुहानू अच्छियां अच्छियां गल्लां सुनाऊं सर।
0: हां जी हो गया सर, इस टाइम जेड़ा ना काफी जेड़े कोल ने साडे सुत्ते हुंदे ने। इस तरह ही, चलो चलो सर, बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके जी। चलिए जनाब, वाइब बन चुकी है 04211111001, आपकी कॉल्स हम साथ साथ ले रहे हैं जी। अस्सलाम
2: वालेकुम सर।
0: ओके, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
2: सर जी न्याज देवर बात कर रहे हैं जी।
0: अरे न्याज साहब, अभी आपका जिक्र हो रहा था जी। जनाब कहाँ जा रहे हैं, खैरियत से हैं?
2: सर जी न्याज देवर ते आरव जट असी फैसलाबाद जा रहे हैं सर, गड्डी च सोवे हैं, प्रोग्राम देखो आवाज आएगी तुहानू।
0: क्या बात है सर। अच्छा तुसी तुसी ये सबूत देता है, गवाही देती कि साडी जेरी फ्रीक्वेंसी जा रही है उधर भी, कि नेट से सुन रहे हो?
2: सर गाना सुनाओ एक, तिया ते तन पराया वे बाबला, तू प्यार इना पाया वे क्यों बाबला।
0: अच्छा सर, मैं मैं मैं कोशिश करना, ते कोई और गाना भी हैगे ते दस दियो, ए गाना जोड़ा थोड़ा दुखी गाना है ना, समझा करो, सुबह सुबह दा टाइम। हां जी
2: ए चला दे ओ सर, बस्सी फैसलाबाद जा रहे
0: हां। अच्छा सर, अच्छा चलो सर, मैं कोशिश करना, ठीक है
2: सर। मार का हक नाल साडी पाक फौज जिंदाबाद सर।
0: बिल्कुल जनाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद
2: पंजाब पुलिस, जिंदाबाद बॉर्डर पुलिस, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जी, सारे साडे वीर आणगे जिन्ने साडे वीर ने।
0: ओके सर, बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखना, खैरियत नाल पहुंचो, ठीक है?
2: मुस्तफा भाई गाना सुनाना जी।
0: ओके ओके जी, ओके ओके, मैं कोशिश करना, जे नहीं चलाया तो माइंड नहीं करना तुसी, ठीक है?
2: नहीं सर, माइंड क्यों करना है,
0: ओके फिर से, ओके सर, अपना ख्याल रखना, ओके
2: वीर खुश रहे,
0: ओके सर, सलामत रहो, अल्लाह। Well, जनाब अगर आप ऑनलाइन पैगाम हम तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहाई आसान, एफएम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज एफएम 101 लाहौर ऑफिशियल लिखेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे। पेज के असल होने की निशानी ये है कि वहाँ पर आपको जो पहली पोस्ट नज़र आएगी वो मेरे शो से मुतालिक होगी। सो पहले आइए पहले पाइए के बुनियाद पर आप मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। आज जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। हेलो, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, ओके वेल जनाब 04221000101 और ओके जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व
0: बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल बात कर रहा हूं, लाहौर से।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल, क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, अर्सी के बाद आप शो करने के लिए आ गए।
0: हाँ जी जनाब, बस मैं बिजी था और एक दो असाइनमेंट्स थी उनके हवाले से काम कर रहा था, हो सकता है आपने सुनी हो। अरे सर बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल कहाँ होते हैं आजकल, कोयटा होते हैं, लाहौर होते हैं?
2: लाहौर, लाहौर 10 दिन के बाद हम कोयटा जाएगा।
0: क्या बात है, क्या बात है, 10 दिन के बाद कोयटा जाएगा?
2: जी इंशाल्लाह।
0: ठीक है, चलो खैरियत से जाओ। और कोई ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आती हो यहाँ पे या वैसे खाली आती आती हो? अच्छा सही है, सही है। क्या कहना चाहोगे अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल?
2: बिल्कुल, शो भी माशाल्लाह जबरदस्त है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जितना ज्यादा खूबसूरत समाचार सुन रहे हैं, और अपनी गलती पे शर्मिंदा होना समझदार लोगों की काम है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात।
2: जब भी कोई गलती हो जाए तो फिर उसको जो उसको सोच कर ले की कौन सी जगह पे मैंने गलत।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ओके बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जनाब 10:16 हुए चाहते हैं और साथ ही साथ आपके कॉल्स और ट्रैक्स शामिल किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम अपने मौजूदात के हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्किप ना हो जाए और वो कहीं रहना चाहें। सो कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
3: जी वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं बहन कैसी हैं, क्या हाल हैं आपके?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी आपने जिक्र किया ना कि जो हमारे आधे कलर होते हैं वो सोए होते हैं, मैं खूब हंस रही थी।
0: अच्छा अच्छा, आप इसी बात पे उठी हो लगता है ना?
3: बाकी नहीं, मैं मुस्कुराने लगी, मैंने कहा तो एक मैं भी हूँ।
0: अच्छा रिमशा बात कर रही है?
3: जी बिल्कुल, मैं लाहौर से निमशा बात कर रही हूँ।
0: अच्छी बात है, अगर कोई और होती उन्होंने माइंड कर जाना था। अच्छा रिमशा क्या हाल चाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
0: माशाल्लाह आपकी आवाज से भी लग रहा है और पहले से आप काफी जो है फ्रेश लग रही हैं।
3: आप भी नहीं रही थी?
0: मैं नहीं आ रही थी, हाँ मैं आज आ गई हूँ।
3: आप आ नहीं रहे थे,
0: आपने किसको कॉल किया है, मेरा नाम क्या है वैसे?
3: आज मुस्तफा।
0: अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा रिमशा मुझे ये बताएं कि अक्ल है थोड़ी बहुत?
3: बिल्कुल है। हाँ
0: हाँ जी हाँ जी, अकल और शोर के दरमियान आपको पता है क्या डिफरेंस है?
3: शोर जो होते है वो किसी काम का होता है, अकल जो होती है वो इंसान के अंदर अकल होगी तो वो आगे काम करेगा ना, कि ये इस तरह मैंने काम करना है। तो ये होता है, मगर वो दोनों मिक्स नहीं होते, मैं नहीं मानती कि दोनों मिक्स होते हैं, इनमें फर्क होता है, डिफरेंट होता है।
0: बिल्कुल ऐसी। अच्छा रिमशा
3: जी
0: जी जी रिमशा मुझे एक सवाल बताओ कि वो तमाम लोग जो कि अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगी?
3: बात सफा तो भाई हम लोग भी ऐसे होते हैं, हमने भी मुझे खुद भी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि मैं अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करती।
0: लेकिन कोशिश तो करते हैं ना, कोशिश तो आप करती होंगी, वो तो मैं भी करता हूँ, लेकिन करते ही नहीं है, सिरे से नहीं करते।
3: यही बात है ना, जब हम अक्ल से काम लेते नहीं है, फिर जब ऐसा कोई काम हो जाता है फिर हम कहते हैं कि वो हो हमें पहले अक्ल से काम लेना चाहिए था। जब तक हमें किसी काम में हमें मतलब नुकसान नहीं होता ना, हम जब तक अक्ल से काम नहीं लेते हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि अक्ल से काम लिया करें ताकि आपको बाद में नुकसान ना उठाना पड़े।
0: बिल्कुल ऐसी है, ठीक हो गया रिमशा।
3: फिर बाद में इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है, फिर हम कहते हैं कि जी हमारा बड़ा बड़ा इतना बड़ा नुकसान हो गया कि हमें पहले ही किसी से या तो मशवरा ले लेना चाहिए। अगर आपका अक्ल से अपनी अक्ल से काम नहीं कर सकते तो किसी के अक्ल का मशवरा ले लें कि वो क्या कहते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया रिमशा, बहुत शुक्रिया। और कुछ
3: कहना है सभी सुनने वाली समाजों को? सलाम, और मैं बड़ी खुश हूँ, अभी कसम से मैं कहती हूँ कि पता नहीं आप काफी दिनों से आ नहीं रहे थे और शो भी आपका नहीं हो रहा था, मैं सुन रही थी और मैं उठ भी रही थी, हर बुध को मैं उठती थी।
0: अच्छा।
3: लेकिन जब अचानक से आपने ये बोला ना कि आधे कॉलर जो होते हैं वो सोए होते हैं, मैं तो मैं भी शुमार हूँ, मैं भी सोई रहती हूँ।
0: ठीक हो गया रिमशा, ओके ओके बहुत शुक्रिया आपने ख्याल रखा, ठीक है
3: ओके ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
0: अच्छा, वो तमाम नए सुनने वाले जिन्होंने अभी हमें ट्यून इन किया उनको बताता चलूँ कि पिछले माह जो था कुछ बचत प्रोग्राम क्या कहते हैं इसको, जो हमने कुछ लाइव शोज किए थे, रोड शोज किए थे, और आप तमाम दोस्तों से बात की थी, कुछ चलते फिरते लोगों से बात की थी, और स्पेशली उनके तासुरात, उनके जज्बात जो थे ना रिकॉर्ड किए गए थे, और होपफुली आपने इंजॉय किया होगा, महसूस किया होगा कितने मज़े के मुकामात पर, कितनी मज़े की जगहों पर मैं गया था, और कितने अच्छे अच्छे लोगों ने जो था हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली अपना तबादला ख्याल किया था, इजहार ख्याल किया था। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
4: जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैर खैरियत से?
0: जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं?
4: मैं भी अल्लाह का करम। मुस्तफ़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप वापस आए,
0: अरे
4: अच्छा लगा आपको सुन के, अच्छा लगा आपकी आवाज को दोबारा।
0: अरे सर, आपका उसने समात है, क्या कहना चाहेंगे, शऊर और अकल के हवाले से क्या आपको कोई है, कोई डिफरेंस करना आता है, फर्क करना आता
4: सर? हमें अगर अकल होती तो हमें ये पता होता कि अकल में, अकल जो है वो सही और गलत की पहचान का नाम है, और शऊर जो है वो हमें आगाही ही होती है, लेकिन हम फिर भी, हमें सही और गलत का पता होता है, मगर फिर भी हम शऊर के तहत कुछ फैसले करते हैं जिनके नुकसानात या फिर जिनके फायदे हमें बाद में जाके पहुंचते हैं।
0: ठीक है, अच्छा आप अपना नाम बता दे जरा दोबारा, कौन बात करें
4: सर? आप मेरी आवाज नहीं पहचानेंगे।
0: अच्छा बताएं जरा तमाम सुनने वालों के, हमारे सुनने वालों को पता चले कि कैसे कैसी हस्तियां जो ना हमें इतना संजीदा होके कॉल कर रही होती हैं।
4: आपके फैन सर।
0: अरे सर आप हमारे फैन, हम आपके ऐसी हैं। आज ही अरहम बट नन अदर देन। अरे अरहम क्या हाल चाल है, खैरियत से हो?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: मैंने आवाज पहचानी, मैं पहले क्या यार पता नहीं कौन अंकल बात कर रहे हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार अड्डा भी कोई बूढ़ा बंदा नहीं है।
4: अच्छा, इतना बूढ़ा बना देता
0: मनु यार। नहीं माशाल्लाह यार, आप जैसे बात करते हो जितने सुलझाओ के साथ और जितने रख रखाओ के साथ, वो ऐसे लगता है कि कोई बहुत ही, कोई क्या कहते हैं कि सीनियर सिटीजन जो है ना वो कॉल कर रहा है, बात कर, ऐसे ही मुझे ऐसा लगा।
4: अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। और मैं बड़ा मिस कर रहा था प्रोग्राम को, अपने दोस्तों को, तो मैंने कहा कि सुन लेते हैं और फिर साथ कॉल भी कर लेते हैं।
0: मैं लिटरली आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे कभी मुलाकात होगी और मिलेंगे, सही है,
4: जल्द मुलाकात होगी। और पाक फौज को और पाकिस्तान के तमाम तर जितने भी जवान हैं उनको सलाम, और हमने हमेशा दुश्मन को जो है वो धूल चटाई है, और इस बार भी हमने धूल चटाई है, और इसी तरह अच्छा प्रोग्राम करते रहे मुस्तफा।
0: अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप भी करते रहे।
4: सही
0: वाइब बन गई सुबह की आज। क्या बात है, क्या बात है, लेकिन फिर भी आपकी वाइब को मिस किया जा रहा है और किया जाता रहेगा जब तक आप नहीं आएंगे, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, लव यू, ओके, वालेकुम अस्सलाम। वेल जनाब, ये थे आज अरहम भट्ट, और मैंने ऐसे रैंडम कॉल की ली है, और मैंने सुना बात की, और बात करते दौरान मुझे एहसास हुआ यार तो कोई अपना ही बंदा लग रहे हैं। सो कुछ होते हैं ना लोग, ऐसे होते हैं कि एक आपके साथ उनका दोस्ती का एक तो ताल्लुक होता है, लेकिन जब एज अ लिसनर आते हैं तो अपने लिसनर होने की जो ज़िम्मेदारी होती है उसको भी बखूबी अदा करते हैं। सो उस ज़िम्मेदारी के पेश नज़र मुझे ये गुमा हुआ कि हो सकता है कोई और हो, फिर हो सकता है कि अरहम हो। सो हमने बूझ लिया और अरहम बट निकले। अरहम, मैं आपको तमाम समातों को बताना चलूँ, तमाम सामीन को, कि हमने इकट्ठे काम किया तकरीबन 2 से 3 साल हमने एक साथ काम किया, एक निजी रेडियो चैनल पर हमने लाइव शोज़ किए थे, और बहुत सारा हमने हल्ला गुल्ला किया था, फन किया था, चाय पीते थे, शरबत पीते थे, शरारतें करते थे, सब कुछ खाते पीते थे। सो अच्छी यादें होती हैं, अच्छी मुलाकातें होती हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये होती है कि आप किसी नई जगह पर जाते हैं, एक नए इदारे में जाते हैं, रेडियो पाकिस्तान पर आते हैं, और वहाँ पर भी आपका जो साथ है ना, आपका जो एक वो दोस्ती वाला मामला है वो दोबारा से जारी हो जाता है। सो ये बड़ी अच्छी बात होती है। अरहम जीते रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। और अरहम की सबसे अच्छी बात यह है कि जिसका जो क्रेडिट होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, ये उसको ऑन करता है, उसको देता है, और इसको पता है कि किसको किस तरह से कितनी रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन होती हैं कुछ बातें, कुछ मामलात हो जाते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट हम सब इंसान हैं, मैं खुद इंसान हूँ, हम सब खताओं के पुतले होते हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारा जो अच्छा ताल्लुक है, अच्छा एक जो मामला है वो कायम व दायम रहना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके वेल जनाब, 04221100011 रابطے का नंबर जानते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: जी वालेकुम अस्सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
5: सर आपने अरहम भाई की आवाज पहचान ली, आज मेरी आवाज पहचानने वाला है कौन बात?
0: आप नवीसा बात कर रहे हैं?
5: यस यस यस।
0: अरे क्या बात है सर, क्या बात है नवीस साहब, क्या हाल चाल है?
5: सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज जा रही है, सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम पहले और बाद में
0: वालेकुम सलाम। जी जी,
5: हमारी पाक फौज जिंदाबाद, हमारी नेवी जिंदाबाद, हमारी पंजाब पुलिस जिंदाबाद, और जो जो भी हमारे अदारे हैं, और सबसे पहले तो हम सब अपनी आवाम को सलूट करते हैं, जो 25 करोड़ आवाम उनके साथ शाना बचाना खड़ी थी।
0: सही, बिल्कुल सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सबको सलाम, सबको सलाम।
5: हाँ तो सब सबसे ज्यादा सर जी असद भाई को सलाम।
0: जी जी जी जी जी जी,
5: उस वक्त में भी हमें 24 घंटे इस प्लेटफॉर्म में से हर लोगों को बताया, कब ये हुआ, ये हुआ, वैसे किया, और
0: बिल्कुल।
5: और आपके स्टेशन डायरेक्टर हैं सुहेल बसरा साहब,
0: जी जी,
5: उनका भी मेरा सलाम।
0: अरे सर सबको सलाम, सबको सलाम, और सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये आपकी बात बजाय सबकी काविशें हैं, स्पेशली जब बात की जाती है हमारे स्टेशन डायरेक्टर की, हमारे प्रोड्यूसर्स की, और स्पेशली आज असद अब्राज साहब जो हैं, असद डॉग्स हैं, क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। और मुझे खुद याद पड़ता है कि जब ये मामला हुआ था, ये तमाम तर हमने हालात व वाकयात विटनेस किए थे, मैं रात को जाग रहा था, आज ज़िया अंजुम थे, ये आज डॉग्स थे, और हमारे ज़ुबैर साहब थे, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर थे, और सुबह के वक्त भी हमारे SD साहब थे, रेहा अल्ताफ थी, अरहम थे, ये तमाम अहबाब थे, तमाम लोग थे, तमाम दोस्त थे। इनकी आवाज़ें, इनकी एनर्जी ने हमें, जो स्पेशली जब मैं अपनी बात करूँ, मैं आउट ऑफ सिटी था, लेकिन बावजूद इसके मेरा दिल चाह रहा था मैं किसी तरह से उड़ के यहाँ पर आऊँ और अपना हिस्सा भी जो है ना वो अदा करूँ इस वतन की मोहब्बत के हवाले से, अपनी बात की जाए, अपने जज्बात का इजहार किया जाए।
5: सर मैं यकीन करें सुबह सरफ़ भाई को, सुहेल बसरा साहब को सुबह 4-4 बजे कॉल करता रहा, उन्होंने मुझे कितनी बार मुझसे पूछा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं, हम तो सब खुश हैं, हम तो चलते
0: चलते खा पी
5: रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम तो।
0: बिल्कुल ऐसी है, मुझे याद है आप सबकी कॉल्स आई थी और अपने अपने जज्बात बता रहे थे, अपने गिफ्ट तो नवा का बता रहे थे, क्या मामला चल रहे हैं, ऐसा ही है ना?
5: जी ऐसे ही।
0: चलें सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।
5: ओके अल्लाह
0: हाफिज, अल्लाह हाफिज। वेल जनाब 10:28 हुए चाहते हैं और इसी के साथ एक और ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, लेकिन कॉलर्स का जो है वो तांता बना हुआ है, ले लेते हैं कॉल, ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
6: वालेकुम अस्सलाम, मैं जनाब आसिफ अलीम लाहौर से बात कर रहा हूँ।
0: आसिफ अलीम बात कर रहे हैं। आसिफ अलीम क्या हाल चाल है?
6: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा।
6: मैं कोशिश करता हूँ ऊंचा बोलने।
0: जी जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
6: वो मैं तो ये चाहूंगा कहना कि अकल और शऊर इन दोनों में ये फर्क है कि अगर अपने शऊर को अकल के मुताबिक ढाला जाए ना,
0: जी जी,
6: तो वो काम बहुत बेहतरीन होता है।
0: क्या ही बात, क्या ही बात है।
6: और बाज़ औक़ात ये होता है कि शऊर तो होता है लेकिन तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
6: और चुपके में तो गलतियां भी हो जाती हैं।
0: बाज़ औक़ात सही भी लगती हैं।
6: बाज़ औक़ात तुक्के सही भी लग जाते
0: हैं।
6: तो जब तुक्का सही लग गया ना, तो लोग कहते हैं आज तक खोटा पैसा भी कम आ गया।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही है, सही हो गया, ठीक हो गया सर। तो बहुत शुक्रिया, और कुछ कहना है?
6: दरअसल जो मैं पोएट भी हूँ।
0: अच्छा ठीक है।
6: और मैं रेडियो पाकिस्तान का आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ।
0: अरे क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के।
6: सर एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
0: जी सर, आप बड़ी बड़ी करें रिक्वेस्ट। जी जी,
6: ये जो है ना आप 93 के जो है ना चैनल,
0: ठीक है,
6: उनके जो पेश करते हैं ना प्रोग्राम,
0: जी जी जी जी,
6: तो उनको भी जरा बता दें।
0: ठीक है।
6: और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना,
0: अच्छा,
6: वो मोस्टली ऐसा होता है कि खराब रहती है, और स्पेशली।
0: चलिए चलिए ठीक है, आपका पैगाम पहुंच गया, मैं समझ गया हूं, और इस पे मैं आगे जो हमारी अथॉरिटीज है, जो मैनेजमेंट है, उनसे मैं बात करके आपका पैगाम दे दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
6: और एक और बात है सर।
0: जी जी जी सर, जी सर,
6: वो ये कि 93 से जो प्रोग्राम आते हैं ना सुबह पाकिस्तान,
0: ठीक है,
6: तो उसमें दूसरी तारीख में तो बता देते हैं, लेकिन जो हमारे देसी महीने की तारीखें होती है ना,
0: सही,
6: उनको इग्नोर कर जाते हैं।
0: अच्छा सर, मुझे बताएं कि अभी कौन सा चल रहा है देसी महीना?
6: देसी महीना आज वैसाख की 30 तारीख है।
0: अच्छा ठीक है, आज वैसाख की जो है वो 30 तारीख है। सही हो गया, चलें ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम जो है वो आगे पहुंचा दिया जाएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है
6: जी।
0: ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जनाब, 31:10 AM, 10:31, बल्कि 32 हो गए हैं, और अभी हम एक ट्रैक शामिल करना चाहेंगे आपसे मिलके। हम ज़िशान अली की आवाज़ में साथ में लियो ट्विन्स हैं, क्या ही बेहतरीन अंदाज में म्यूज़िक को कंपोज़ किया है, और मुझे याद पड़ता है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं ये उनका ये जो था कंपोज़ किया हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कलाम था, ये कवाली थी या जो गाना था। और उसके बाद मैंने एक, मुझे याद पड़ता है छोटे होते PTV पर या एक चैनल होता था उस पर एक प्रोग्राम लगता था, उसमें छोटे दो बहन भाई होते थे, उन्होंने ये गाना गाया था, आपसे मिल के हम, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, कुछ इस तरह का गाना है। और जनाब अगर मैंने नहीं चलाया तो मैंने गाने लग पड़ना है इसकी, उस बार आपसे मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

0: जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मोहम्मद असलम जिला टक से, लेकिन से मैं लाहौर में बेगम कोट की मस्जिद बारादरी रोड के ऊपर काम कर रहा हूँ।
0: अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे?
1: सर मैं पाकिस्तान को बहुत यानी के मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, कुल आवाम को फौज के साथ खड़े होने से।
0: बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है,
1: पाक फौज और नेवी और फजाइया इन्होंने मिल के एक कम्बिनेशन कायम किया और उस पे अमल करके मैं कहता हूँ कि एक मिसाल कायम की है।
0: बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बहुत सारी आइंदे भी अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियां पाकिस्तान की।
0: आमीन आमीन इलाही आमीन। सर थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।

0: जिंदगी अब तो।
1: वेल जनाब, अगर आप कुछ लिखकर अपने पैगाम भेजना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहा आसान, यू कैन रीच मी अप ऑन एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। सो कुछ ही देर के बाद आपके जो ऑनलाइन पैगाम हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, वो शामिल किए जाएंगे। फिलहाल अभी एक और कूलर मौजूद है, जानते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सर बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ, खैरियत नाल हो? खपका दी आ रही पिछू,
2: काफी देर बाद आया, तकरीबन डेढ़ महीने बाद है। मतलब भाई आप आए यार।
1: हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा जहा तुसी बात नु आके गल करो ना, रोला जहा पिया होया पीछे? कोई
2: रोला नहीं पाई।
1: अच्छा ठीक है।
2: हाँ? अच्छा मैं इकल्ला ही आगा इत्थे, कोई नहीं।
1: अच्छा शोर आ रहा है ना, काफी शोर आ रहा है। अच्छा सर की कहना चाहोगे?
2: कहना के जी पाक आर्मी नु, साडे पाकिस्तान नु बहुत बहुत मुबारक।
1: हाँ जी,
2: पूरी जिंदगी 55 साल उम्र रही, एड्डी बड़ी खुशी आज कभी मिली जी साडी पाक आर्मी ने सानू दिखाई।
1: बिल्कुल सर, इस तरह बिल्कुल। हां
2: माशाल्लाह, ताडी खैर भाई।
1: 10 महीने रोड शो होंगे रहे ने, ते कदी असी जनाब बाग, ते कदी मीनारे पाकिस्तान, ते कदी इकबाल बाग। चलो सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। चलो मैं याद करा दी ना तानू।
2: ठीक
1: है, बहुत शुक्रिया। अरे सर मैं याद है, तुसी हमेशा याद रहोगे बर्फी वाले, क्योंकि बर्फी तुसी खवांदे कोई नहीं, तुसी सुनाई जांदे हो बस। ओके ओके सर, अपना ख्याल रखना, बहुत
2: शुक्रिया। सब दी खैर।

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा सिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत बहुत अच्छा ज़बरदस्त जा रहा होगा। और अगर नहीं भी अच्छा जा रहा हो तो मैं हाजिर हूँ विद अ सुपर डुपर शो, आपका अपना लेडीज लाउंज। आपका मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके कमेंट्स, मैसेजेस, कॉल्स, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। आज इनकी बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से एफएम 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है।

0: जब कौम एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हौसले, बहादुरी और कामयाबी की ये दास्तां मार्काए हक,
1: मार्काए हक के लिए तैयार है
0: पाकिस्तान की शानदार फतह।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद।

पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा इस बात का सबूत दिया है कि हम अमन पसंद कौम हैं। इसी हवाले से आपकी समातों की नज़र करने जा रही है एक ज़बरदस्त सा गीत।

वेलकम बैक, मैं हूँ आरजे वजीहा आसिम। आइए आज के दिन हम सब मिलके ये अहद करते हैं कि हम ऐसी फौलादी दीवार बनकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे और इस अजीम वतन की शान शौकत और अजमत के लिए बेलौस मेहनत जो है ना हमेशा जारी रखेंगे।

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajiha Asim. So, आज के जो प्रोग्राम की पोस्ट है हमारी ऑफिशियल FM अनमोट कर दी गई है. So, do like, comment and share. हमें भी तो बताएं ना आप क्या सुनना चाहते हैं. आपका दिन कैसा चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट आज आपके किचन में क्या बन रहा है. क्योंकि कुछ भी हो जाए आपके नेक्स्ट डे की जो भी प्लानिंग्स हो, जो भी आपने काम करने हो, जो होता है ना खाना, वो तो ज़रूर घर में बनना ही होता है. और सबने आज क्या खाना है, फिर घूम फिर के वही सेम चीज़ें. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जो मौसम की चीज़ें आती हैं, वो ज़रूर ज़रूर बनाया करें. स्पेशली ऐसी सब्जियां जो कि कम टाइम के लिए आती हैं, जैसे कि कचनार, सुहांजना, छोलिया, ये सिर्फ आलू मटर गाजर जो होते हैं ना, तीन चार चीज़ उनको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए ताकि आपके घर वालों को सब कुछ खाने की आदत पड़े. सुहांजना जो है ना, उसके बारे में कहना चाहूँगी, उसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बाहर के मुल्कों में तो बहुत बहुत महंगा मिलता है और वो पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वो सुखा के उसे ड्राई करके वो डब्बों में डाल के ना बेचते हैं, जैसे टिन जो होता है ना, कैंड प्रोडक्ट्स, तो क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता. तो हमारे पास है तो उसको ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल किया करें. आज है 13th May 2026. Time is 11:23 AM. मई का महीना, इसका मतलब है एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स. तो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, हर जगह जो है ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. बच्चों के कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिनके बोर्ड के नहीं हैं उनके स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर एंड जो है एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद छुट्टियाँ हैं. तो ये जो दिन है ना आपके, बहुत बहुत कीमती दिन है. मैं जो भी माएँ, बच्चे, नौजवान जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो वालिदैन जो है ना, अम्मी अबू दोनों को कह रही हूँ, ठीक है ना, कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके घर में कुछ काम है, अपनी खाने की रूटीन, सब चीज़ें जो है ना आपको आज इन दिनों में ना जो है ना बहुत सिस्टमेटिक होकर चलना है, क्योंकि जो बच्चों को जब इस टाइम पे आदत पड़ जाती है ना, तो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ योर लेगेसी जो कि वो आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना. तो ये उनके पढ़ने के दिन है, तो अगर आप भी ना, आप कहेंगे हाँ तुम्हारा पेपर है तुम पढ़ो और मैंने यहाँ जाना है या मैंने ये करना है या घर में मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अपना टाइम टेबल जो है ना, आपके बच्चे चाहे यूनिवर्सिटी में है चाहे स्कूल में चाहे जहाँ भी है, तो उनके हिसाब से रखें, उनके हिसाब से अपना आप पूरी रूटीन फिक्स करें एटलीस्ट एग्ज़ाम्स के दिनों में. जो वालिदैन बाद में कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ाई को टाइम नहीं देते या खेल कूद में लगे रहते हैं, तो उन वालिदैन को मैं कहना चाहूँगी कि ना आपने ख़ुद शुरू में उनको इतना टाइम नहीं दिया होता. अगर जब वो छोटे थे, क्लास 1-2 में थे, 6-7 साल के थे, आप उनके साथ बैठें, उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, आप उनको ये जब शो कराते हैं कि आप उनकी वजह से अपने प्रोग्राम्स भी छोड़ रहे हैं, अपना भी आना जाना, बाज़ार का काम है, कहीं है, कोई मिलना मिलाना है, कोई बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए जो कि नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है ना, कि आपको कहीं किसी के पास हॉस्पिटल जाना है या कोई बीमार हो गया कुछ, लेकिन जो छोटे मोटे आपके रोज़ेमर्रा के जो काम है जो कि बाद में भी हो सकते हैं, अगर आप उन चीज़ों को अपने बच्चों के हिसाब से लेके चलते हैं, तो दिस इज़ द टाइम जब आपके बच्चे सीखते हैं. और जब तक वो बड़े होते हैं ना, उनमें खुद ही ये चीज़ डेवलप हो चुकी होती है कि उन्होंने अपना टाइम टेबल जो है ना अपनी पढ़ाई के हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि यही पढ़ने के दिन हैं. आगे जो मर्जी करो है, मजीद गपशप आपके साथ चलती रहेगी. अभी आपकी समातों की नजर करने जा रही हूँ एक जबरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101.

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम. और जहाँ आपने हमारे साथ शेयर करना है आज आपके किचन में क्या बन रहा है, आपने बताना है कि आप जो है ना कितना पानी पी रहे हैं एक दिन में. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है सबने. गर्मियाँ आगे जो है ना गर्मी मज़ीद ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ना हाइड्रेटेड रखें. ठीक है ना, पानी ज़्यादा पियो और फल फ्रूट खाओ. दवाइयाँ बाद में खाने से बेहतर है, अभी अपना ख्याल रख लो. ठीक है ना. और कुछ कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है. एक तो जो है ना हमारे सुनने वाले बहुत जल्दी हमारे साथ नाराज़ हो जाते हैं, तो नाराज़ आज ही होना क्योंकि देखिए हम हमेशा हमेशा पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि सबको प्रोग्राम में शामिल करें, सबकी कॉल्स मैसेजेस सब कुछ शामिल करें. तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि आपको जो है अपने साथ साथ रखें. अच्छा, तो हमें रमज़ान गुजर ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं ऑन ड्यूटी की वजह से मैम जी आसिम सुबह शो से माजरत. नहीं नहीं, आपकी हाज़िरी लग गई है जनाब. इब्राहिम हीरो ने कहा है गुड मॉर्निंग. और किंग फजल खान ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं ये मैसेज किया है, कहते हैं प्लीज़ बी अच्छा. और हमें टीम पास ने मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नूर खान लाहौर से, सलाम कबूल फरमाइए. वालेकुम अस्सलाम. और शमशाद खरल ने हमें मैसेज किया है, खरल शमशाद खरल ने मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. किंग फजल खान ने कहा है गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईगल फ्रेंड्स कोयटा पाकिस्तान. आपने कोयटा से हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी वेरी मच. रमज़ान गुजर ने कहा है नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो ज़रूर हारी होंगी, आपका शो लाजवाब है. बस आज के शो की माजरत ऑन ड्यूटी की वजह से. ज़ाहिर बात है ड्यूटी भी तो साथ साथ करनी है. और हमदुल्ला मलाखेल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी वेरी मच. हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर्स एंड कॉलर्स जैसे कि फरी आपी हैं और एहसन खान हैं और बहुत ही शमीम आपी हैं, बहुत ही साजदा आर जे वसीम अहमद, कहते हैं बहुत खूबसूरत शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और हमदुल्ला मलाखेल ने कहा है दुनिया की सोच उस दिन ठीक हो जाएगी जब लोग मिठाई बांधकर कहेंगे मेरे घर बेटी पैदा हुई है. बिल्कुल बिल्कुल. और जब आपको पता है दुनिया की बहुत जो है ना सोच बदल भी रही है, अब चीज़ें वैसी नहीं रहीं जैसे पहले होती थी. और क्योंकि लड़कियों ने शायद अपने लिए कुछ खुद स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, और यही बात जो है ना लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि लड़कियां इतना ना पढ़ें. क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, वो इसी बात से इसी वजह से शुरू हुआ था ताकि उसको दबाया जा सके, उसको इतनी सूझबूझ इतनी अक्ल ही ना आए कि क्या करना है क्या नहीं. इसलिए अगर लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लिख जाएँ तो कहते हैं जी हाथ से निकल गई है. ठीक है ना, इसलिए कोई ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहता ही नहीं है. लेकिन लड़की ने घर से निकल के सीधा कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है और वहाँ से वापस है, इतना भी जो है ना किसी से बर्दाश्त नहीं होता कि इतना देख किताबों से पढ़ के उसे थोड़ा सा उसका जहन ना खुल जाए, उसे अकल समझ ना आ जाए. तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड जो पहले था जी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, उसका यही वजह थी कि उनको अकल समझ ही ना आए. बस उनको यही पता होना चाहिए कि हमने खाना बनाना है, रोटी बनानी है, सबका ध्यान रखना है. और सबसे बड़ी बात कि दूसरों की वजह से दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशों का आपने कत्ल करना है. ठीक है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या आगे ज़िंदगी में आपके क्या ख्वाब हैं, उन वो कोई मायने नहीं रखते. ये लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इजाज़त लो,

इजाज़त लो इजाज़त लो, एक से मिल गई है तो दूसरे से लो, दूसरे से मिल गई तो तीसरे से लो। और इस वजह से ना आप देखिए आजकल के हमारे ज़माने में स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को जो है ना स्ट्रेस एंग्जाइटी हुआ होता है, और जिसकी वजह से आज ये बहुत नॉर्मल सी बात है, काफ़ी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने अपने स्कूल में भी साइकेट्रिस्ट रखा होता है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको ये फोबिया हो गया है, इसे वो फोबिया हो गया है, तो इसको या उनके जो भी इश्यूज़ हैं कि अगर देखें, अगर ज़रूरी नहीं है, देखें अगर माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, तो वो इतना ही बिज़ी हैं कि उनको बच्चों के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। तो ये बात नहीं है कि दोनों को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों को जितना टाइम भी देते हैं क्वालिटी टाइम दें। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि माँ जब 24 घंटे घर में भी होती है तो उसे पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, उसके बच्चों से ना वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। तो टुडे आई रियली वांट टू टॉक अबाउट योर इमोशनल अटैचमेंट विद योर किड्स। उनको सिर्फ यही पता होता था हमने बच्चों को क्या प्रोवाइड करना है, खाना पीना देना है, टाइम पे उठाना है, सुलाना है, कपड़े देने हैं, उनको अच्छे कपड़े प्रोवाइड कर दें, साफ़ सुथरे ईद पे कपड़े बना दें। इमोशनल अटैचमेंट जो है ना बच्चों के साथ नहीं है। आप स्पेशली देखें कि जो लड़के होते हैं उनके अपने फादर्स के साथ कोई जो है ना अटैचमेंट नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि कितने साल गुजर जाते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने एक दूसरे से गले ही नहीं मिले सवाए ईद के दिन। अपने बच्चों के साथ ये जो है ना इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों के साथ जब आपकी अटैचमेंट होती है ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आपको ऐसा एट टाइम्स लगता है कि जो आपके सामने हो रहा है बस वही है, असल में ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के दिलो दिमाग में चल रही होती हैं, कि बहुत सी चीज़ों से वो गुजर रहे होते हैं, स्पेशली एडोलेसेंस में, ठीक है, आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़के या लड़कियां अपने माँ बाप से बात ही नहीं कर पाते, पर उनको जो उल्टी पुल्टी चीज़ें अपने दोस्तों से या वहाँ से पता चलती हैं। हमारे ज़माने में तो ये होता था दोस्त ने कुछ कह दिया तो बस पता चल गया, या हमें सिर्फ उतना ही पता होता था जितना हमें हमारी अम्मी ने बताया होता था। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सब कुछ जो है बच्चे हों बड़े हों फौरन से सर्च कर लेते हैं कि जी ये हुआ था ये हुआ था, तो इसलिए अपने बच्चों के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है ना वो ज़रूर रखिए। और कई मजा आइए आपकी समातों की नज़र करने जा रही है एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, स्टे ट्यून्ड।

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. और एग्जाम्स में जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ना, वहाँ पे आपके लिए जो कहते हैं ना एक हेल्दी तरीके से खाना ना, वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है. तो जंक फूड जो है ना, क्योंकि इसका जो है ना एक बहुत कहते हैं ना आजकल फैशन है ना, क्या आपने कुछ पिज़्ज़ा बर्गर्स ऑल द टाइम खाने हैं, इसलिए तमाम जो माएँ हैं उन्हें कहना चाहूँगी कि बच्चों को ना घर का बना हुआ खाना दे. उन्हें जो पसंद है उनके लिए घर में बनाए बिरयानी, बर्गर, सैंडविचेज़. और मैंने भी इतनी बर्गर सैंडविचेज़ की रेसिपीज़ और आपके साथ शेयर की हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाएँ. ये मत सोचें कि कोई फंक्शन होगा, किसी ने आना होगा तो ही मैं कुछ बनाऊँगी. और आजकल तो सोशल मीडिया पर दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेसिपीज़, यू कैन सर्च दैम ओवर. उनको आप और थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं अपने घर के टेस्ट के मुताबिक कि आपके घर में ज़्यादा मिर्च पसंद है, ज़्यादा कहते हैं ना मिर्च मसाले वाला खाते हैं, थोड़ा सा माइल्ड खाते हैं, जैसे भी खाते हैं उसे ट्विस्ट करें और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, ताकि अचानक जब पढ़ते पढ़ते उन्हें होता है ना कुछ समझ नहीं आ रहा, जब उन्होंने कुछ खाना होता है ना तो कहते हैं चलो ऑर्डर कर लो. तो बाहर का खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता. और ज़रूर आजकल जो है ना बादाम चीज़ें जो नट्स हैं, वो बच्चों को बादाम ज़रूर भिगो के रखें और बच्चों को खिलाएं, और नट्स वगैरह भी ज़रूर दें. नट्स इज़ समथिंग यू शुड बी टेकिंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना. वो ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ सर्दियों में ही खाने हैं, उसका जो है उसको कम कर दें, ठीक है. कुछ लें आप, जैसे आपने दो तीन बादाम ले लिए, थोड़ा सा अखरोट ले लिया, एक दो काजू, बस कम लें लेकिन लें ज़रूर. और बच्चों को भी दें, क्योंकि ये जो है ना आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना. तो बस ये नहीं होना चाहिए मई के महीने में, अगर आपके घर में स्पेशली ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कि जी सिर्फ बस जो आपने कोई भी आलू शोरबा या मटर का शोरबा जो भी खाना बनाना था बना लिया, दैट्स ओवर, और मुझे अब कुछ ना कहना. यूजली यही दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, जब आप घर में हर वक्त बैठे रहते हैं और आपके पास कुछ करने को नहीं होता ना, फिर आप लोग कहते हैं ना बंदा बैठा बैठा ही अपने आप से ही फेडअप हो जाता है. इसलिए कोई आपकी हॉबी है उसे ज़रूर अपनाइए. ये मत सोचिए दैट यू हैव टू रिवॉल्व अराउंड ऑल ऑफ देम ऑल द टाइम. तो अपने पैशन को, अपनी हॉबी को भी थोड़ा सा टाइम दे. और इस बात का कभी इंतज़ार ना करें कि कोई आपके लिए कुछ आके करेगा, जब तक आप खुद अपने लिए नहीं उठेंगे कोई नहीं उठेगा. अ ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग योर वे, कहीं मत जाइएगा. सुनते रहिए FM 101.

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajeeha Asim. माइकल जैक्सन इज़ द किंग ऑफ पॉप और उनकी जो बायोपिक है वो रिलीज़ हुई है, पाकिस्तान में भी रिलीज़ हुई है उनकी मूवी माइकल, और उसने धूमें मचा दी हैं। और इस मूवी की वजह से माइकल जैक्सन इज़ ऑन द चार्ट नंबर वन रैंकिंग पे आफ्टर इवन 17 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। वो अपने देखे अगर वो दुनिया से जा चुका है वो इंसान, लेकिन कहते हैं ना वो पॉप का किंग है, और उनका जो उन्होंने कहते हैं ना जो एक गायकी का स्टाइल, ठीक है ना, और जो एक डांस मूव्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, जैसे यहाँ पे जब पॉप सिंगिंग पाकिस्तान में आई थी तो बहुत एकदम से सबको बहुत डिफरेंट लगा था, ये कौन सा म्यूज़िक है, जैसे जैज़ है, फ्यूजन है, क्लासिकल सिंगिंग है, तो सबको बहुत डिफरेंट लगा था ये कौन से म्यूज़िक की किस्म है। तो माइकल जैक्सन इंट्रोड्यूस्ड इट और वो देखें अपने इस दुनिया से जाने के कितने साल बाद भी नंबर वन चार्ट्स पे हैं।

इसके साथ साथ नंबर वन स्ट्रीमिंग आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड अगेन, जैसे मैंने कहा 17 साल बाद, एंड ही इज़ द किंग ऑफ पॉप. और उन्होंने देखें ये जगह अपनी बनाई रखी, और उनके जो गाने हैं वो हमेशा से ऐसे गाने हैं कि आपको नहीं लगेगा ये बहुत पुराने गाने हैं, हमेशा से एवरग्रीन रहने वाले गाने हैं. अभी मैं कुछ उनके जो है ना सॉन्ग्स प्रोग्राम में प्ले भी करूँगी. और हमेशा से वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमेशा हमेशा जो है ना डोनेशंस जो हैं लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए सबसे ज़्यादा दी हैं.

इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ना आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँ ना करूँ। तो ये ऐसी चीज़ें जब आप कोई भी आप बायोपिक पढ़ें या कोई मूवी किसी की ज़िंदगी पे बनी हुई ना आप जैसे कहते हैं बायोपिक जैसे हम कहते हैं आप देखें तो आपको बहुत आइडिया होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलती हैं। इसलिए जिन लोगों से ना किताबें नहीं पढ़ी जाती ना तो वो ऐसी अगर मूवीज़ देख लें या ड्रामे देख लें जो आप अपने जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उनसे हमें सीख को इतना कुछ मिलता है। देखें पहले ये सब कुछ नहीं था सोशल मीडिया, वो लोग जो हैं अपने असाध्या से सीखते थे, उनके पास सारा सारा दिन बैठे रहते थे, वो कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से वो कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ लेते थे जो कि उन्हें पसंद आती थी, जिनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और उन्हीं दो तीन पॉइंट्स के ऊपर वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते थे। कि मेरे साथ तो ये करते थे, वो ऐसे बोलते थे, ऐसे लोगों के साथ डील करते थे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सी चीज़ें जो है ना बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो अपने आप को इम्प्रूव करने का जो अमल है ना इसे कभी रोकना नहीं चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जी अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, बस मैंने ऐसे ही रहना है। और कुछ हमारी फैमिली में वाकई कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो बहुत स्टबन होते हैं कि बस हमने ऐसा ही रहना है और हमने बस यहाँ से हिलना नहीं है और बस जो मैंने कह दिया है बस यही होना है, ठीक है ना। और ये बात भी बहुत गलत होती है जो कुछ लोग कहते हैं ना, अगर कोई नाराज़गी चल रही है या कुछ हो गया जी हमारी नस्लें भी ये नहीं करेंगी और वो नहीं करेंगी, ये बात बहुत गलत होती है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और जो सीखने सिखाने का अमल है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कहते ना इंसान जो है ना वो एक हीरे की तरह है और वो जो उसको तराशने का अमल जो है ना आपने सारी ज़िंदगी जो है ना जारी रखना है। अभी टाइम हो गया है न्यूज़ ब्रेक का, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा मानसून मौसम के लिए पेश की तैयारियों की हिदायत की है। चीन ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी सालसी किरदार को सराहते हुए अपनी हिमायत का इरादा किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल कराची में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

जहां मैं आज बात कर रही थी माइकल जैक्सन की और उनकी बायोपिक की, उसी हवाले से एक जबरदस्त सा उन्हीं का एक ट्रैक प्ले करने जा रही हूं, टू गो एंड एंजॉय. जा रही हूं टू गो एंड एंजॉय.

जी, अभी मई 2026 के हवाले से सिर्फ बात की जाए तो अभी तक माइकल मूवी जो है, दिस मूवी हैज़ पास्ड $500 million एट द ग्लोबल बॉक्स ऑफिस, और जो कि टॉप 10 में है. और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि माइकल जैक्सन इज़ ऑन नंबर 1 even after his death. अपने 17 साल हो गए उन्हें फौत हुए और फिर भी ही इज़ रॉकिंग द चार्ट्स. इसके साथ साथ माइकल जैक्सन हैज़ मेड हिस्ट्री बाय हैविंग अ टॉप 10 एल्बम इन एवरी डिकेड फ्रॉम 1970s टू 2020. हर दौर में उनकी हिट एल्बम रही है.

0: इसके साथ साथ माइकल जैक्सन की जो जो कंपाइलेशन है वो नंबर वन ऑन द यूके ऑफिशियल एल्बम्स पे आ चुकी है. और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा आर्टिस्ट दुनिया से जा चुका है और फिर भी जो है ना हमें हर जगह उसका जो है ना नज़र आ रहा है कि उसकी कामयाबी, उसका टैलेंट. तो हमेशा जो है ना आपको हर इंसान में खूबियाँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ अच्छी चीज़ें ही चुननी होती हैं. तो आप भी ज़रूर इन जो है ना लोगों में से ऐसी चीज़ें उठाएं, ऐसी चीज़ें जो उनको मोटिवेट करती थी. देखिए आज के ज़माने में हमारे पास ऑटो ट्यूनिंग है कि आपकी साउंड ऑटोमेटिकली जो है आपकी आवाज़ फिक्स इन हो जाती है. उस ज़माने में कुछ भी नहीं था. ही वॉज नॉट इवन एबल टू रीड द म्यूज़िकल नोट्स, ठीक है ना, क्योंकि ही वॉज नॉट दैट मच एजुकेटेड, ठीक है. लेकिन जिस इंसान में टैलेंट होता है ना वो उभर के सामने आता ही है. और यहाँ पे हमें साथ साथ कॉल्स भी आ रही है, शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीज बोजी लाहौर से बात कर रही हूँ.
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप?
1: आप कैसी हैं? वजीहा, 8 दिन के बाद ना आपकी आवाज़ सुनने को मिलती है.
0: बस बस आप भी रिक्वेस्ट करें ना कि जो है हमारी मैनेजमेंट से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज्यादा शोज कर सके.
1: फीमेल जो आ रही है उनको 2-2 शो देने चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा.
0: चले जी, शुक्रिया बहुत बहुत.
1: आप मेरी ना रिक्वेस्ट उनके पास ना भेज देना, वो सुन भी रहे हैं शायद कबूल हो जाए.
0: जी जी जी, जरूर जरूर जरूर.
1: बाकी सब सुनने वाले के लिए बहुत सारी दुआएं. आज हम ना खसकास का सालन बनाएंगे.
0: किसका सालन?
1: खसकास का सालन बनाएंगे.
0: वाह, क्या बात है, क्या बात
1: है. वो ना गर्मी के लिए बड़ा अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, नजर के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि ये छोटे बच्चों को ना पका कर खसकास खिलानी चाहिए. एक पाव खसकास ले ले, इसको ना रात को भिगोनी है, अच्छी तरह साफ कर ले, चाय वाली पोनी में डाल के ना साफ करे, सारी बारीक बारीक मिट्टी निकल जाएगी. तो इसको ना अपने पास रख ले, टेबल के ऊपर रख ले, सुबह उठ के ना इसको ना साफ, फिर दोबारा साफ कर ले, पानी गंदा निकल जाएगा, साफ हो जाएगी. 2 प्याज ले लें, इसको बारीक बारीक काट के ना ब्लेंडर में डाल के पीस ले. तो ये एक पतीली में डाल के ना इसको ना ब्राउन कर ले, लाइट ब्राउन कर ले. तो 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट बना के ना तो इसके साथ ही ना इसको भून ले. तो 1 चम्मच छोटी वाली लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सफेद जीरा, थोड़ा सा सूखा पीसा हुआ ना धनिया डालना है.
0: ठीक है, ठीक है.
1: चीजों में ना गर्म मसाला नहीं डालती क्योंकि ये ना ठंडी है.
0: सही है, सही है. हाँ हाँ हाँ,
1: ठंडी है, जब गर्म मसाला डालेंगे तो अच्छा नहीं है. तो इसके ऊपर ना फिर ये ना जो ब्लेंडर में ये डालनी है खसकास, जो ना इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छी तरह पीसना है. जैसे आटा नहीं नरम हो जाता, दाना इसका खत्म हो जाएगा ना, तो उसको ना मसाले के अंदर डाल के भून ले. आधा कप दूध का डाल के तो उसको दम पे लगा के थोड़ा घी डाल ले, अगर कम होगा तो थोड़ा और इसमें ना ज्यादा डाल ले.
0: अच्छा अच्छा, ठीक है. मतलब किसको पानी में डाल के पीस लेने?
1: पानी में थोड़ा सा पानी डालना, 2-3 चम्मच पानी के, क्योंकि ज्यादा पानी डालेंगे ना तो ये ना पीसी नहीं जाएगी. ये आटे की तरह मुलायम करनी है तो थोड़े से पानी में ना ब्लेंडर की वो जो छोटी डब्बी नहीं आती है उसमें पीसी जाएगी, डाल के ना पीस के ना उसमें बड़ी अच्छी मैच हो जाएगी. इसके ऊपर बाद में ना घी आ जाएगा ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, तो 5 या 10 ना कटे हुए बादाम डाल ले. बच्चे वैसे बादाम नहीं खाते तो वो साल में डले होंगे तो वो खा लेंगे.
0: तो बिल्कुल, एक
1: छोटा सा ना कच्चा आम ले ले, थोड़ा सा पुदीना ले ले, तो उसमें ना ब्लेंडर में डाल के ना एक आधी चम्मच नमक की, आधी चम्मच लाल मिर्च की, थोड़ा सा सफेद जीरा, थोड़ी सी खसकास डाल के, थोड़ा सा ना अजवाइन डाल के ना तो इसको पीस लें. ये ना थोड़े से पानी में पीसने, ये चटनी बन जाएगी. तो सादे पराठे के साथ ये सालन आप खाएं, साथ चटनी हो, साथ दूध की लस्सी हो, बड़े मजे का लंच तैयार हो जाएगा.
0: अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बहुत अच्छा. आज आपने डिफरेंट चीज बताई है जो कि बहुत
1: आजकल बनाए. गर्मी है ना तो खाने के लिए मजे का सालन बन जाए, आमलेट मजे की बनती है ना, तो ये अच्छी मजे की बन जाएगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: लास्ट टाइम हमने मुरब्बा बताया था कच्चे आम का ना, तो सबने कहा रिपीट करके बताएं, तो भी टाइम नहीं है, अगले शो में फिर बता दूंगी. रमजान गुजरे थे, बहुत सारी दुआएं हैं. शमसी ग्रुप वाले रजा भाई है ना, उनकी बांजी की डेथ हो गई है, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं. अल्लाह ताला उनकी
0: जन्नत फिरदौस में जगह दे. आमीन आमीन.
1: शमसी ग्रुप वालों की दुआएं हैं, तो रजा भाई है, के लिए, हनी भाई हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एहसन बिल्कुल, एहसन खान है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रजा चौधरी है बिल्कुल,
1: बीमार है उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं।
0: आमीन आमीन।
1: अल्लाह के लिए ना मेरी और मेरी बेटी फातिमा असलम की तरह से ना आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह करे आपको ना दो शो मिल जाए।
0: आमीन आमीन, जरूर जरूर इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कोई
1: भाई यार दे जो वसीम भाई है ना हमारे,
0: हाँ जी जी जी,
1: उनको भी शो मिल जाए सुबह वाले, तो मैं तो बड़ी उदास हो गई
0: हूँ। जी जी, बहुत अच्छा लगा था जब आप अपनी बेटी के साथ अल्हम्रा में मुलाकात हुई थी आपसे, तो इंशाल्लाह दोबारा भी जरूर कुछ रखेंगे। हमेशा जो है बहुत प्यार करती है। और एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बाजी, मैं जिला लिया तू मोहम्मद सदीक अलवेंदर ने बाजी, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वेलकम टू द शो।
2: पहले तो आपने जो पाक फौज के बारे में सलाम किया, बहुत शुक्रिया।
0: जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप उस हवाले से?
2: आपने बड़ी अच्छी बातें की, पाक फौज को सलाम करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो आप
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे जो फौजी है ना, हमारे फौजी हमारे सिपाही हर वक्त हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनकी वजह से हम रात को सुकून की नींद सो पाते हैं।
2: ये तो आपने मेरे मुंह से बात
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। और इसके अलावा जो आपने खाने के बारे में पूछ रही है कि खाना बाहर से मंगाना चाहिए या घर से, खाना तो घर का अच्छा होता है, बाजारी तो अच्छा नहीं होता, लेकिन वो बेच रहे हैं और रोज भी कमा रहे हैं, हर इंसान रोज रोटी लगा हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: वो अच्छा खाना पकाता है ना, तो उसको अच्छी रोजी मिल जाती है। जो दो नंबरी करता है तो उसको कुछ भी नहीं, कुछ दुनिया में भी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं ये असल में ये भी कहना चाह रही थी कि ना, क्योंकि आजकल बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं ज़्यादातर बोर्ड के, वैसे भी जिनके नीचे, तो इसलिए बच्चों को ना ज़रा हेल्दी खाना घर का बना के दें, ताकि वो जो है ना ज़रा उनको, क्योंकि बाहर के खाने की आपको उसका तसल्ली नहीं ना होती, लेकिन ये बात तो है जो अच्छा खाना बनाता है उसका चलता है। लेकिन बच्चों के हवाले से मैं बात कर रही थी, जब आप बड़े होते हैं ना तो आप में कुव्वत मुताफ़क़त भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना।
2: जी जी, बच्चों का बच्चे हमारा सरमाया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: बच्चों का हमने ख्याल रखना है, बच्चों ने आगे पाकिस्तान को संभालना है, ये बात आपने अच्छी की है। और इसके अलावा शमीम आपी, सजाद अली लालना, जो लोग भी ये, मैं काफी देर आपका प्रोग्राम भी सुनता लग रहा, खामोश विश्रम था।
0: अच्छा,
2: आज मेरा दिल चाहे कि मैं कॉल करूँ।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अपना नाम दोबारा बता दे।
2: जी मेरा नाम मोहम्मद सदीक है।
0: मोहम्मद सदीक, चलिए जी आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं शो में।
2: आज मैंने आपसे बात की है ना।
0: जी जी जी,
2: ये मैं सब कुछ रेडियो से सुना है और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बात करने का तरीका भी नहीं आता, तरीका भी मैं आपसे सुना है।
0: चलिए जी, शुक्रिया बहुत बहुत, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि
2: जी आज आते हैं जो अपना पीर वाले दिन होती है, शफीक आती है और दूसरे भी आते हैं
0: जी,
2: अच्छे तरीके से प्रोग्राम करते हैं, हमें बड़े अच्छे तरीके से बातें करते
0: जी,
2: हैं।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मैं भेड़े चराता हूँ और आपका जो प्रोग्राम है वो भी सुनता रहता हूँ।
0: चले जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। और
2: अगर शबीम आप ही की कॉल आए, आपने मेरी तरफ से उसे सलाम कहना है।
0: ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
2: कॉल आए
0: ओके,
2: तो कहना भाई आपको सलाम दे रहा है।
0: सही हो गया, सही हो गया।
2: और जो भी पाकिस्तानी बहन बिना सुन रहे हैं, सबको ईद दिल्ली ईद मुबारक, पहले डिमांड रब्ता हो ना हो, जिनकी का कुछ किस मोड में मुक जाए, अगर मैं दूसरे भाई टाइम रखूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज
0: जिंदाबाद। जी बिल्कुल, वक्त गुजरता रहता है और साथ ही ईद भी आ रही है और साथ ही गर्मियां भी जोरों शोर से सबको जो है ना अब गर्मियों में, अब आपने जो इस ईद पे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें काम भी ज़्यादा होता है, घर में कुर्बानी भी हो रही होती है, और नो डाउट ये भी ट्रेंड बहुत चल पड़ा है कि बाहर से कुर्बानी आप करा लें और गोश्त बना बना घर में आ जाता है, ये भी ट्रेंड मैंने देखा काफ़ी कॉमन हो रहा है। लेकिन जो घर में कुर्बानी का मज़ा है, वो जो ताज़ी ताज़ी कलेजी बना के जो आप खाते हैं, तो इस जो है ना ईद पे कोशिश करें कम्फर्टेबल कपड़े बनाएँ और लॉन इस टाइप के ही कपड़े बनाएँ, ज़्यादा फैंसी कपड़े जो है ना वो ना बनाएँ। जब आपने कहीं दावत में जाना है, रात के टाइम आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तब ज़रूर आप फैंसी कपड़े पहन लें, लेकिन लॉन जो है वो प्रेफर करें और कूल टोन्स जो हैं जैसे लेमन येलो पिंक वो पहने। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
2: शुक्रिया शुक्रिया माशाल्लाह। अब्दुल हमीद बर्फी वाला बात कर रहा हूँ।
0: पहचान लिया आपको, करें
2: नवा पुराना आया सदीक साहब माशाल्लाह। गल सानू भी किसी आंदी जो पहले पहले आंदा रहे भाई, परेशानी होना गल कमी आ गया जी।
0: सही बात है, सही बात है।
2: माशाल्लाह बाजी वेखो साडा आप ही आई ना, अरे क्या बात है, मैं कहना जी क्या बात है, आप अल्लाह पाक खुश रखे, इहदी बेटी फातिमा नूं अल्लाह पाक सलामत रखे, बहुत सारियां दुआवां साडियां जिन्नियां भैणां ना जिन्नियां साडियां बेटियां सब दे नसीब अच्छे लगे, सब दे घरां विच अल्लाह पाक रहमत करे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: साडा प्यारा रजा भाई ओहदी भांडी दुनिया तों गई, अल्लाह पाक ओहदी बख्शे मफरत करे,
0: सबका पंच पंच स्वागत करके दुआएं, बिल्कुल उनके लिए बहुत सी दुआएं, हमारे बहुत अच्छे रेगुलर लिसनर हैं, कॉलर हैं।
2: एक पैन आएगा ना रेडियो दी जीनत है अपनी नीला पी,
0: जी जी जी जी,
2: मारा बेग अल्लाह पाक ओहदे वास्ते आसानियां करे, और साइदा भैन ओहदे वास्ते भी अल्लाह पाक आसानियां
0: फरमावे,
2: ते और हरिया ते अपनी साइदा भैन जिन्नियां
0: भी, बिल्कुल ठीक है, सबको सलाम ठीक है ना, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। साडे
2: शमजी रेडियो क्लब वाले सारे सलाम भी, रब रखा जी अल्लाह
0: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब को भी सलाम, और हमेशा सब हमारे जितने भी लिसनर्स हैं इनको ज़रूर याद रखते हैं। और जैसे मैं बात करी थी आपकी इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसके हवाले से भी ज़रूर अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए और शेयर कीजिए कि इमोशनल अटैचमेंट आपके बच्चों के साथ इसलिए भी होनी चाहिए कि आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले होता था कि छोटे छोटी एज में आपके जो अम्मी अबू होते थे ना, ये उनकी इतनी यंग एज में शादी हो जाती थी कि वो भी आपके साथ मैच्योर हो रहे होते थे। पहले ऐसे नहीं होता था कि जी वो 26-27 साल की उम्र में जाके शादी हो रही है, कि लड़की 23-24 साल की है और लड़का 26-27 साल का है। तो पहले जो लड़कियां क्या लड़के भी जो थे ना, उनकी भी बहुत यंग एज में शादी हो जाती थी, तो इसलिए उनमें जो मैच्योरिटी लेवल है उस तरह से नहीं होता था, तो इसलिए उनको पता भी नहीं होता था कि बच्चों को कैसे डील करना है। उनको बस यही पता होता था कि बस खाना पीना टाइम पर मिल जाए, कपड़े साफ बच्चों को मिल जाए, और बस इस तरह जो चल रहा है बस चलने दो। घर में सब लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते थे तो सब मैनेज हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब इंडिपेंडेंट लिविंग का भी थोड़ा सा जो है ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, लोग प्रेफर करते हैं, लोगों को हर इंसान को हर बच्चे को यार यहाँ तो अपनी प्राइवेसी भी चाहिए, तो इस हवाले से भी जो है बहुत से इश्यूज आते हैं। लेकिन आपकी अपने बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं आपको पता हो, ठीक है। इस बारे में भी आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है, और साथ ही एक ज़बरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: रेस्टोरेंट।
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा मानसून के लिए पेश की तैयारियों की हिदायत की है। सदरे मुमलकत ने लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दी है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत बिजली की पैदावार के लिए मकामी वसाइल को बुरोएकार लाने को तरजीह दे रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। पाकिस्तान ने बोस्निया हर्जेगोविना की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल कराची में खेला जाएगा।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: मार्का हक सिर्फ जंग नहीं, एक पैगाम था, एक ऐलान था, दिफा का, कौम के वक्कार का, पाकिस्तान का। हम तैयार हैं, हर दम तैयार,
1: हम तैयार हैं, हम तैयार हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उस्मा आशिक खान, आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल और बहुत ही अहमियत का हामिल हमारी कौम के लिए, हमारी यूथ के लिए और यंग जनरेशन के लिए। मैं आपको जाती तौर पर बताऊं कि ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ एक्सपीरियंस और तजर्बा रहा कि जैसे ही हमने ये वाकया लास्ट ईयर हुआ तो मुझे लगा जैसे कौम एक यकजान हो गई है, एक जगह इकट्ठी हो गई है। जो बिखरे बिखरे कई दफा हम महसूस करते हैं कि हम एक मुख्तलिफ महाज पे हैं, वो सब एक महाज पे इकट्ठे होते हुए मुझे नजर आए। और यूथ का जब जहां तक ताल्लुक है उसमें जो जोश, उसमें जो वतन की मोहब्बत और उसमें जो एक यूनिटी थी वो एक वाजिया तौर पे नजर आई। और पाक फौज के लिए मोहब्बत, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, वो बहुत एक नुमाया तौर पे मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो हमें जरूरत भी है जिसकी, एक जगह पे इकट्ठे होने की कौम को। और हमारी जो यूथ है उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पॉजिटिविटी है। मैं जाती तौर पर एक उस्ताद होने के नाते मैं देखती हूँ कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी है, उसको राइट डायरेक्शन पे चैनलाइज करने की जरूरत है। और इस तरह के वाकयात कौम के लिए एक इम्तिहान था, कौम के लिए एक आजमाइश थी जिसपे हमारी पाक फौज ने आगे बढ़ चढ़ के हमारे मुल्क की हिफाजत में जो है वो कसर नहीं छोड़ी। और हमारे जो सिपाही थे, हमारे फौजी जो थे, उन्होंने जो है एक बहादुरी का मुजाहरा किया। तो हमारी कौम, हमारी यूथ, हमारे यंग जनरेशन हमारी पाक फौज के साथ, हमारे मुल्क के साथ उन्होंने जाहिर किया कि उनमें कितनी एक ताकत है और वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ किस तरह से आगे बढ़ के अपने कौम के साथ जुड़ सकते हैं और इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो देखने को मिली।
3: इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, the most merciful.
4: Now you just wait for our response.
5: Pakistan zindabad. Nahi waqif abhi

0: तरफ एक पुरअम पुरएतमाद फजा महसूस हो रही है। यही वो पाकिस्तान है जहां जिंदगी, आज़ादी और तहफ्फुज एक साथ हमें नजर आते हैं। इस वक्त मैं लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूं। यहां का मौसम बहुत ही सुहाना है। मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: सर आपका नाम क्या है?
1: मोहम्मद रमजान।
0: सर क्या कहना चाहेंगे, पिछले साल जिस तरह से इंडिया ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप?
1: मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने जिंदा कौम को लटकारा था और हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था।
0: जी हाँ।
1: और इंशाल्लाह कभी भी हमारी तरफ मेली आंख से नहीं वो देख सकते। हम एक मुस्लिम मुल्क है। जी हाँ। और हम अपने हक के लिए हम पूरे जवान अब हर वक्त तैयार हैं। जब उसका दिल चाहे आ जाए हम हर वक्त तैयार हैं। आइंदा वो कभी हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं कर सकता, अगर करेगा तो हम पाश पाश कर देंगे।
0: क्या बात है सर, बिल्कुल पाश पाश कर देंगे। पाकिस्तान आर्मी के जवानों के लिए कोई पैगाम दे दें
1: सर। सलाम उन्हें, हमारे ये जो मुजाहिद हैं अल्लाह ताला इन्हें सदा आबाद रखे। ये हमारा गुरूर है, हमारा शान है, हमारी आन है। और इनके लिए, पाक फौज के लिए हमारा सलाम, हमारी पूरे पाकिस्तान की दुआएं इनके लिए।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या कहना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, पास्ट में भी हमारी पाक फौज हमारी कंट्री को डिफेंड करती आई है और जितनी भी जंगें हुई हैं, अभी रिसेंटली भी जो हुई थी और जो जंग का आगाज भारत ने किया था उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और अपनी कंट्री को, अपने लोगों को, अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड किया गया था। इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पर फ़ख्र करना चाहिए और हर पाकिस्तानी को, बल्कि है इस पर फ़ख्र और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जस्ट हमारी पाक फौज की वजह से प्रोमिनेंट हुआ था और हमारी एक पूरी की पूरी जो एक रेपुटेशन थी वो अपलिफ्ट हुई थी।
0: तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी नज़र में महफूज पाकिस्तान क्या है?
2: महफूज या तहफ्फुज़ का ताल्लुक सेंस ऑफ सिक्योरिटी से होता है।
0: जी।
2: अगर एक मुल्क के शहरी अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में आप देखें जंग के दौरान भी लोग बड़े बेफिक्री से मीम्स शेयर कर रहे थे, फनी वीडियोस शेयर कर रहे थे, जोक्स। अभी क्या था, ये उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि कुछ भी नहीं होगा, हमारी जो पाक फौज है वो हमें डिफेंड कर लेगी, महफूज हाथों में है, सिक्योर है। तो ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ये बड़ी अहम होती है और ये इसी बुनियाद पर होती है कि हमें इस चीज़ का पता है कि हम एक एटमी पावर है, हमारी कंट्री के पास एटमी सलाहियत है और इसी वजह से दुनिया में हम स्ट्रॉन्गली स्टैंड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी पाक फौज की सलाहियत है, हमारी जो पाक फौज है वो दुनिया की बहुत अच्छी बेहतरीन फौजों में से में उनका शुमार होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अमन और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, इसकी वजह से जो लोग हैं वो सिक्योर फील करते हैं अपने आप को।
0: पाकिस्तान ने सालिसी का एक बेहतरीन किरदार अदा किया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी?
2: अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और ना सिर्फ पाकिस्तान के अपने मीडिया चैनल्स पर बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स पर हर एक जगह पर पाकिस्तान का नाम आया है, एक सालसी नाम आया है डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को लेकर। दैट इज़ वेरी गुड।
0: मेरे साथ नौजवानों का एक ग्रुप मौजूद है, बहुत ही पुरजोश मुझे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान
3: जिंदाबाद।
0: जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। जी सामीन, पाकिस्तान की असल ताकत सिर्फ इसकी फौजी सलाहियत नहीं बल्कि इसका नजरिया, इसकी यकजहती और इसका अमन का विजन है। मारका हक ने ये साबित किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा खिते में कशीदगी कम करने, मुजाकरात को फरोग देने और आलमी अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया है। यही एक जिम्मेदार और बावकार रियासत की पहचान है। तो सामीन, आज की आवाज़ भी यही है कि पाकिस्तान एक नज़रिया है, एक अज़्म है और एक जिम्मेदारी भी। हम अमन चाहते हैं मगर अपनी खुद मुख्तारी और वकार पर कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं खदीजा मुराद। कल फिर एक नए मकाम, एक नए जज्बे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान पाइंदाबाद।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: जब कौम एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हौसले, बहादुरी और कामयाबी की ये दास्तां मार्काए हक,
1: मार्काए हक के लिए तैयार है
0: पाकिस्तान की शानदार फतह।
2: पाकिस्तान
3: जिंदाबाद।
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को तालीम, हुनरमंदी, रोजगार और कारोबार में बेहतर मौके फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने एक तकरीब के दौरान मुमताज शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के एतराफ़ में सिविल एजाजात से नवाजा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी मईशत पर आबनाए हुरमुज़ की बंदिश के वसी तर असरात पर टेलीफोनिक गुफ्तगू की है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

ऑल राइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जी। और इस यकीन के साथ के जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, आपने आज का दिन बड़े ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा और यकीनन आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आप मेरे हम वतन हैं, मेरे इस आवाज़ की दुनिया के साथी हैं, और मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलता रहेगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पर हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहेंगे। अल्लाह ने कितनी खूबसूरत सी एक नेमत दी है ना, बर्दाश्त करने की, बेर करने की जो सलाहियत है। हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं, उनमें से ये भी एक बड़ी अच्छी सी नेमत है। हम बहुत सारी चीज़ों को बेर करते हैं, बहुत सारे अच्छे और बुरे किस्म के अल्फाज सुनते रहते हैं, बट स्टिल वी लर्न टू बेयर। और अगर इस चीज़ को आप सिर्फ इस एक छोटी सी चीज़ को, छोटी सी नेमत को माइनस कर दें अपनी ज़िंदगी से, और आप देखें आपके इर्द गिर्द किसी के अंदर ये सलाहियत मौजूद ही ना हो, जिसे पेशेंस या सब्र या जो भी कह लें, जिस तरह से भी इस एक जज्बे को याद करें जिस पे आपका ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, एंड प्रोसेस करने के लिए आपके ये जो सर का पिछला हिस्सा है ना, यहाँ पर की जाती है इंफॉर्मेशन, वहाँ से वापस आती है और फिर एक थॉट क्रिएट होता है, थॉट क्रिएट होता है जिसके पीछे बहुत सारी एक स्टोरियाँ, किस्से, कहानियाँ, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और फिर फौरन फौरन वो कैलकुलेशन हो के आपकी ज़बान तक लफ्ज़ों की शक्ल में ढल के आती हैं, एंड यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट। जब आप रिस्पॉन्स देते हैं उसके बाद फिर मामलात और से और हो जाते हैं। तो अब बात यह है कि अगर फ़र्ज करें ये चीज़ पेशेंस की ख़त्म हो जाए, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं वाली चीज़ निकल जाए, और आप ब्लंटली हर तरफ से आपको इस तरह की आवाज़ें आ रही हों कि बस इधर किसी ने कोई बात की पेशेंस है ही नहीं लड़ाई, उधर किसी ने बात की पेशेंस है ही नहीं लड़ाई, सब्र है ही नहीं लड़ाई, कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, और इधर मैं भी बोल रहा हूँ, मैनू फ़ोन करके तुसी लड़ना शुरू कर दे, तुमने ऐसे बात क्यों की, मुझे पसंद नहीं आई तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे मैं भी आगे से कहूँ मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं जो दिल करे बोलूँ, कुछ इस तरह के मामला शुरू हो जाएंगे, और हर तरफ फिर हर जगह तहरीर भी कुछ इस तरह की नज़र आना शुरू हो जाएगी, मिस्टर ए ने ये बात की और मिस्टर बी ने ये बात की, मिस्टर ए ने उठा के उसके सर पर ग्लास मार दिया, फिर दूसरे ने मिस्टर बी ने जग मार दिया, दुनिया में फिर आपको हर तरफ एक क्योस नजर आना शुरू हो जाएगा, बेचैनी, एक उलझन, एक परेशानी, जहां सिर्फ महज झगड़ा होगा। ये सुकून जो उतरता है आपके, मेरी और दुनिया में पूरी जगह पे, सिर्फ इसी वजह से उतरता है कि जहां सब्र पाया जाता है, पेशेंस पाई जाती है, और ये खालिक ने इतनी ज्यादा जो नेमतें दी हैं उनमें से एक ये भी बड़ी खूबसूरत सी नेमत है, हम सबको इससे नवाजा है कि हम कहीं ना कहीं बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, और दिन में कई मर्तबा करते हैं। बस ये है कि इसको थोड़ा सा डायरेक्शनल अगर कर लें तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, ये सोच के कि मुझे आगे से जवाब नहीं देना, इससे खलल पैदा होगा मामलात में, तो बड़ी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ कितनी खूबसूरती से दी। लेकिन इन द सेम टाइम वो अक्सर मैं ये बात करता हूँ, एक मैं वाकया पहले भी 2-3 मरतबा सुना चुका हूँ, मैं फिर से सुनाता हूँ यहाँ पर, कि गांव था, वहाँ के रास्ते में जंगल था, और जंगल क्रॉस करने के लिए एक छोटी सी नदी थी, उसके ऊपर ब्रिज था। एक कहावत है या रवायती वाकया है, जो पहुँचा तो उसे क्रॉस करने के बाद बिल्कुल उसके एज के ऊपर एक सांप बैठता था, लोगों को बड़ी दिक्कत थी, वो सांप उन गुजरने वालों को बहुत तंग करता, डसने की कोशिश करता है, काट भी लेता ना। तो गांव वालों ने एक बुजुर्ग से जाके उसकी शिकायत की कि फलां फलां रास्ते में एक सांप बैठता है जी, जब भी हम गुजरते हैं वहां से तंग करता है जी, काट भी लेता है जी, तो हम बड़ा परेशान है। बुजुर्ग आए और बुजुर्ग ने आके उस सांप को समझाया और उसे कहा कि खबरदार भाई, अब तुमने किसी को कुछ कहा या डांटा और वो काटा। कुछ अरसे के बाद बुजुर्ग जब वहां से दोबारा गुजरे और देखा सांप वहीं पे मौजूद है, लेकिन उसके जिस्म पे बेशुमार जख्मों के निशान हैं, लहूलुहान हो गया है। उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट हैपेंड टू यू, मतलब तुम्हारे साथ क्या गुजरी।
तो सांप कहने लगा कि आपने मना किया था, इन्हें कुछ नहीं कहना। अब मैंने कुछ कहना छोड़ दिया है तो इन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया है। अब ये गुजरते हुए मुझे पत्थर भी मारते हैं, कोई मुझे पांव मार जाता है, कोई धुधकारता है, कोई आवाजें कसता है। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा के उसे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था इनको काटना नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा था कि अपना रोब और दबदबा खत्म कर दो। पंजाबी में कहते हैं कि शुकर नहीं छड़ी दी, इन पंजाबी लैंग्वेज शुकर नहीं छड़ी दी मीन्स के अपना फन जो है उसको फैला के रखना चाहिए कि देखने वाला आपको कमजोर ना समझे और किसी को बिला वजह तंग ना करें आप। तो पेशेंस होनी चाहिए, लेकिन इस हद तक कि देखने वाला आपको कमजोर ना समझे। और यही वो मामला है जिसका जिक्र मैं यहां पे कर रहा हूं कि जब हमारे वतन अजीज को, हमें और हमारी अफवाज को देखने वालों ने कमजोर समझा, और ये गलती की कमजोर समझने की, तो उन्होंने फिर चाहा कि हम तो मसला ही कोई नहीं है जी, पाकिस्तान तो रौला ही कोई नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की बड़ी गलत कोशिश की, जिसके जवाब में जो है ना, फिर पाकिस्तान आर्मी ने फजर की नमाज अदा करने के बाद इन जुमलों के साथ चढ़ाई शुरू की, नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। आई रिमेम्बर दैट लाइन, आई लव दैट लाइन। ओहो, उस वक्त मुझे याद है क्या लाइन थी। और उसके बाद फिर वो जो वीडियोस आई, मतलब जिस तरह से जहाज गए और जहाज़ों ने जाके जिस महारत के साथ, ऐसे लग रहा था जैसे हवा में खेल रहे हैं ना, जिस तरह से जाके उन्होंने हमला किया उनकी एयरबेस पे और उनके वो डिफेंस सिस्टम सारा उड़ाया, फिर जिस तरह से वो गोलियों के बौछाड़ और उसके दरमियान जिस तरह शानदार हवाबाजी का मुजाहरा किया हमारे पायलट्स ने, ओहो, मैं अभी कल परसों भी देख रहा था वीडियोज, इतना मज़ा आता है देखने का, कैसे मतलब हाउ, आई जस्ट लव इट यार, ओनली यू कैन डू दिस, ओनली पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ओनली यू कैन डू दिस, वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ यू। एक एक जवान जो है, एक एक अफसर जो है, यकीन करें हमें आप पे फख्र है, और आप हमारी शान हैं और हमारे सर फख्र से बुलंद हैं। और मेरी तमाम आरजेस की तरफ से, FM 101 की टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको सलूट है। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर, पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बी प्राउड पाकिस्तानी जहां पे भी हैं, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करें। परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन हाँ, प्रोटेक्टर परफेक्ट है हमारे। Here you go, this is Arjadox, don't go anywhere, it's 10:34 PM on the dial and 13th of May 2026 and I'll catch you back after this beautiful मार्का हक की याद में जो गाना रिलीज हुआ, तू याद रखें, हाँ तू याद रखें। Don't go anywhere, you can call me after this track, 042-111-0101, 042-111-0101, and of course RJ_DUX_Docs लिख के सर्च करें, फेसबुक में मेरी वीडियो स्ट्रीम मिल जाएगी, हिट में वीडियो कमेंट्स, तू याद रखी।

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:39 PM, 10:40 अब हो गए, और 13 मई 2026 का सन, FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आरजे टॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम पर मैसेज किया, आप सबको बहुत शुक्रिया। आप भी जिन लोगों ने अभी पहली मरतबा सुनना शुरू किया, और यहाँ जिन्हें पता नहीं है मेरी वीडियो लाइव स्ट्रीम है, वहाँ पे भी आके आप कमेंट कर सकते हैं, RJ DOX लिख के आपने फेसबुक पे सर्च करना है, वहाँ पे वीडियो स्ट्रीम मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आप जो है मुझे, अगर आपके पास फेसबुक तक या इस तरह की इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं है, तो आप मुझे SMS भी कर सकते हैं, और SMS करने का मतलब ये है कि आपने अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपने जाके 101 लिखना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, फिर अपना पैगाम लिखना है, ठीक है जी, और उसको भेज देना है 4471 पर, तो वहाँ पे फिर पैगाम मुझे पहुँच जाएगा। उसमें कोई भी चीज़ है नहीं, थिंग अपने बारे में लिख दें, मुझसे कुछ पूछ लें, मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, मौजू जो भी हो, बात आपके बारे में है, आपसे है, और इट इज़ ऑलवेज अबाउट यू। आप मेरा हाथ थाम में जिधर दिल करता शो को ले जाएं, मेरे मौजू को छोड़ें, अपनी बात करें, आई एम हेयर टू टॉक अबाउट यू विद यू, एंड यू कैन कॉल मी 04221100101। एंड मेरी पोस्ट है, स्टैटिक पोस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों पे पोस्ट होगी, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, माजबीन आई हैं, शी इज़ नॉट वेल, और चक्कर चक्कर आ रहे हैं उन्हें, अल्लाह आपको सेहत दे, कोई बात नहीं है, डू नॉट वरी, अक्सर हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है। आज डॉक्स वाइब्स, 8 रुपए का SMS, कोई नहीं, आपका इसका भी हाल निकाले हैं, हम जल्दी आपको WhatsApp नंबर देने वाले हैं, और फिर WhatsApp नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, हम इसका भी सलूशन निकाल रहे हैं। अच्छा, बाबर अयूब हैं, जहीर अहमद हैं, इन्होंने मैसेज किया, आकाश अली हैं, थैंक यू वेरी मच, और बाबर अयूब खान, मैं आपको बताऊँ, मुझे जो पहला बंदा मेरा लिसनर आके मिला था, ही वॉज द पर्सन जो इस वक्त मेरी लाइव स्ट्रीम पे है, सच अ लवली पर्सन, और मतलब इन्हें पता था मुझे कॉफ़ी पसंद है, सुनते सुनते उस दिन मूड में थे ये साहब, और ये गए मेरे लिए, इन्होंने कॉफ़ी ली, और सर्दियों की रात थी, मैंने अपना लैपटॉप उठाया और स्टूडियो से निकला, तो धुंधें थी, दूर से ना मुझे साए नज़र आए, 3 साए आ रहे हैं, और रात टाइम था 3:30 बजे का, 3:15 मैं कही अल्लाह खैर, आज मैं लुटिया गया, आज मेरा लैपटॉप भी खो लेना इन्होंने, एंड आई वाज थिंकिंग यार मोबाइल बच जाए, और लैपटॉप का डाटा भी बड़ा ज़रूरी है, वॉलेट था नहीं मेरे पास, वो पहले ही मैं गाड़ी में छोड़ आया था, गाड़ी दूर थी, मैं कहा चलो देखी जाएगी जो होगा। 15 सितंबर, अच्छा सितंबर थी, बाबर अयूब ने लिखा, तो रात का टाइम था, फिर जब करीब आके जब मेरी तरफ ही आए, मैं फिर पक्का घबरा गया, मैं कहा आज ते लुटी गई। बहरहाल फिर ये मिले, और इन्होंने फिर बताया, फिर बड़ा मज़ा आया, 15 नवंबर थी, सी नवंबर का महीना था, अरे टूटे दिल को याद होता है किस दिन टूटा था वो। फिर हम बाहर खड़े हुए, गपशप लगाई, वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी, बड़ा मज़ा आया, फिर उसके बाद से बाबर आई ऑलवेज रिमेंबर यू, और बड़ा अच्छा लगा, फिर उन्होंने एक डिनर भी कराया मुझे, बड़ा अच्छा सा, गो को मैं मना करता रहा, लेकिन बाहर ये ले गए, फिर इन्होंने ये सारी डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई, और आई लव डेट यार, थैंक यू वेरी मच बाबर, लॉस ऑफ लव फॉर यू, और आपको मैं हमेशा याद रखूँगा, सच अ लवली एंड स्वीट पर्सन ही इज़। माजबीन कहती है, मुझे डॉक्टर हजरात से शिकायत है कि वो मर्जी का बताते हैं, वजह नहीं बताते, मर्ज का बताते हैं, वजह नहीं बताते, हाँ। ये वजह जो है ना, ये हकीम बता सकते हैं, या वो जो नब्ज आपकी थामेगा और हाल दिल जान देगा, वो ही बताएगा कि वजह क्या है। तो जी, आज के दिन मैं बात वैसे करना चाह रहा हूँ, लॉस ऑफ लव बाबर ब्रो, लॉस ऑफ लव फॉर यू,
आज के दिन में बात करना चाह रहा हूँ, देखें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मेरे जहन में आ रहा था यार, हर चीज़ के बेनिफिट होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो मेरे जहन में आ रही थी जेलिसी। तो यार जेलिसी को हम और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। आज मेरा दिल था ज़रा और एक और एंगल से देखा जाए, जेलिसी अगर की जाती है या होती है, इसके कोई बेनिफिट होते ही होंगे ना जी, तो इसके ज़रा मैं फ़ायदे जानना चाहता हूँ। जेलिसी के फ़ायदे क्या हैं, जेलिसी के बेनिफिट तो होंगे, जेलिसी के आज मुझे आप फ़ायदे बताएंगे, क्योंकि हम हर जुबान सदे आप बात चल रही होती है, अब फलां बड़ा जेलस है, तुम जेलस तो नहीं हो रही मेरे से, तुम जेलस हो रहे हो, और ख़वातीन एक दूसरे के बारे में इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा पास कर रही होती हैं। शॉपिंग पे गई कि सेल लग गई, उस पर फड्डा हो गया, मैंने उधर देखा वो औरत मुझे ऐसे घूर के देख रही थी, मेरे सूट को भी देख रही थी, मैं पता चल रहा था वो जेलस हो रही है, यू नो मेरे पे फिर चीज़ तो पहनी हुई अच्छी लगती है ना, बाहर किसी पे तो अच्छी नहीं ना लगती। मेरे जब बंदा आगे सुन रहा हो बैठ के, वो कह रहा था हाँ सही कह रही हैं, सही कह रही। तो जेलसी क्या है, आई वांट टू नो अबाउट द बेनिफिट्स। यहाँ पे बहुत सारे मामला हो रहे होते हैं, बॉयज़ के अंदर भी जेलसी हो रही होती है, बॉयज़ के अंदर जेलसी हो रही होती है, ओ मैन लुक एट हर इस गर्लफ्रेंड, ओ यार इसकी बंदी इस तरह की चल रही होती है, यहाँ पर गाड़ी कैसी है, फिर और ज़रा रख रखाओ माल दौलत, तो बेनिफिट आ रहे होते हैं, जो फिर कहीं ना कहीं जेलसी चल रही होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एवं ही गुमान हो ही जाता है, मेरे से सारे जलते हैं, हर किसी को मेरे से मसला होता है, इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा होता है यार सारे मेरे को सड़ते ने, मतलब एवरी वन इज जेलस्ट, मैं अकेला परफेक्ट हूँ, आई एम द परफेक्ट बींग, मेरे अलावा और कोई नहीं। आज डॉक्स वाइब्स कह रहे हैं कि जी फायदा तो कोई नहीं, फायदा है, शर्तिया फायदा है, ऐसे ही नहीं है, मैं आपको फायदा बता भी दूंगा, गिना भी दूंगा। अच्छा बाबर कह रहे हैं, पूछा जो तबीब से हाल है मर्स, कहने लगे बाबर से बात किया करो, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। छा गए अयूब रहमान साहब, अयूब अफरीदी, डॉक्स भाई इस्लाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सलाम किया फिजा राजपूत ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और शकील अहमद लाहौर से सुन रहे हैं, कहते हैं डी डॉक्टर सलाम वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद प्लीज़ डॉक्टर प्ले, बारिश की चंद बूंदे मेरे दिल को चुराए जाए। यार आज मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ, बातें मैं चाह रहा हूँ चुक के करूँ फुल लाइट, और गाने में बिल्कुल कंट्रास्ट में चलाऊँ ज़रा मौसम के हिसाब से। आज मौसम ने लाहौर वालों को धेड़ के रख दिया है बिल्कुल ऐसे। मैं एंटर हुआ अपने ऑफिस में शदीद गर्मी के आलम में, मैं बाहर निकला परेशानी का हाल था, एकदम हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, बादल शदीद और बारिश के कतरे गिरना शुरू हुए, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने फिर एक वीडियो बनाई, जाते जाते मैं क्या समझ नहीं आ रही, मई का महीना है, लाहौर का मौसम कुछ समझ से बाहर है, चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो आंधी तूफान आया और शदीद किस्म की जालाबारी हुई, ओले पड़े, मैनू तो लगता सी मेरी गड्डी चुक के ले जाएगी आज हवा, तो मैं तो बड़ा परेशान था। नहीं वो नहीं लगाऊंगा आज डॉक्स वाइब्स, आई डोंट लाइक इट। अच्छा जी सागर खत्री, हेलो वेलकम, मैं बरनाला पंजाब इंडिया से, पाजी की हाल है, पाजी ठीक हो खैरियत नाल हो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पाजी ये पहला गाना जनाब आज से ला रहे हैं मैं, हैं जी थोड़ा जो मूड सेट करिए, बल्कि नहीं इससे पहले एक और गाना लगाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको मैं उस टेम्पो पे लेके आता हूँ। एंड फर्स्ट गाना आई एम गोइंग टू प्ले दैट ट्रैक। ओके अ ब्यूटीफुल ट्रैक बाय फलक फलक, यार आई लव दिस ट्रैक एंड दिस ट्रैक इज फॉर यू। बी ग्रजिंग, ये आपने बताना है फिजा क्या फर्क है, मैं तो ये गाना सुनाऊंगा, आई लव दिस ट्रैक यार, आई वांट यू टू एंजॉय दिस नंबर, हियर यू गो। आज के मौसम पता नहीं लाहौर के अलावा कहाँ कहाँ पे बारिश हुई, हर चीज जो है ना एक बैलेंस फॉर्म में आए ना अच्छी लगती है, वो प्यार मोहब्बत हो, वो गुस्से का इजहार हो, वो बरसते बादल हो, यहाँ
एडवाइसेस वाली किताबें हों, हाथ से बढ़ जाए ना परेशानी का सबब, वो चाहे खूबसूरती क्यों ना हो, फिर रातों की नींद भी छिन जाती है।

Yaar, I wanna play a line again. उन लोगों के लिए जो इसको फील करते हैं, इट्स नॉट अ सॉन्ग ओनली, सिर्फ महज एक गाना नहीं है, यकीन करें ये पूरा एक पैकेज है जिसमें फील है, जिसमें एहसास है ना, आप महसूस करना शुरू करते हैं। कुछ मेलोडीज, कुछ गाने, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि जैसे आपके अंदर की चीज है ना, आपके अंदर की बातें निकल के आ रही हैं। मुझे भी ऐसे लगता है। तो जिन लोगों ने इसको फील किया है ना, खास तौर पे मेरे जो भाई सुन रहे हैं मुझे श्रीनगर से और इंडिया से, ये लाइन जो है ना, ये लाइन उठा के कहीं और ही ले जाती है। ना जाने कितनी बातें याद आ जाती हैं फकत इस एक ख्याल से कि तू मेरा था, मगर फिर ख्याल आता है कि तू मेरा था। हाँ, तू मेरा था।

0: कैन यू फील इट विद मी. ये जो अगली बात महज गाने का हिस्सा नहीं, अगली बात एक लम्हा
1: आँखों में कैद किए बैठा मैं एक हसीन.
0: बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हर बंदे की जिंदगी में होती हैं, महज वो एक सेकंड के अंदर ही एक वो लम्हा होता है जो आपको बिल्कुल ऑल टुगेदर एक मुनफरिद एक अलग ही सोच दे के चला जाता है ना. दैट कुड बी एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में. आप कहीं पे भी हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी तरह का काम है. बांग्लादेश से बीबी नंबर बांग्लादेश से हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. आज हमें श्रीनगर से भी मेरा एक भाई सुन रहा है, एक बरनाला इंडिया से सुन रहे हैं और बांग्लादेश से भी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. और ये अगली लाइन आप लोगों के ही नाम कर रहा हूं मैं. आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हात से टकराव करना पड़ता है, इनकाउंटर हो जाता है, कोई एक लम्हा आपकी जिंदगी बदल जाता है. मेरी तो मैं फील करता हूँ बहुत सारे ऐसे लम्हात गुजरे होंगे, लेकिन उनमें मैं गिन के बता सकता हूँ कि वो कौन से चंद एक लम्हे थे जो बदल के चले गए. वो जिंदगी को एक ही लम्हे में कैद कर दिया उसने, इस कदर जादू गरीब महारत थी उसको. Here you go. Listen that again.

0: ऑलरेडी वेलकम बैक, वक्त हो चुका है 10:58 PM ऑन द डायल हियर इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के बाहर से मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैंने बोला एंड थैंक यू वेरी मच। बीबी नंबर ने हमें ज्वाइन किया और बांग्लादेश से, आई डोंट नो इफ यू आर अ गर्ल और अ गाय, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और हमारे एक भाई ने हमें सुनना शुरू किया इंडिया से, हमें लास्ट प्रोग्राम में भी सुन रहे थे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड सोनिया जफ़र, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। एंड उसके अलावा हमें श्रीनगर से भी हमारे भाई सुन रहे हैं, कह रहे हैं सर ऑन एयर इधर लाइव शो में आप लड़का लड़की की सेटिंग करा दें अपने लिए। खैर मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दें शादी के लिए। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो हो सकता है मेरे भाई, लॉन्ग डिस्टेंस शादी नहीं चल सकती। सर फिजू को मेरा बोल दीजिए। जा सर उधर श्रीनगर में बैठ के, यहाँ लाहौर में फिजा, ये लॉन्ग डिस्टेंस शादी कैसे चलेगी? इसका कुछ सलूशन निकाल के बताएं मुझे, इस तरह की कौन सी शादी चल सकती है फिर। उसके बारे में बंदा सोचता भी है। अच्छा अभी यहाँ पे न्यूज ब्रेक है जी, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस न्यूज ब्रेक। एंड टॉपिक ये है जेलिसी के फायदे, मुझे चाहिए बड़े फायदे, यकीन करें मैं नहीं, लोग जेलिस होते फिरते। सरमा राशि साहिबा थैंक यू वेरी मच, मरी बैठ के सुन रही हैं।
1: का खुलासा, वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को तालीम, हुनरमंदी, रोजगार और कारोबार में बेहतर मौके फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। सदर मुल्कत ने एक तकरीब के दौरान मुमताज शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के एतराफ में सिविल एजाजात से नवाजा है।
0: All right, and thank you very much। खबरें मुकम्मल हुई और खबरों से मुझे याद आया, हम प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जिस तरह से यूथ पे फोकस हैं और उसी को करते हुए हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, ही इज़ आल्सो वेरी मच फोकस्ड कि नौजवानों को डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी प्रोवाइड किए जाएं। तो उसी पे रेडियो पाकिस्तान का लाहौर स्टेशन एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम जून फॉर 2 मंथ्स, और हफ्ते में 2 दिन इसकी हुआ करेंगे सेशंस। और इसमें इंटर्नशिप में एनीवन कैन ज्वाइन जी, जिसकी उम्र 28 साल या उससे कम है, स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो कम से कम बैचलर किया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका फॉर्म एंड एवरीथिंग जो है रिलेटेड के कोर्स मॉड्यूल्स क्या होंगे और फॉर्म इसका जो है इंटर्नशिप के लिए, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा FM 101 लाहौर की जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उसके ऊपर वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको सबमिट कर सकते हैं। एंड उसमें RJ एंड ब्रॉडकास्टिंग की ट्रेनिंग है जी, और दुनिया जो है डिजिटलाइज होती जा रही है ना, आपको कम्युनिकेट करना आता है तो आप अपना डिजिटल चैनल बनाएं, अपने वीलॉग करें, ब्लॉग्स करें, फूड ब्लॉगिंग करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके हवाले से यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, किस तरह से अपने ख्यालात को अपनी ज़बान से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाएगा, जून में स्टार्ट होगी, एक्सपेक्टेडली स्टार्टिंग फ्राम 9th of June। तो जो इंटरेस्ट रखता है डू ज्वाइन, और फिर जो उनमें से बेहतरीन होंगे उन्हें फिर यहाँ पे RJ के तौर पे हम ज्वाइन भी करवाएंगे। एंड यस, एक महीना आपके सेशन जो होंगे, टोटल 8 सेशन वो आपके होंगे जी अलग से माइक से हट के, और फिर एक पूरा महीना सबको माइक पे बिठाया जाएगा जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। सलमा जी कह रही हैं वहाँ पर ड्राई एंड प्लेजेंट वेदर है। जासर कह रहे हैं इस दुनिया से प्यार चलता रहता है, ये हर किसी को हो जाता है, लव इज ब्लाइंड, सही कह रहे हैं आप। एनीवेज, आई एम टॉकिंग अबाउट जेलेसी, जेलेसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मुझे ये बताइए कौन कौन से फ़ायदे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि जेलेस लोग बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है हम भी कहीं ना कहीं कर जाते होंगे शायद, जिसमें आपके फैंस, आपके चाहने वालों को इतनी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं होती जितना आपसे जेलेस होने वालों को। आपने DP कब बदली, आपने स्टोरी क्या लगाई, आपने कौन से कपड़े पहने, आप कहाँ गए, किससे मिले, क्यों मिले, क्या किया, क्या नहीं किया। और जेलेसी में बड़ा कुछ इंसान सीखता है, वो काम बंदा कर जाता है जो कभी सोचे नहीं होते। इससे बड़ा क्या फ़ायदा है जिसकी आप में करेज नहीं होती। इंसान वो ऐसे भी काम कर गुजरता है जेलिसी के मरहूने में नता है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जेलिसी। क्या ख्याल है आपका, मुझे बताएं। मैं तो कहता हूँ जेलिसी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि आपकी नज़र में इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और कभी आप किसी से जेलस हुए हैं तो उस जेलिसी में आपने किस तरह का एक्ट किया, तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। आप फिजा, मेरा ख्याल है माइक थे, तुसी आ जाओ, मैं चला जाना। आप डिफरेंस बताता हूँ मैं तुम्हें, दस दो ना, दस ना मैं तानू, जरा चंगी तरह दस ना, जरा सबर करो। आप मुझे कॉल करें 0422111001, और इसके अलावा मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अपने मोबाइल से, SMS करें अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पर। और इसके अलावा फेसबुक पे मेरी पोस्ट है FM 101 चैनल पाकिस्तान एंड FM 101 लाहौर। एंड यस, कल मेरा जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें दोबारा से वो जिस तरह से कार्ड हम क्वेश्चन पे देते थे, अब आपको कार्ड मिलेंगे। वो वेलवीरा कंपनी लास्ट टाइम आई थी, उन्होंने स्पॉन्सर किया और 2 कार्ड मिलेंगे, तो कल के प्रोग्राम में ज़रूर आना। मैं चाहता हूँ आप लोग जीतें, 2 के 2 कार्ड जीतें। I want you to win. Anyway, we're going to take the first call. फिर आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ते हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब, कैसे हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र है। लड़की कह रही है लड़के से कि कैसे मिजाज आपके फरमाइए।
0: वाह वाह।
2: लड़का बोल रहा है कि हम तो हैं खैरियत से आप अपनी सुनाइए। तो आज से आपका नाम है लव गुरु।
0: लव गुरु क्यों, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया?
2: ओ भाई जान, श्रीनगर वाले का ताता भिड़वा रहे हैं आप।
0: नहीं, अगर ऐसा कुछ हो जाए ना मेरी वजह से किसी के लिए, तो यार मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं खुश होऊंगा।
2: नहीं मैं समझा कि भले अगर किसी का कुछ हो जाए तो भाई मेरी जमानत नहीं है।
0: नहीं, वो जमानत मैं नहीं दूंगा, खुशी मुझे जरूर होगी।
2: नहीं, नहीं, नहीं,
0: खुशी मुझे जरूर होगी जी, खुशी जरूर होगी।
2: अल्लाह करे हो जाए भाई, हम तो भैया लवर यानी हमें तो खुशी होती है माशाल्लाह, जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए वो बहुत अच्छा होता है।
0: हाँ बिल्कुल सही है।
2: अच्छा, जेलिसी का मैं आपको बता रहा हूँ कि इब्तदाई दिनों में जब मेरी अपना शादी हुई तो उसमें इब्तदाई दिनों में मैं मीठा पान लेके गया हूँ।
0: अच्छा जी,
2: ठीक है। अच्छा, नाम ले दिया मैंने अपने दोस्त का, मैंने बोला ये मेरा मेरी दोस्त है आसिफा।
0: अच्छा जी,
2: उसने दिलाया।
0: अच्छा,
2: तो साइन पान किधर गया?
0: हाँ, पान फिर पहुंच गया जिधर पहुंचना था,
2: सीधा खिड़की से बाहर।
0: ये ऐसे नहीं लिया है जी, यूके से आपको सलाम दे रहे हैं।
2: अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और फिर उसके बाद आप खुदा की कसम यकीन कीजिएगा मेरी वाइफ
0: नहीं, ये बात नहीं, मतलब मुझे मजा था बात था, पान की जगह आप जाते खिड़की से बाहर।
2: अच्छा, वो जेलिसी का बता रहा हूँ, मेरे साथ आपस में लड़की होती थी।
0: आपने लव गुरु बोला, देखे वो लाइफ पे मेरी मैसेज सोनिया जफर ने गुरु उठा लिया, लव को उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने सिर्फ मुझे गुरु बना दिया।
2: नहीं, वो अपनी तरफ ले गई होंगी ना।
0: ठीक है जी।
2: अच्छा, तो उसमें बता रहा हूँ, एक ही टेबल पे हम दोनों हुआ करते थे, तो यानी आए दिन वो अपने घर की बात, मैं अपने घर की बात, यानी करके पूरा दिन गुजारते थे। तो यानी उसने पता नहीं कब फोन कर लिया घर पे।
0: अच्छा,
2: मेरी गैर मौजूदगी में कि भाभी आज क्या बनाया है ये वो। तो उन्होंने जैसे कीमा भरी हुई मिर्चें होती है ना,
0: हाँ
2: वो बनाना था उन्होंने उस दिन, तो उसने कीमा भरी हुई मिर्चें बनाऊंगी और अपना जो है अचार वगैरह साथ होगा। तो उसने बोला कल आप कैसा करना, ये जब आए ना तो इनके साथ भेज देना।
0: अच्छा जी।
2: अबे भाई आप यकीन कीजिएगा, मैं नहा धो के अपना नाश्ता करके सुबह तैयार, तो उन्होंने एक पार्सल दिया मेरे को
0: जी।
2: बोले ये क्या है? बोले ये क्या है? बोले उसका फोन आया था कि बोले जो कल आप खाओगी वो भेज देना।
0: अच्छा। तो मिर्चे भेज दी।
2: मैंने बोला यार ये क्या यार, ऐसा नहीं कर यार, क्यों मिला रहे हो? बताओ कि कसम उनके क्या अल्फाज थे, अरे जाओ खाओ, क्या याद करोगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, लकी इंसान है आपकी बेगम। जेलस नहीं होती रही है ना, मौज होती
2: नहीं, नहीं, नहीं, अल्लाह का शुक्र है।
0: जेलस होते बड़े बड़े बेनिफिट होते हैं जेलसी के, देखें आपकी जिंदगी में बेनिफिट थे। सुने, अगर आपकी बेगम जेलस होती है आपको, आप कहते हैं वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है, वो उससे बिहेव अच्छा करती है, वो और अच्छे तरीके से आपसे पेश आती।
2: अरे जाने जेलस होके करेगा क्या आदमी, एक बंदा कार में जा रहा है उसको आप किसी से बोलो यार उसके पास कार है, यार तेरे पास मोटरसाइकिल है तुझे देख अल्लाह
0: ने। नहीं, अपनी सिचुएशन पे रहे आप, बेगम वाली पे रहे।
2: हाँ हाँ माशाल्लाह आपके लाहौर के हिसाब से यार ये मेरा पसंदीदा गाना है, वो मैं गाना चाहता हूँ।
0: जल्दी से गा दे, काफी लंबी कॉल हो।
2: ऐसा ना बारिश हो जाए।
0: हाँ बारिश हो रही है ऑलरेडी।
2: कुछ देर तो रुक जाओ, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसा

0: रुक जाओ।
1: अब मुझे याद हो गया ये गाना, आपने इतना सुनाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी।
0: एक अंतरा मेरा रह गया, मुझे ये गाना मुझे बहुत पसंद,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अभी एक अंतरा रह गया था। अच्छा, मुझसे अभी यहाँ पे सवाल पूछा, फिजा ने पूछा, और ग्रजिंग, बी ग्रजिंग एंड जेलिसी में क्या फ़र्क है। आज वाइब्स ने पूछा, जेलिसी और पोजेसिवनेस में क्या फ़र्क है। अच्छा, बी ग्रजिंग और जेलिसी में फ़र्क है, व्हेन यू आर जेलिस्ट, जेलिसी में होता है कि आप सिर्फ ना पसंद करते हैं चीज़ों को जो उसको सक्सेस की शक्ल में किसी भी तरह से बेनिफिट दे रही होती हैं, बल्कि आप एफर्ट भी करते हैं उसके खिलाफ किसी न किसी तरह से उसको नुकसान पहुँचाने की, या वो चीज़ उससे छिन जाए, इस तरह की कोई एफर्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा बी ग्रजिंग जो होता है नॉर्मली, इसमें होता है साइलेंटली आप ना पसंद करते हैं, जिस तरह के आपने कहा अभी सक्सेस मिल गई है ठीक है, लेकिन आई डोंट लाइक इट, मैं उसको पसंद नहीं करता या इस चीज़ को पसंद नहीं करता, उसमें यह है कि आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते लेकिन उसको पसंद भी नहीं करते। जेलिसी में ज़रा एक स्टेप आगे जाते हैं। और पोजेसिवनेस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरह से होती है, मर्द हो या फीमेल हो, दोनों की तरफ से अगर रिलेशनशिप की बात करें उसमें भी आ जाती है, एज अ फ्रेंड्स में भी आती है, घर वालों में भी आती है, चीज़ों के हवाले से भी आती है। और पोजेसिवनेस होती है एक सर्टेन लिमिट तक, अगर आप चीज़ के बारे में पोजेसिव हैं कि इसको ख़राब ना कर दे कोई, उस हद तक अगर आप जाते हैं देन दिस इज गुड, लेकिन इस हद तक जाना कि इनू वेखे ही ना कोई, देन दैट्स नॉट गुड। ये बिल्कुल नहीं ठीक। फिजा राजपूत, मेरा ख्याल है आइंदा के बाद फिर आप अपने सवाल खुद ही से पूछ के खुद ही कर लिया करें, ठीक है, इतनी सियाणी है ना आप। अब मुझे मेरा इनाम पहुंचाए ना जरा, जो आपने कहा बजा फरमाया। अच्छा जी, अच्छा जासर कह रहे हैं सिफारिश, आपकी सिफारिश है जी फिजा को, बिल्कुल जी सिफारिश ही सिफारिश है, बिल्कुल बनता है जी आपका, आप आ जाएं लाहौर। इशाल असदी ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, अस्सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। जेलिसी ऐसी भी होती है कि लोग फ़र्क भूल जाते हैं कि हम किस मयार पर हैं और सामने वाला किस जगह पर है, अफसोस। हाँ, लेकिन बेनिफिट हो जाता है, जेलिसी का बेनिफिट ये है कि आप जिस बंदे के साथ फड्डा डालते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, वो आपको रिकग्नाइज़ कर लेता है, और रिकग्नाइज़ हो जाने से बड़ी क्या चीज़ है ना बेनिफिट, क्या नहीं। एम उस्मान अली ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। और मौजू ये है जेलिसी के, आपने बेनिफिट बताने हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन्हें फिर से बताता जाता हूँ, जेलिसी के बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है, कुछ तो है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पाई जाती है और हर बंदे को महसूस हो रहा होता है लोग उससे जेलिस हैं, कैसे, हाउ, व्हाई, कम ऑन टेल मी। अभी मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ जी 4471 के साथ साथ, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। मुझे बताइएगा आपको बेनिफिट नज़र आता है, कभी आप जिंदगी में किसी से जेलिस हुए, कभी आपने किसी का इमेज ख़राब करने की, इन अदर वर्ड्स जेलसी के इजहार में उसकी बुराइयाँ करके उसको पॉपुलर करने की कोशिश की, मैं बेनिफिट बता रहा हूँ आपको, रिस्पांस मुझे बताइएगा आपको बेनिफिट नज़र आता है, कभी आप जिंदगी में किसी से जेलिस हुए, कभी आपने किसी का इमेज ख़राब करने की, इन अदर वर्ड्स जेलसी के इजहार में उसकी

जेलसी में बंदा बड़ा कुछ कर जाता है। रिलेशनशिप की जेलसियां और ही लेवल पे होती हैं, और ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंची होती है बंदे और बंदी की। बंदियों में तो हैवी किस्म की जेलसी पाई जाती है ना। एनीवेज मैसेज पर 4471 का जी, सर जी यू लुक ब्यूटीफुल सर, थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू, आई एम फाइन। और सलाम किया, वालेकुम सलाम, पाकिस्तान आर्मी से हमें सुन रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, पाकिस्तान आर्मी से नहीं है, इन्होंने सलाम किया और थैंक यू वेरी मच। अमल जहरा, मेरे लफ्जों को इतनी शिद्दत से ना पढ़ा करो, कुछ याद रह गया तो हमें भूल नहीं पाओगे। हाय हाय हाय हाय, कोई बात नहीं। अलीजा कहती हैं, ना रब मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और नाजिश हैं, नाजिश क्या कहती हैं, उन दोस्तों से लड़ना चाहिए जिनके साथ आपने खाया हो एक प्लेट में, और वही दोस्त आपके खिलाफ हो जाए विदाउट रीजन। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, वो दोस्त जब आपके खिलाफ हो जाते हैं विदाउट रीजन, तो उसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व होता है? उसमें समटाइम एक मछली ऐसी होती है जो बाकी सारी मछलियों को भी ख़राब कर देती है। बख्तावर कैनी ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच, इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। और समटाइम हमारे एक्ट ऐसे हो रहे होते हैं ना, जब हमें खुद नहीं रियलाइजेशन हो रही होती कि हम तो, क्योंकि करने वाला तो अपने आप को ठीक समझता है, लेकिन अगले हमें जज कर रहे होते हैं, तो गलती हमारी भी होती है, मेरी भी होती है, मैं भी नहीं मानता, समटाइम हम मान नहीं रहे होते। लेकिन समटाइम कोई ना कोई ऐसा जेलस बंदा ज़रूर होता है जो एक दफ़ा हवा का रुख बदल लेता है, आपके खिलाफ कर देता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, इवेंचुअली नुकसान उसी को होता है। ये भी एक जेलसी का बेनिफिट है, वो जो गंदी मछली होती है ना, वो आइडेंटिफाई हो जाती है। और दसो, देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स। और रिलेशनशिप में जेलस करने का तो और ही मज़ा है, आपकी बंदी है उसे जेलस करें ना, वो जेलस हो जाए, आ हा हा हा, उसके बाद मौजें हैं आपकी, हैवी किस्म की मौजें। आई रिमेंबर ए पर्सन, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके माशाल्लाह से दो बीवियाँ हैं, कहते एक नहीं दो दो बीवियाँ ने, और दोनों बीवियाँ आपस में कंपटीशन के अंदर उनका बहुत सारा ख्याल रखती हैं, बड़ा मज़ा आता है। वो अक्सर बाहर आके हंस रहे होते हैं, कहना बड़ा मज़ा आता है, हाय हाय, एक पाँव दबाती है ना तो दूसरी भी आके कंपटीशन में दबाएगी, ज़्यादा देर दबाएगी कि मैं उससे भी खुश हूँ। तो मैं सोचता हूँ अगर दो बीवियाँ दो बंदियाँ एट अ टाइम हों तो फिर क्या हो, बेनिफिट है जेलसी का। उमर खालिद, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है उमर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे सीनियर हैं, यासर सवाती साहब, जिन्होंने मुझे आगाज़ करवाया था, स्टार्ट करवाया था शोज का, आई रिमेम्बर। उमर खालिद उनके साथ होते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सोनिया जफर, आज मैं सोच में पड़ गई कि मैं जेलस क्यों नहीं हुई, इतनी उम्र ज़ाया हो गई। सोनिया, ये बात मैं नहीं मान रहा, मुझे आप कन्विंस करें आप कभी जेलस नहीं हुई। जासर कह रहे हैं, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, मैरिज करें, अरेंज करें या लव करें, जब दिल कर आया है बस कर जाए, मैरिज कर जाए। मोहम्मद हफीजुर रहमान, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, जाहिद जट है 225 आरबे से, भाई आपको पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा भाई, मैंने आपको पहली दफ़ा मैसेज मौसूल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस्मान हंस रहे हैं, यार दो दो बंदियाँ इकट्ठी एट अ टाइम में एक जगह एक ही सेटअप पे हूँ, कैसी फील आए, हैवी ना हो, वैसे कुट बड़ी पे, और वैसे दो दो बंदे इकट्ठे हों तो क्या फील आए, अगर मैं लड़की होती और मैं सोचता मेरे दो बंदे हैं इकट्ठे ही, अब इन क्लास एंड इंटरेस्टेड इन टू बॉयज़ और दोनों मेरे में इंटरेस्ट है, फिर क्या सीन बनता, एक डिफरेंट ही होता ना। एंड राजपूत, मंडे वाला शो स्टार्ट करते हैं जी ईद के बाद इंशाल्लाह, वी आर स्टार्टिंग इट, डोंट नॉट वरी। अच्छा, अगला मैसेज पढ़ रहा हूँ सर जी, आपने किसी प्रोग्राम में कहा था आपने इंटर्नशिप का इनफाज जून में करना है, आपने कहा था जो स्टूडेंट नहीं उनकी तालीम कम से कम बैचलर हो, अगर स्टूडेंट हो तो कम से कम कौन सी क्लास हो, वो स्टूडेंट हो तो कोई भी क्लास का चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, बैचलर में इनरोल होना चाहिए और किसी भी क्लास, उससे ऊपर किसी भी क्लास का, ताकि मतलब इंटर वाले को वी कैन नॉट अकोमोडेट, उससे ऊपर किसी भी क्लास का चल जाएगा। माया अली, आपका शो पसंद आया, आई लाइक इट माया, थैंक यू वेरी मच, आई लाइक योर मैसेज। अब यहाँ पे गाना चलाता हूँ मैं।

अच्छा ये भी बिल्कुल मेरी गुफ्तगू के टेम्पो से थोड़ा सा हट के, बट आई वॉन्ट यू टू इंजॉय दिस नंबर। आप इस जरताश, मैं पढ़ता हूँ आख्या तुम्हारा मैसेज, मड़ा तुमने क्या लिखा, इतना लंबा हमको मजमून लिख के भेज दिया। ये फ्यूजन है गाना, पाकिस्तानी एंड टर्किश जो कॉम्बिनेशन है ना म्यूजिक का उसका, बट लिरिक्स आर सो गुड, आई रियली वॉन्टेड टू प्ले दैट ट्रैक। देखें वो गाने आप मुझे कहते हैं जो आप लोग सुनते हैं, आप लोग सुन चुके हैं, आप उनको इन्जॉय करते हैं, मैं आपको वो गाने सुनवा रहा हूँ जो आप नहीं सुने हैं। आपने आज मैं चाह रहा था उस तरह के गाने चलाऊं जिसमें ब्लेंड हो पाकिस्तान से हट के थोड़े से और म्यूजिक जो है उनके। हिमून लगारी सर वादा करें, हाय अल्लाह क्या वादा करूं, मैं वादा करता हूं यूं ही तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा, अगर तुम गिर जाओगे तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा।

0: हाय
1: तू कह कशारश के गगन जाने मन।
0: हुस्न को लाजवाब होना था, शौक को कामयाब होना था। हुस्न को लाजवाब होना था, शौक को कामयाब होना था। हिजर में कैफे इस्तराब ना पूछ, खून दिल को शराब होना था। तेरे जलवों में घिर गया आकर जर्रे को आफताब होना था। कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझको खराब होना था। रात तारों का टूटना भी मजाज, से इस तरह होना था।
1: के सुघटा साया फिगन जाने मन।
0: हुस्न को लाजवाब होना था, शौक को कामयाब होना।

0: ओके, वक्त हो चुका है 11:25 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और 13 मई 2026 का सन है और आपका मेरे साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। आई लव दिस ट्रैक, व्हाट अ लवली ट्रैक। आरजे उदयर शाह इश्क में तहजीब के हैं और ही कुछ फलसफे, तुझसे होकर हम खफा खुद से खफा रहने लगे। बड़ी गल है, पहले हरकतें ठीक रखी दिया ने ना, फिर ये हो जे मकाम नहीं आंदे। एनीवेज टॉपिक ये है, टॉपिक क्या है, टॉपिक ये जेलिसी के फायदे आपने मुझे बताने हैं। आई एम लुकिंग फॉर दैट कि यू आर टेलिंग मी कि जेलिसी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जेलिसी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैट। वैसे जेलिसी का डिटेक्टर भी एक होता है, चलें लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ जेलिसी के डिटेक्टर्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना जी, जो आपकी आपसे जेलस हो रहे होते हैं, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम, कि किस तरह से आपको पता चले यार कौन कौन सा बंदा मेरे से जेलस हो रहा है यार, कौन सा बंदा जेलस नहीं हो रहा। दो तीन बातें हैं जो बड़ी आम सी होती हैं ना। एक ये कि जब भी आप कोई बात करें, जब भी कोई भी बात करें, किसी भी तरह की बात कर रहे हों, किसी भी तरह की बात करें, एक तो होता है ना आपके बड़े पुराने बड़ी किस्म के फ्रेंड होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपकी इतना ज़्यादा तारुफ नहीं होता या इतनी फ्रैंकनेस नहीं होती, लेकिन जब आप बैठ के कोई बात करते हैं आपकी हर बात का मजाक उड़ाते हैं, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो जो कोशिश कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये बता रहा होता है कि भाई आप बड़े हो चुके हैं, इसीलिए आपको छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात यह होती है, जब भी तारीफ करें तो तारीफ करते हुए एंड पे जो है ना कहीं लेकिन का लफ्ज लगा देते हैं, और जब लेकिन का लफ्ज लगाते हैं ना, वहां से फिर आगे अपना मामला शुरू कर देते हैं। और फिर उसके अलावा जब आपकी सक्सेस की बात होती है तो सक्सेस को हमेशा लक कह देंगे, और यार नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ही वॉज लकी इनफ। एक आध दफा चलो तो बंदा हो जाता है, फ्लूक लग जाए, लेकिन वो जब बात बात पे कहो नहीं नहीं ऐसी कोई चक्कर नहीं है, वो तो बस ऐसे ही किस्मत की वजह से हो गया, नहीं तो मैंने भी बड़ा किया था, बस उसकी किस्मत अच्छी थी। वो कहीं ना कहीं जेलसी का फैक्टर, आई फील इट, कहीं ना कहीं मैं भी शायद कहीं ना कहीं कर जाता हूँ, आपको नहीं लगता आप भी कहीं ना कहीं कर जाते हैं, क्या ख्याल है इसके बारे में? एनीवेज आई एम वेटिंग। अच्छा जी, ये हिमून लगारी कहते हैं सर प्लीज़ वादा करें आज के बाद सीट बेल्ट लगाए बगैर गड्डी नहीं चलानी आपने। आ यार आपने देख लिया, अच्छा ठीक है यार, ओके बड़ी, वादा तो नहीं करता बट आई विल डू माय लेवल बेस्ट, एंड मुझे कोई याद रहे ना रहे आप याद रह जाएंगे आप मुझे, एंड मुझे आपकी बात भी याद रहेगी। अरफिजा राजू, गलती तो दो साइड से होती है ना सर? नहीं, गलती एक साइड से होती है, ऐसे नहीं होता। ये थ्योरी नहीं ठीक। अच्छा, सो डू कॉल मी 042-111-0101 एंड मुझे बताइएगा जी आपका क्या ओपिनियन है जेलिसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। 11:45 में फिर कोशिश करेंगे। तुसा नी कॉल आई नी बड़े अरसे दे बाद, बड़ी मेहरबानी।
1: वो उस्ताजी मैं बीमार था।
0: अच्छा चलो अल्लाह सेहत दे।
1: मैं बीमार था उस्ताजी, बड़ा डाडा बीमार हां मैं, ते मेरे वास्ते दुआ करया है। तुम्हारे हुण शो विच आए ने की ना उना दा जनाब हैदराबाद तू जनाब
0: अंसारी साहब, अंसारी
1: जानी। जेड़ा तुसी टॉपिक है मैं सुनया है, लेकिन जे इसे बारे च मैं कहवांगा थोड़ा जा, मैनू टाइम थोड़ा दिया है, मैं बड़े दिन तक आया। अच्छा टाइम है कि टॉक या टॉपिक है इसने बारे च रखा है कि जल
0: आहो
1: वैसे जेलस नहीं होना चाहिए ना बंदे की, बल्कि उस बंदे ने दुआ देनी चाहिए।
0: ठीक है,
1: उस बंदे नु दुआ देनी चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन दो जबाना जेडियां ने, पटवारी एक पंजाबी जबान है, उस ना बंदे की आख्या जाना जेडे जेलस होने, जल्ले वालो जल्ले वाले का आगे आपने पटवारियां जान है
0: ना, ध्यान दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल कॉल जी, बहुत शुक्रिया।
1: ओ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਰ ਉਸਤਾਦ ਤਰੇੜਾਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾ ਗੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਜੀ ਤਾਰਕ ਮੁਹੱਬਤ ਮਮਤਾ ਬਖੇਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾਂ ਜੀ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਸੁੱਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪੇ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਡਾਕ ਸੱਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
0: ਆਇਆ,
1: ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਓ
0: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
1: ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗਣਾ ਸਾਂ
0: ਜੀ, ਗੁਣਗਣਾ।

ला जन्माया तेरी रा सारिया तू पूछ ले तू चन को पूछ ले सारिया तू पूछ ले तू चन को पूछ ले मैं सो नहीं सकनी चन माया।

0: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर,
1: बड़ी मेहरबानी सर जी, को गलती हुई के तो दो हाथ जोड़ के माफी ना
0: बड़ी सर,
1: अच्छा एक सुनो, मेरी बेटी है एक लाहौरी
0: जी,
1: बड़ी प्यारी और बेस्ट कॉलर है मेरी बेटी है, रक्षा बेटी है, इसके अलावा अनिला बेटी है, और मैं इनका इनको मैं मैंने जो है कहा है कि ये हमारे जो है रेडियो के 101 के जो दोनों बेस्ट कॉलर है।
0: हाँ ठीक है,
1: मैं बेस्ट कॉलर इन्हें जो है मैं कहता हूँ, और आप सारे मोहतर जी कबूल कर लेना इन दोनों को, मैं बेस्ट कॉलर कहता हूँ
0: जी। ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान
0: पाकिस्तान
1: जिंदाबाद,
0: थैंक यू जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग इस तरह कॉल करते हैं, प्यार करते हैं, अब जाहिर है ना जी, हर बंदे का अपना प्यार का तरीका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड आई गोना टेक अनदर कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम दस भाई, क्या हाल
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ?
2: मैं फजल महमूद बात कर रहा हूँ, कराची हिजरत कॉलोनी से।
0: कैसे आप भाई, खैरियत से?
2: बस आपका शो सुन रहा हूँ दस भाई, एंजॉय कर रहा हूँ।
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, कुछ फरमाएंगे आप?
2: ये जेलसी के ऊपर बात हो रही है ना?
0: जी जी जी जी जी। हेलो हेलो हेलो।
2: जेलसी भी मुख्तलिफ किस्म की होती है डस्ट ब्रो
0: जी, बताइए बताइए।
2: अगर कोई आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो तो उससे भी कुछ जेलस होंगे आपसे, और अगर आपको कोई चाहने वाले मिल जाए तो उससे भी कुछ लोगों को जेलसी होगी, कैसे चाहने वाले क्यों है।
0: बिल्कुल ठीक है जी,
2: तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे कुछ चाहने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो उसमें जेलस होने की कोई बात नहीं है।
0: बिल्कुल ठीक है जी,
2: जो जेलस होता है उस बंदे को ये करना चाहिए कि अपने अंदर कुछ ऐसा किरदार लाए कि लोग उसे भी पसंद करे, उसको भी चाहे, उससे भी मोहब्बत करे।
0: बिल्कुल ठीक,
2: जेलस होने से बेहतर है कि बंदा अपने आप को उस लेवल पे लाए तो उससे भी लोग चाहे, उससे भी मोहब्बत करे।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया।
2: अगर मैं कामयाब हो रहा हूँ, मुझे अल्लाह कामयाब कर रहा है, मुझे मेरा अल्लाह ताला नाम बना रहा है, तो उसमें जेलस होने की कोई बात नहीं है डक ब्रो। उसके अंदर आपको अपने अंदर उस लेवल पे लाना है कि आपका भी नाम हो, आप उस लेवल पे जाए ताकि आपको भी लोग पसंद करें, आपको भी लोग जाने।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपका मौका।
2: जेलस होने की इसमें कोई बात नहीं है, बाकी मेरे कुछ चाहने वाले हैं, अगर उनको कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं आपको।
0: अगला गाना आपको डेडिकेशन जी, आपने जो पढ़ा है वो
2: नाम लेके उनको डेडिकेट
0: जी, आप नाम ले लीजिए जी, आप लीजिए, बताइए फटाफट कीजिए।
2: मेरा 25 नंबर वाली मिसेज रियाज हो गई, डॉक्टर शफक हो गई, इस्लामाबाद में होती है।
0: ठीक है जी,
2: सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं मेरी तरफ
0: जी, अगला गाना होने के लिए जी। थैंक यू
2: वेरी
0: मच सर, थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। 4471 पे ताहिर मलिक साहब ने मैसेज किया, मुल्तान शरीफ से, लिसनिंग यू लॉन्ग टाइम बट मैसेज किया फर्स्ट टाइम, आई वांट टू से पोइट्री, तमाम उम्र शुरू की तलाश रही। अच्छा शुरू तमाम उम्र शाऊर की या सहारों की, अच्छा तमाम उम्र सहारों की तलाश रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। आई थिंक सो यू नेवर सी और लिसन दिस पोइट्री, मे बी आई एम श्योर। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस नाइट, लॉन्ग लिव, ब्यूटीफुल लाइफ, स्वीट ब्रदर। वन क्वेश्चन, व्हाट्स योर स्टार? स्कॉर्पियो? नहीं, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ। और वैसे इन पे भी बात स्टार्ट करने लगे हैं दोबारा, कल से थर्सडे वाले दिन स्टार्ट करेंगे अभी कलर्स, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, और उस पर दोबारा से इन डिटेल जाके करेंगे कल से स्टार्ट, और ऑनवर्ड फिर आगे हर जुमेरात को करेंगे। और कहते हैं मेरा गैस ये है, आप कैंसर है? नहीं, मैं कैंसर नहीं हूँ, मैं कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, इसके बाद लाहौर वाले, मैं सिंस दादू से मैसेज किया है भाई। अच्छा ठीक ठीक है, आपका बिल्कुल मैसेज पहुंच गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और मोहम्मद अली ने मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच, आप में रियाज इस्लामाबाद से सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। मुकद्दस हैं कहूटा से, डॉग्स भाई शो इज नाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड आई लाइक योर शो, थैंक यू वेरी मच अली भाई। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0422111001, इस पर कॉल कीजिए एंड टेल मी, जेलसी के बेनिफिट्स पे बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर मैसेजेस ज़्यादा पढ़ूंगा, फिर कॉल्स नहीं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा,
0: क्या हाल है अदा?
3: शुक्र भूरा फकीर कराची सदर से बात कर रहा हूँ, कैसे मजदूर अदा?
0: अदा मैं ठीक, आप बताओ।
3: सर आप जेलसी की बात कर रहे हैं ना?
0: हाँ बाबा मैं जेलसी की बात कर रहा हूँ आज,
3: पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, अल्लाह खुश रखे। सैलाब के अंदर सैलाब पाया था ना, सैलाब बरसात आए थे साथ में, इसके अंदर हमने अपने गार्डर टीयर और घर के सामान चारपाई लेने वाले अपने रिश्तेदार अपने भाई थे,
0: ठीक है
3: हाँ, दूध तो चलो मैं बेच रहे हैं मुश्किल वक्त में, कोई काम आ जाए, लेकिन आप उधार भी दे सकते थे।
0: बिल्कुल
3: लेकिन वो गार्डर टीयर और चार पाइया घर का सामान लेने वाले अपने ही थे, दूसरों क्या कह सकते, मेरी जान डोल साहब।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल।
3: तो देखो ना, अगर कोई आप तरक्की कर रहे हो तो आपको दुआ देनी चाहिए दा, आपको अल्लाह और तरक्की दे और तरक्की दे, हमको जेलसी नहीं करनी। अगर हम जेलसी कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया सुन रही है, अल्लाह सबको खुश रखे, हम खुद उस जेलसी में खुद अंदर ही अंदर से जलते रहेंगे, अंदर ही अंदर से जलते रहेंगे, हम अपने आप को जलाएंगे, किसी और को नहीं जलाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक का, बिल्कुल ठीक का अदा।
3: सर एक फरमाइश भी अदा।
0: जी जी जी जी,
3: वो मेरा नहीं है, एक अरफाना कलाम है।
0: हाँ जी,
3: किसी दर्दमंद के काम आ, किसी
0: दर्दमंद के काम आ,
3: फकीर आदमी है ना, हाँ फकीर आदमी, हम वो सुनते हैं सर, हम दाता दरबार पे आ चुके हैं, ज़ार्त मैंने किया है।
0: कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, कल ये मैं प्ले करूंगा जी।
3: हाँ नहीं नहीं कोई, अगर मिल जाए जी बिस्मिल्लाह सर, हम आपकी कुर्सी जो है ना, हम अपने आंखों से देख देख के कि इधर कमेंट है, इधर कंप्यूटर है, इधर माइक है, क्योंकि जो जो कुर्सी बंदा देखता है ना, उसको पता होता है दा, देखो मैं मजदूर हूँ, सारा दिन बेलचा चलाऊंगा तो मेरे को पता है ना कैसे काम किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे, आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया।
3: पाकिस्तान
0: जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल कॉल्स, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग फ़ोन करते हैं। और नमान नज़ीर ने ज्वाइन किया, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, और फिर कह रहे हैं कैसे आप, आपकी पूरी फैमिली लाइव देख रही है, मुझे आपका शो का टाइम याद नहीं रहता। लाडो रानी मुल्तान से हैं, अच्छा लाडो, मैं बुध और जुमेरात की शब करता हूँ जी, 10 से 12 बजे आप मुझे हर बुध और जुमेरात की शब सुन सकते हैं। मेहर फातिमा ने इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, कैसी हो मेहर, मुल्तान में मौसम कैसा है? और अब्दुल नूर हाशमी साहब ने, डियर डॉग शादाब तस्लीम जी कैसे हैं, कहते हैं भीगी आँखों वाली लड़की जब मेरी तरफ देखती है तो मन में जलथल कर जाती है, मुझको पागल कर जाती है। गुले राना ने मैसेज किया है, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, आई एम गोना रीड योर मैसेजेस, ओके चलेंगे, मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ उसके बाद कॉल लेते हैं जी, ओके सीट बेल्ट बांधा करूँगा, डन हो गया ब्रो, डन डन। स्वीडन से आप हमें सुन रहे हैं भाई, और हेमन लगारी, लॉस ऑफ लव फॉर यू एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल एडवाइस, ओके। जासिर कहते हैं आया हुआ रोमांटिक ट्रैक लग रहे हैं सर, क्या बात है, तुम्हारे आने से भाई लगते हैं ना रोमांटिक ट्रैक, तुम बड़े रोमांटिक बंदे हो। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दी ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड इमोजीज भेजे हैं काफ़ी सारे फिजा ने, थैंक यू वेरी मच, ओके। इधर आपस में भी काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा चल रहा है जी। अच्छा मरीना कहती हैं डॉग सारे यासर एवरी सैटरडे को, बिल्कुल मुझे पता है जी, वो शो करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं यासर सवाती अपने फेसबुक पे, और बड़े अच्छे आरजे, बड़े मंजे हुए आरजे हैं, अगर किसी को सुनना है, पोइट्री से लगाव है और इस तरह की मंजी बातें सुनना चाहते हैं, डू लिसन ना, सच अ लवली पर्सन ही इज। इश्क में तहजीब, अच्छा ठीक हो गया जी, हम बात तहजीब अच्छे हैं। जिमल, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है, ये दुनिया दिखाई, ये दुनिया दिखाती शहद है, पिलाती जहर है, जहर अच्छा होता है ना। ओके ओके ओके, और कौन से मैसेज, आज लाहौर का मौसम, बारिश, इस अहवाल से गुलजार साहब का कलाम पढ़े, और उमर खालिद कहते हैं देर तक बैठे दोनों ने बारिश देखी। क्या बात है, मैं ढूंढता हूँ जी उमर भाई, गुलजार साहब का कलाम पढ़ते हैं और डेफिनेटली गोना रीड इट, पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं और भी मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। एम रजा चौधरी साहब हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने शो को पसंद किया। नज़ीर खोसो है, मैसेज कर दिया इन्होंने, पहले मैं यही समझता था बोट हैं ये, ऐसे मैसेज आ जाता है, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद इनकी कॉल आई है। ओके, ग़ुलाम मुश्तबा साहब सुन रहे हैं, मत समझना फजूल होते हैं, अपने अपने असूल होते हैं। हिजर के दर्द में, हिजर का दर्द मैंने झेला है, आप क्यों कर मलूल होते हैं। प्यार में ऐब एक दूजे के सिद्ध के दिल से कबूल होते हैं, शाम ढलते ही हमसे लोगों पर वहशतों के नजूल होते हैं। उसको तोहफा पसंद आए तो मेरे पैसे वसूल होते हैं, जो गुजरते हैं साल फुरकत में चंद लम्हों की भूल होते हैं। प्यार इखलास के बगैर मुश्तबा सब ताल्लुक फजूल होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टीम पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर खान लाहौर से सुन रहे हैं, आज डॉक्टर आज बहुत तेज बारिश हुई लाहौर में, साथ में गोलाबारी हुई। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, गोलाबारी हुई यार, वाकई गोलाबारी हुई। जिस तरह के ओले थे उनकी शेप कोई नहीं थी, गोलों की शक्ल में आ रहे थे। वेरी वेल सेड, आई लाइक इट यार, थैंक यू वेरी मच, आई लव दिस मैसेज, गोलाबारी हुई। मरीना बिलाल, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला मलखेल, थैंक यू वेरी मच। गुलिया सिंह खान हमें सुन रहे हैं मुल्तान से, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और इसके अलावा एम हफीज साहब हैं, थैंक यू वेरी मच। रजा चौधरी साहब, कुछ ताल्लुक भी नहीं फिर भी खफा हूँ तुझसे, जाने किस मान पे मैं रूठ गया हूँ तुझसे, मुझे कम उम्र समझ के मेरी तजहीक ना कर, मैं मोहब्बत में कई साल बड़ा हूँ तुझसे। जिस तरह दूध में घुल जाती है चीनी जाना, मैं ख्यालों में उसी तरह मिला हूँ तुझसे। गेंद बनकर तेरे पैरों में पड़ा हूँ कि तू खेल, मैं तू समझता है कि मैं खेल रहा हूँ तुझसे। होए होए होए होए होए होए, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस। मोहम्मद तुफैल अहमद तनोली साहब, अपने अशार उनवान गिरफ्त सहर, मैं कॉल लेता हूँ, नाम तो पढ़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
4: वालेकुम अस्सलाम।
0: ये सर कैसे हैं आप, आपकी मौजूदगी में तुफैल अहमद हजारा साहब हैं, तनोली साहब, इन्होंने अपना कलाम भेजा है, मैं चाहूंगा आप बड़े अच्छे मंजे हुए शायर हैं तो आपकी मौजूदगी में पढ़ूं। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ हैं, हमीद गुल साहब हैं, सॉरी हमीद गुल साहब, बड़े अरसे के बाद आए, नाम आगे पीछे हो गया, माफ़। अच्छा जी, गुस्ताखे गश्ते निगाह की पैरहन ठहरी, गुस्ताखे गश्ते निगाह की पैरहन ठहरी ये आंखें, यकीनन इबलीस की सरकशी का मदार, यकीनन इबलीस की सरकशी के मदार में है।
4: वाह वाह,
0: वो शबाब लब ढूंढने में पैर गश्त हैं कहीं, पैरे गश्त हैं कहीं, बड़ी मुश्किल मुश्किल है। वो शबाब लब ढूंढने में पैरे गश्त हैं कहीं, किसी बेबसी के वो खसारा में है। सहर अमल में है उनका याराना इबलीस से, सहरे अमल में है उनका याराना इबलीस से,
4: याराना इबलीस से,
0: कितनी कम अकली के वो इजहार में है।
4: कितनी कम
0: अकली के वो इजहार में है। तो फैल ये जिंदगी अब कोई जिंदगी नहीं रही, सो शकंजाए गिरफ्तो ललकार में है।
4: आजकल हो रहा है,
0: बहुत अच्छा है लेकिन बहुत मुश्किल है।
4: मुश्किल,
0: इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, इस तरह की पोइट्री आइंदा आए ना, पहले मैं एक दो दफा पढ़ लूं ताकि रब्त बने, ताकि जेर जबर इस तरह तो इधर मेंशन नहीं होते, वो खुद रब्त बना के पढ़ना पड़ेगा। और आपने जिस बहर में लिखी है, आजकल की नजर को नहीं समझ आती। और मेनू भी नहीं समझ आती, मेरे जैसे बंदे के लिए भी लिख दिया करें, इतने मुश्किल अल्फाज आपने लिखे हैं जी। सर कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, खैरियत से। मैं सोच रहा था कि वो लाहौर में जब आप प्रोग्राम करते थे तो कॉल आसानी से मिल जाती थी
0: जी।
4: हाँ
0: जी, अभी भी लाहौर में
4: हैंगर की बात का
0: जी सर,
4: बात यह सर,
0: सर सर
4: हसद बड़ी अच्छी चीज है,
0: है ना। मैं कहता हूँ सर हसद अच्छी चीज है। देखे एक तो अब आप आए हैं ना, आपके साथ इस बात को मैं छेड़े जाता हूँ यहाँ लोगों के साथ, अगला शो भी अपना ही है, खैर थोड़ा टाइम ले लेंगे। देखें सर, अगर कोई चीज मनफी पहलू रख रहा है, मनफी होना उसका इस बात की दलील है कि यहाँ पे मसबत कहीं ना कहीं पाया जाता है, है कि नहीं? फलसफा तो कहता है
4: यही फलसफा कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
0: फलसफा फसा देता है। आप क्या कहते हैं?
4: मैं ये कहता हूँ बाज़ औक़ात हसद आपको कामयाबी की तरफ ले जाता
0: है, ऐसे ही
4: ये होता है। जैसे मैं कहूँ कि
0: अगर वो कंपटीशन में बदल जाए,
4: हाँ कंपटीशन करें ना आप, बशीर बदर ने को किसी ने कहा कि फेयर कंपटीशन का क्या होता है,
0: कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, उसने कहा कंपटीशन क्या होता है,
4: बशीर बदर ने कहा कि किसी शख्स जब कोई अच्छा शेर कहता है तो मुझे दो तीन दिन नींद नहीं आती। मैं चाहता हूँ काश ये शेर मैंने कहा होता।
0: वाह वाह वाह वाह, अच्छी बात, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, फिर कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन तो कंपटीशन है। फिर
4: अगर आप शौक में हैं किसी चीज में, जैसे आप अच्छा बोलते हैं, आपके पास इल्म है, नॉलेज है, और मैं खामखा आपसे हसद करूँ,
0: सर सर
4: मुझे हसद नहीं करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए और मैं भी तहकीक करूँ, फिर आपके सामने आके बात करूँ, ये अच्छी बात है। आप मैं किसी जगह पे हो सकता है मैं आपसे कामयाब हो जाऊं और मैं खामखा लेके उसको बैठ जाऊं कि नहीं कि वो मनफी सोचता रहूं तो वो नुकसान दे है ना
0: जी,
4: वो बड़ा नुकसान दे होता है।
0: बिल्कुल ठीक है सर,
4: तो अच्छी बात है हसद करें आप,
0: हसद
4: आप अपने, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इंसान का शौक भी एक हसद होता है, देखें आप
0: जी बिल्कुल सही,
4: इंसान का शौक भी तो हसद है ना,
0: इंसान का शौक भी हसद है, बिल्कुल ठीक है जी,
4: हसद होता है, वो भी उसमें वो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है जाके कहीं ना कहीं,
0: बिल्कुल ठीक है जी,
4: लेकिन वो उस पे अगर लेके बैठ जाए कि नहीं, खाली उसको शौक भी ना हो और जैसे अभी शायरी पढ़ेगी शौक भी ना हो और फिर उस पे इतराजात भी करे, तो फिर आपको लगेगा अब इस बंदे को ना मुझसे जलसी है।
0: हाँ।
4: वो पता लग जाता है बंदे को ना, कि हमें भी पता लग जाता है कि कौन हमसे हसद कर रहा है, कौन हमसे मोहब्बत कर रहा है। ये आजकल ये इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है, बाद लोग मेरी तरह बड़े सीधे साधे होते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। ठीक है ना, वो अदम साहब ने कहा था
0: जी,
4: कि
0: जी, जी।
4: हम हसद से नहीं कहते अदम। देखें आप इसमें क्या खूबसूरत बात उन्होंने की है, पर इशारा किसकी तरफ है कि हम हसद से नहीं कहते हैं अदम, तो उस गली में बहुत ना आया जाए आपको।
0: आए बहुत अच्छा,
4: अब यहाँ मुखातिब कोई और है।
0: हाँ जी, कहा किसी को,
4: कहा किसी को है,
0: कहना कुछ था,
4: कहना कुछ था,
0: सही
4: याद है आपको शेर, वो मेरे एक शेर क्या था, बात ऐसी वो कर गया था,
0: हाँ
4: मैं मोहब्बत से डर गया,
0: मोहब्बत से डर गया था, बात ऐसी बात वो कर गया था,
4: कर गया था मैं मोहब्बत से डर, बात से करनी थी और कोई बात कुछ और कर
0: कुछ
4: गया
0: और कर गया था, बहुत आला सर, बहुत
4: ये है
0: एग्जैक्टली सर,
4: से बाद आपसे बात हुई अच्छा लगा
0: सर, थैंक यू वेरी मच। अमीर गुल साहब मेरे वो शुरू के जो मुझे हौसला देने वाले कॉलर्स थे ना, उनमें से एक है जी, थैंक यू वेरी मच।
4: अच्छा मैं अगर आपके लिए थोड़ा सा हम अगर ये कहें, मैं मतलब जब आप आए एफएम पे
0: जी,
4: और मैं ये बरबला कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, आप आए
0: जी
4: और आपने बड़ी अच्छी जगह अपनी बनाई
0: सर,
4: और हकीकत यह है कि हमें आपसे भी सीखने, हमने आपसे बहुत
0: नहीं
4: कुछ
0: सर,
4: सीखा।
0: आप ये, कसरे नफसी से काम ले रहे हैं,
4: नहीं ये बात नहीं है, मैं जब आप फलसफे की जब बात करते हैं, इब्ने कुलदूम पे जब आप बात करते हैं तो हमें मजा आता है, वो हमारी मेमोरी फ्रेश हो जाती
0: है सर, बड़ी
4: रिफ्रेश हो जाती है, मतलब ऐसा पता लगता है कि यार ये जो हमने पढ़ा होता है कहीं या उस वक्त का फिर याद आ जाता है, फिर बड़ी तफसील के साथ जब आप बात करते हैं ना
0: सर, सर
4: तो ये है
0: सर, बड़ी मेहरबानी,
4: दुआओं में याद
0: सर, वेरी काइंड। वेरी काइंड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ब्यूटीफुल कॉल हमीद गुल साहब थे, थैंक यू वेरी मच। और बड़े अरसे से मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ताहिर मलिक साहब कहते हैं ब्रो आपका टॉपिक एक ही आंसर है, लवली ब्रदर हसदी अपनी आग में खुद जल कर जला करे, उस शम्मा को खून बुझाए, उस शम्मा को कौन बुझाए जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मुकद्दस कहते हैं या कहती हैं, एक रात की दूरी ने दिल उदास कर दिया, तुम्हारी बातों के बिना हर लम्हा खास ना रहा, काम ज़रूरी होगा ये समझता हूँ मैं, पर तुम्हारी एक बात ना आए तो दिल बेचैन सा रहा। अच्छा चलिए, बहरहाल आपका पैगाम पहुंच गया, ठीक है। सर वाकई वो लवली सॉन्ग है ना, गाना अच्छा था। और हसद और रश्क में फ़र्क है, रश्क अच्छी बात है जबकि हसद खुद अपनी आग में जलना है, हसद अपनी आग में जलना है बिल्कुल है। लेकिन चलें इस पे खैर बात करते हैं, अभी यहाँ पे गाना लगाता हूँ मैं। और ये भी है ना द ब्लेंड है जी, बलोची फोक सॉन्ग आज मैं लगाऊंगा, लैला ओ लैला, लेकिन इसकी भी कंपोजिशन उसी तरह की है जो आज मैं आपके लिए लेके आया, उज़्बेकिस्तान एंड टर्किश एंड ताजिक म्यूजिक का ब्लेंड है। उसके बाद ये गाना आप तक आ रहा है बलूची लैला ओ लैला। और इसके बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं हसद पे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखूंगा। एंड ये ऑफ कोर्स हसद के बेनिफिट होते हैं, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो बेनिफिट नहीं देती, करने वाले को दे ना दे, जिससे किया जा रहा होता कम से कम उसे पहुंच रहा होता तो बेनिफिट तो होता है ना। अब बीबियां भी हसद करती है ना किसी दूसरी बीबी के होने से, किसी सौतन के सौकन के आ जाने से, किसी दूसरी बंदी के आ जाने से जेलसी तो होती है, जेलसी उन्हें होती है, बेनिफिट बंदे को जा रहा होता है होता है के लिए ऐसे। एरी गो डोंट गो एनीवेयर। It's 11:54. This is Arjun Docs from the studio of FM 101 Lahore. Night Therapy program ka naam hai jisme aapka mere saath hota hai wo dar jumerat ke sath. Don't go anywhere. Abhi main aapke saath hi hu agle 15-20 minute, balki 12:15 baje tak aapke saath hu. Oh, what a blend. Enjoy karein.

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:57 और आज है जी 13 मई 2026 का सीन। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। सलमा राशिद साहिबा कहती हैं, बहुत लोग मेरे से हसद करते हैं मगर मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने उस तरह के फ़ायदे अब ले रहे नहीं है ना। अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, एक उम्र का वो हिस्सा आता है जहाँ पर मैच्योरिटी इस लेवल को हिट कर लेती है कि आपको बेनिफिट जो है ना उस तरह से चीज़ों का फील नहीं होता। आप मादियत मैटर जो होता है ख़ासतौर पे इसके उस मामला से बाहर निकल के होते हैं, यू आर मोर इमोशनल, और इमोशनल में भी एक सर्टन जो होती है लिमिट होती है, उससे ऊपर जाके यू जस्ट अर्न इमोशनल बेनिफिट्स, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। इमोशनल बेनिफिट्स। ओके, हुसैन दाऊद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं हुसैन? मरी से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। रमेश कुमार हैं, थैंक यू वेरी मच। अमरीन लाला, मैं उस जैसी नहीं बल्कि जिंदगी का मकसद सीखना, मैं इसे जेलसी नहीं बल्कि जिंदगी का मकसद सीखना कहूँगी। अ ब्यूटीफुल वे, बहुत अच्छी बात है, डिफरेंट एंगल से आ रही हैं। जब मेरे वालिद ने घर आके बताया कि उनके दोस्त मास्टर सिटी वालों ने 77 बकरे ज़बह किए, कुर्बानी की, तो मैंने सोच लिया कि अल्लाह के नाम पर देना किस कदर फजीलत का काम है, और अब मैं उसमें सारा साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है अमरीन, और अमरीन लाला ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आप जेलसी से लर्न करते हैं। जहाँ पे एक दफ़ा आपको आप हिट करती है, एट फर्स्ट तो आपको लगता है कि ओ हो, और उसके बाद फिर आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट एंगल से देखते हुए आप फिर कोशिश करते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, और उसमें फिर आप चीज़ें कुछ बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जेलसी वाला जो है ना मामला तो चलता रहता है। मैं अब आपको एक वाकया सुना देता हूँ यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द्याम है जहाँ पे समझाने के लिए, और पहले भी यहाँ पे इसी तरह का मैं वाकया सुना चुका हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट और था, अभी और कॉन्टेक्स्ट में सुनाता हूँ आपको। एक साहब थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की दावत की, और दावत करने के बाद कहने लगे कि यार ये यहाँ पे एक हांडी पड़ी है, तो आप जिसने भी जाना जो इससे चाहिए मांगो, ये आपको हांडी देगी। सारे परेशान हुए, यार तुमने कुछ पकाया नहीं, खाली हांडी के सामने हमें भेज रहे हो। कहा ये मिट्टी की हांडी है। तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने चने, किसी ने कुछ बिरयानी, जो भी दिल में आया मांग लिया, वो हंडिया से पक के मिलता रहा। तो एक साहब जो देखते रहे, तो वो उसके पास जाके बैठे और कहने लगे कि मुझे ना खाना पीना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें ये मिली कैसे। उन्होंने बताया कि ये मैंने चिल्ला किया, ऐसे किया, इतना अरसा किया, और उसके बाद ये मुझे मिल गई। तो वो साहब भी गए, उन्होंने चिल्ला करना शुरू किया। चिल्ला करते करते फिर एक निदा आई, एक आवाज आई कि बोल क्या चाहता है। और उसने कहा वो फला मेरा रिश्तेदार, उसके पास वो एक हंडिया है मट्टी की, उससे जो भी खाने के लिए मांगो मिल जाता है। उन्होंने कहा हाँ तुझे भी चाहिए? कहने लगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जो उसे दिए वो भी उससे छीन लो। सो दिस इज व्हाट हैपेंड ना, कि आप जेलसी में कभी कभी इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं, आप कहते हैं मुझे मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन उसके पास भी ना रहे। जब इस लेवल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे शदीद किस्म का नुकसान होता है, और आप अगले को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगले को जो नुकसान जाता है वो टाइमिंग जाता है, लेकिन आपकी ज़ात को बड़ा नुकसान जाता है। बिकॉज़ आप स्लीपलेस रहते हैं, आपके इमोशन डिस्टर्ब रहते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उसके पास ये आया तो ऐसे क्यों, वो तो डिजर्व ही नहीं करता था, इस तरह की बेशुमार अपने माइंड में हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप अपनी ही ज़ात के बड़े दुश्मन बने होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट तब है जब उसे आप डायरेक्शनल कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो कि हमारी फितरत का हिस्सा है। एट वंस हमें एक चीज़ फील होती है, जब फौरी तौर पे फील होती है उस वक़्त वो उस हद तक कैटेगराइज जेलसी में नहीं की जा सकती कि जहाँ पे आप किसी को नुकसान पहुँचाएं। आप फील करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं, जेलसी में आके कंपैरिजन करते हुए वही वो फेज होता है जहां आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं दीज आर माय फ्लॉज, ये मेरी कमियां हैं और मुझे इनको दूर करना है। आप जेलसी को कन्वर्ट करते हैं कंपटीशन में, और कंपटीशन हेल्दी ठीक है, वो ये वाला जिस तरह वो बात कर रहे थे अमित गुल साहब, वो ये कि आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। आयशा फातिमा कहती हैं, हे आई एम न्यू लिसनर, थैंक यू वेरी मच आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो उसमें हेल्दी कंपटीशन आपकी जात के अंदर बनना शुरू आता है, आप अपनी जात के साथ इन सेंस ऑफ कंपटीशन आते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये है वो जेलेसी के बेनिफिट्स, यहाँ पे होता तो है। वैसे जो बॉयज बात करते हैं ना यूनिवर्सिटी में, हाँ हाँ हाँ वो भी अच्छा था। मेरे साथ वो हमारा बंगाली था क्लास फेल, चला गया वापस बांग्लादेश, और भी फॉरनर थे हमारे साथ पढ़ते। तो कहता है जेलेसी बहुत अच्छी चीज़ होती है, देखिए जब आप अपनी बंदी को किसी से जेलिस करवाते हैं ना, तो आपको एक मौका मिल जाता है, आप दो ऑप्शंस में से बेहतर वाली चुन सकते हैं। कॉल लेते हैं, हेलो सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: क्या हाल है रिमशा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा काश भाई मेरी कार की कर ले और आपने कर ली।
0: कैसी हो? ठीक हो?
1: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है?
1: क्या हो रहे हैं? अपने भाई का शो सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी गुफ्तगू बड़े प्यार से सुन रही थी।
0: अच्छा जी, गुस्से से नहीं सुनती?
1: हाँ जी, नहीं नहीं गुस्से से बिल्कुल भी नहीं।
0: अच्छा ठीक है, जया अंजुम आए हैं, आपको पता है जया अंजुम आए हैं? जया अंजुम
1: जी जी, गुड्डू आए हैं।
0: गुड्डू आए
1: जी, गुड्डू।
0: आप बताओ क्या कह रही हो। अच्छा जेलसी का कोई बेनिफिट है?
1: मैं जेलसी के ऊपर भाई ये कहूंगी, जेलसी जो होती है ना बार सफर लुक करवाते भी हैं, किसी किसी को फील करवाते के वो उसको जेलसी फील भी करवा रहे होते हैं, तब लोग चल जाता है कि जो बार सफर

0: ऐसा होता है कि लोग दूसरों को देख के मुंह टेढ़ा मेढ़ा भी कर रहे होते, मुंह चढ़ा देने,
1: मुंह चढ़ा देने, टेढ़ा करने का भी बड़ा मजा आता है।
0: और इंसान को पता चल जाता है कि अगला बंदा जो है ना जेलस
1: छाड़ रहा है। और खवातीन को एक दूसरे से इतनी जेलस क्यों होती है?
0: ये हाँ बिल्कुल ऐसा है, खवातीन में भी ऐसा होता है और मर्दों में भी ऐसा होता है।
1: मर्दों में
0: जो होती है ना औरतें, वो कहती है कि हमारा बंदा बड़ा,
1: हम उसे मर्द ही नहीं मानते जो जेलस होता है। वो लड़का, वो लड़का होता है, वो लोंडे लपाड़े होते हैं, लड़के होते हैं, बॉयज
0: अल्लाह होते हैं ना, जो दूसरे मर्द होते हैं वो दूसरों को जेलस ऐसे करते हैं कि जो हमारी बीवी है ना बड़ा अच्छा खाना बनाती है, ये वो, तो वो अगले बंदे को जेलस कर रहे होते हैं। और अभी आप हमीद अंकल से बात कर रहे थे कि जेलसी जो है इंसान को कामयाब भी कर देती है। जाहिर सी बात है, आप एक स्कूल लाइफ की एक मिसाल ले लें कि जब एक दो बच्चे होते हैं आपस में अगर इकट्ठी क्लास में पढ़ते हैं, अगर हर साल एक बच्चा अगर फर्स्ट आता रहे और दूसरे के भी नंबर अच्छे हों, तो वो यही कहता है कि हर बार यही क्यों फर्स्ट आता है, मैं भी तो मेहनत करता हूँ ना।
1: हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही
0: ऐसा
1: बात,
0: ऐसा भी होता है। और बार सफर जेलसी में ना इंसान बहुत कुछ कर बैठता है।
1: वो फर्स्ट आने के बड़े ट्रिक भी होते हैं, मास्टर आपके जो है ना इनके पास अगर ट्यूशन पढ़ रहे हो ना वो पेपर भी लीक कर देते होते हैं।
0: बिल्कुल हाँ ऐसा,
1: और वो आपको बूटी मारते कुछ भी नहीं कहते।
0: लेकिन हाँ,
1: और एक और तरीका भी होता है, शाम को अपने स्टूडेंट्स को खाली पेपर उनका पकड़ा भी देते होते हैं, अच्छा वाला पेपर रिप्लेस भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा होता है, बात सफर
1: टीचर कभी आपने बूटी मारी है?
0: जो मॉनिटर होता है क्लास का उसे फर्स्ट करती है कि वो अच्छा बच्चा है, तो हम उसी को हर साल फर्स्ट करते हैं।
1: लेकिन मैंने तो एक चीज ऑब्जर्व की है, जया भाई भी मेरे साथ बैठे हैं, यार यूनिवर्सिटी में ना हमारे असातिज़ा इकराम लड़कियों को नंबर ज्यादा क्यों देते थे यार? मुझे खवातीन से बहुत जेलसी रही है अपनी क्लास में।
0: भाई बरकर ऐसा तो मेरे साथ ही हुआ, तो मैं भी तो मतलब स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन मुझसे जो थे लड़के भी अच्छे निकल जाते हैं, जरूरी नहीं होता कि लड़कियों से देते हैं नंबर।
1: लड़कियों को ही देते हैं, जया भाई कह रहे हैं मैं जहाँ पढ़ा वहाँ पे थी नहीं खवातीन, लड़कियों की लड़कियाँ।
2: बदकिस्मती है कि
0: जया भैया को भी मेरा काम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी।
0: और अभी इम्तियाज अंकल आए थे, उन्होंने बोला मुझे बेस्ट बोला, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे खुशी भी हुई। वो खुद भी बहुत अच्छे कालर हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, और साथ में उन्होंने अनिल आपी की बात की है। अनिल आपी की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और उनके अंदर हुनर भी है बात करने का, एहसास भी है।
1: मुझसे तुम भी बड़ी छियार हो गई हो अब।
0: शो सुन सुन के हो गई हूँ, क्योंकि मेरे भाई चला के तो मैं नहीं चलाऊंगी।
1: चलो ये मेरी बिस्ती कर रही हो तुम।
0: और नहीं बिस्ती बिल्कुल भी नहीं,
1: मैं महसूस कर रही हूँ।
0: मैंने आपसे भाई बहुत कुछ सीखा है, आपसे मैंने लाइफ को जीना सीखा है, आपने मुझे हौसला दिया है।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
0: और मैं बड़ी खुश हूँ कि कुछ ऐसा है कि जो आपने मुझे बोला मैं उस पर अमल भी कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने मुझे बोला है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ ठीक भी हो रहा है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और जाते जाते ना मैं अपने कद्दू को सलाम देना चाहूंगी, अगर वो सुन रहे
1: हैं। कद्दू को सलाम दे रही जाते जाते, कद्दू को सलाम।
0: क्योंकि मैं उन्हें प्यार से कद्दू बुलाती हूँ ना, तो वो थोड़े से हेल्दी हैं, तो मैं उनको प्यार से कद्दू
1: बुलाती हूं। वो हेल्दी लगता है, नहीं है स्मार्ट आदमी, स्मार्ट।
0: हाँ नहीं सेहत में ना वो थोड़े से मुझसे ठीक है।
1: अच्छा थोड़े
0: आप
1: से
0: लगा लें, जैसे आपके साथ शाह साहब बैठते हैं ना, उजैर भैया की तरह वो हेल्दी हेल्दी है।
1: अच्छा चलो ठीक है, ओके रिमचा थैंक यू।
0: तो उनकी तरह है तो मैं ना इसलिए वो उनको कद्दू बुलाती हूँ, तो अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हें मेरा सलाम, और इश्तियाक अंकल को भी मेरा सलाम, सभी सुनने वाले समाजों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल की।
1: थैंक यू रिमचा, थैंक यू वेरी मच फॉर
0: योर। ओके अल्लाह हाफिज।
1: जया भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है?
2: मैं ठीक ठाक।
1: भाई ठीक हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं?
2: याशियां चल रही हैं।
1: कहाँ से आ रहे हो भाई?
2: अभी उधर से आ रहा हूँ मैं, नहरो नहर आ रहा हूँ मैं।
1: नहरो वहाँ पे बारिश हो रही थी क्या?
2: आज तो इतनी बारिश हुई ना,
1: इतनी बारिश हुई, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया लाहौर में इतनी बारिश हुई और गोलाबारी भी हुई। मैं सोच रहा, मैंने कहा हाँ झालाबारी नहीं, आज तो भाई गोलाबारी हुई भी है बहुत ज्यादा। मतलब मैं गाड़ी मुझे रोकनी पड़ी, इतनी शदीद दो दफा हुई। पहले तो जब तेज हवा चली और आंधी तूफान, गाड़ी लिटरली ऐसे ना मुझे ऐसे लगे आज जब आ कह रही मैं तेनों चुक के छोड़ देना। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, फिर दूसरी दफा मैं निकला, उसके बाद फिर एकदम ओले पड़ने शुरू हुए और उनका साइज भी अजीब सा था।
2: बिल्कुल ऐसे
1: अजीब अजीब से साइज के, वो इतना बड़ा कोई इतना छोटा, बेतरतीबी बंदर बांट सी आ रही थी ऊपर से, आगे पीछे एक नॉर्मल बड़े सोफिस्टिकेटेड गोल मटोल है।
2: छत पे था और मैं उस वक्त मौसम को इंजॉय कर रहा था कि अचानक से अब टिंड हो गई है, टिंड पे आगे ना कोई चीज बजी, मैंने कहा ये क्या है। तो फिर देखा कि ये तो मसला खराब हो गया,
1: मसला खराब हो गया, मसला खराब हो गया, ले जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, हमारे फयाज साहिबा थैंक यू वेरी मच जी, मौसम कितना मौसम की तरह मुस्कुरा रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने पसंद किया जी, वेरी काइंड, वेरी काइंड। अब मैं कुछ मैसेजेस हैं इस्लामाबाद के, वीडियो परमिशन मैं पढ़ लूँ जी।
2: जी जी,
1: रजा रिजवी हैं, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा, सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जेलसी, अगर जेलसी आज मैंने रखा, जेलसी के बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जेलसी के नुकसान नहीं होते, बेनिफिट्स होते हैं भाई। आप क्या समझते हैं, मैं भी यही समझता हूँ, बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपको नहीं हो रहे किसी को हो रहे होते हैं, वो तो रहे होते हैं।
2: अच्छा
1: हाँ।
2: अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जेलसी, अगर अपनी ज़ात के मुतालिक बात की जाए तो जेलसी के तो शायद नहीं होते, रश्क के जरूर
1: ओवरऑल
2: रश्क करने के जरूर बेनिफिट्स,
1: ओवरऑल वो तो आपकी ज़ात को होते हैं, जेलसी का आपको अगर बेनिफिट नहीं हो रहा, जेलसी समटाइम
2: फायदा तो बस अपना ही होता है, किसी का फायदा वाला कोई फायदा
1: ठीक है
2: अपना। तो अगर बात करनी है जेलसी को भी, तो फिर उस पे अपनी ही बात।
1: तो जेलसी जहाँ पे सेंस ऑफ कंपटीशन में बदलती है ना, वहां पे फिर आपकी कमियों को निखार के आपकी स्ट्रेंथ में बदलने में हेल्प करती है।
2: एग्जैक्टली, लेकिन मैं उसको फिर जेलसी नहीं कहूंगा, मैं उसको कॉम्पिटिशन
1: नहीं, इट स्टार्ट्स विद द पॉइंट ऑफ जेलसी, वेयर यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ। जेलसी की बेसिक मल्फी लफ्ज ये है, आप कंपैरिजन में जाते हैं और कंपैरिजन में इस शिद्दत में जाते हैं कि उसके नुकसान करके खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करना, तो ये प्योर जेलसी ही रह गई। और जहां पे आप फौरी तौर पे कंपैरिजन में आए, आपको एक चीज महसूस हुई, फिर आपने खुद से कंपेयर करके अपनी कमियों को पहचान लिया और फिर आपने अपनी जात पे काम करना शुरू कर दिया, ना कि उसकी जात पे काम करना शुरू कर दिया कि इसको कैसे गिराना है।
2: बिल्कुल ऐसे।
1: और इस पे मेरा मौकफ ये है, जब आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा होता है तो ये गुड न्यूज है, आपको वो बड़ा मान रहा है।
2: वेरी ट्रू,
1: है ना,
2: वेरी ट्रू।
1: अच्छा, रजा रिजवी कहते हैं, मैं कुछ मैसेजेस पढ़ लूं फिर उसके बाद आपके हवाले करता हूं जी। जेलसी अगर हद में हो कभी कभी फायदा भी दे सकती है, इससे इंसान को एहसास होता है कि वो किस चीज़ को अहम समझता है, फिर वो अपने रिश्तों, मेहनत या मकसद पर ज़्यादा तवज्जो देता है। मसलन किसी की कामयाबी देखकर अगर इंसान मनफी ना हो बल्कि सोचे कि मैं भी मेहनत कर सकता हूँ, तो ये जेलसी मोटिवेशन बन जाती है। बस शर्त ये है कि जेलस दिल में नफरत ना बने बल्कि खुद को बेहतर बनाने का जरिया बने। मैं आपका शो दुबई से सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। यार ब्रो, श्रीनगर से आते हैं बंदे सुनते हैं। एक भाई हमारा,
2: बिल्कुल ऐसे,
1: फिर एक उधर से बरनाला से सुन रहे हैं, इंडिया से, फिर आज बांग्लादेश से भी एक लिसनर आए, आज मुझे जेन्युइन फील आई कि इंटरनेशनल है, स्वीडन से भी आए, फिर अभी ये दुबई से भी आया है।
2: बिल्कुल ऐसे,
1: आज मैं दिल कर रहा हूँ, हाँ मैं कहूँगा आज इंटरनेशनल शो गया।
2: कल मुझे भी कोई 3 कॉल्स मेरे ख्याल से आई थी, एक टोरंटो से कॉल आई,
1: हाय हाय हाय,
2: और सारे बंदे थे।
1: मैं बड़े दुख वाली गल है, मेरे शो में पहली बंदी आई रिमशा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सिद्धी, लड़की कहती है क्या हाल है, प्लीज सॉन्ग अच्छे अच्छे लगाए, अभी तो लगाए, अच्छा अच्छा। एंड जितने एक्टिव हो के शो करें एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, जबकि आपका पूरा शो सुन ले नींद नहीं आती। अच्छा, मेरा शो सुन के नींद नहीं आती, इतनी खौफनाक है, आप बिस्ती तो नहीं कर रही मैं। अच्छा, शायर हैं जी, शायर खरल है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी, फ्रॉम ईगल आप सुन रहे हैं, कोयटा से बहुत शुक्रिया आपका, आप सुन रहे हैं जी। दिलीप कुमार, आपका पहले भी मैसेज पढ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस। और इसके अलावा जी, कशान महद लिव्स इन महनूर हार्ट, आय हाय हाय, 4471 का मैसेज है। फिर कहते हैं प्लीज भाई गाना चला दें, मेरी प्यारी खुश हो जाएगी, अपनी बेगम के नाम एक गाना करना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने एक मुझे हमारे साथी मुल्क का कहा वो नहीं लगा सकते जी, हमसाया मुल्क का नहीं लगा सकते। और इसके बाद इन्होंने कहा तू झूम, और उसके अलावा मैं एक अल्टरनेट लगा देता हूँ, आप वो सुनिएगा, तू झूम मैं कल लगा दूँगा। और महानूर साहिबा अगर सुन रही हैं उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि कल आपके लिए गाना ज़रूर प्ले करूँगा मैं अच्छा सा कोई इनकी तरफ से। मेहर कहती हैं सर मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, आपका बारिश वाली रील देखी सर वैसे लगा देता हूँ, आप वो सुनिएगा तू झूम मैं कल लगा दूँगा। और महानूर साहिबा अगर सुन रही हैं उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि कल आपके लिए गाना ज़रूर प्ले करूँगा मैं अच्छा सा कोई इनकी तरफ से। मेहर कहती हैं सर मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, आपका बारिश वाली रील देखी

0: मैंने कहा आप मुझे याद रहेंगे आप। सीधा कहती है अगले बंदे को सोचना चाहिए कि वो अपने असद में क्या कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो या लायर हो या आरजे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू अंडरस्टैंड, है ना, समझ आ गई फिर आपको, है ना। पहुंच गई है, पहुंच गई है, बिल्कुल ठीक है जी। ओके ओके ओके ओके। अच्छा जी, वो जलते रहे अपनी आग में खामोश, हम तो अपनी धुन में हैं मदहोश। मेरी तरक्की से जो हैं खफा, उनकी जलन है मेरी दवा। जलते जलने वालों की जलन से क्या घबराना, अपने काम से आगे बढ़ जाना। उनके गुस्से पे हम मुस्कुरा देते हैं, जलने वालों को जला देते हैं। क्या बात है जी आपकी, नौमान नज़ीर है, इस्लाम की है भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और अच्छा, ये लाडू है, आपको मैसेज मैंने कर दिया। गुले राना, अल्लाह सबको जलन हसद करने वालों से महफूज रखे। पनाह मांगनी चाहिए ऐसे लोगों के शर से, उनको क्या पता किसी को अगर कुछ मिला है तो कितनी तकलीफ़ों के बाद मिला है। अगर किसी के बारे में अपने ख्यालात ऐसे ख्यालात आए भी तो उनको राहत आने दीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए। गुले राना, बहुत अच्छी बात की आपने। और कैसे हैं भाई, आपको लाइव देख रही हूँ, आपकी पूरी फैमिली ओके। हमारे में आपको, अच्छा पूरी फैमिली आपकी शो देख रही है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप लोग, खैरियत से? अच्छा जी, एक आखिरी कॉल ले रहा हूँ, इसके बाद फिर आई लीव, एक गाना मैं प्ले करूँगा, आपकी समातों की नज़र करके जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम अनिला जी, कैसी हैं आप, खैरियत से?
1: उसके बाद मोए मोए हो गई
0: मैं। अच्छा जी, वो कैसे हुई थी?
1: जल्दी में होगी ना, मैं समझी वो जहर और कोई और, मतलब छोटे लड़के बैठे हुए अपने, तो मैंने आते कह दिया, मैंने कहा हाँ कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया,
0: आप बड़ी श्यार है, पहले जानबूझ के करती है, बाद में कहती है ओह मैनू नहीं सी पता।
1: नहीं नहीं मैं सुनी इस तरह से रही थी, शुरू में
0: जिस तरह वो जो है ना, आपस में लड़के नहीं कहते होते, वो यार उसे प्रपोज कर दे, गुस्सा करेगी तो कहीं बाजी डर गई। मैं कह रहा हूँ राज्य के बेनिफिट होते हैं,
1: बड़े होते हैं,
0: बहुत सारे बेनिफिट होते हैं
1: बंदे को। एक तो इतने वो दूसरे जो जेलस हो रहे होते हैं ना, वो सड़के ज्यादा उसको बुलाते ही नहीं है।
0: मैं कह रहा हूँ खवातीन के अंदर ये जेलसी वाला एलिमेंट देखने का बड़ा मजा आता है। मैं तो अक्सर शादियों पे अपने खानदान में रिश्तेदारों में भी देख रहा होता हूँ ना, और इसमें मैं कह रहा चासा आ रही होती है इतने, कभी मेरे फलान रिश्तेदार थे, अब मैं रिश्ते मेंशन नहीं करूंगा, ऐसे कुछ सुन रहा हो कल मैंने फड़िया है दरा तू लगा सकते। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, तुम ऊपर क्यों गए पहले, नीचे क्यों नहीं थे आए, मैं क्या गलती हो गई, उतो की खा के मैं उन्हें खीर खिलाई उन्होंने, हूँ इतों भी खाएंगा। अच्छा जी ठीक है, तो नहीं इतों चाह भी पीनी है क्योंकि उनसे एक स्टेप आगे जाना है, खुदा का नाम ले, मेरा मैदे पे तो जाना जुलम करे, लेकिन उसमें बेनिफिट भी इस तरह का हो रहा होता ना। अब देखे मेरा बेनिफिट हो रहा था ना, जेलसी उनकी थी, बेनिफिट मेरा हो रहा था,
1: आपको मिल रहा था,
0: मुझे मिल रहा था। कई दफा जानबूझ के मैं फायदा भी उठा लेता हूँ, उन्होंने तो ये कहा था, उन्होंने तो ये खिलाया, अच्छा इधर आ जा लेके आओ, मैंने कहा ना ठीक है भाई, तो मैं बैठा ले।
1: खुद ही श्यार हो गए मैं, बड़े सियाने।
0: खवातीन तो मैं कह रहा हूँ, मैं वो भी जुमले सुनता होता हूँ, जया भाई ये खवातीन क्या नीला जी आई है, ये बिल्कुल इस पे अच्छा नहीं लग रहा सूट, ये मैंने पहना था आज से 2 साल पहले, इसी तरह का मिलता जुलता, पता नहीं कहाँ से पुराना है उठा के ले आई है। मेरे पे देखा कितना अच्छा लग रहा था, मेरे पास तस्वीर पड़ी हुई, मैं दिखाऊंगी तुम्हें,
1: और
0: पता नहीं होंदी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल चिट्टी चाइनीज गुड़िया बन के आ जाती है, रज के बेस लगाई होती है, जिस तरह वो मेरा एक कजन था, वो बेचारा जो है ना, वो मुझे कहता था यार

0: चेहरे में मैं तुझे नजर नहीं आता, मैं सोच रहा हूँ जेब में आटा रखा करूँ मुंह पे फेंक लिया करूँ उस तरह के काम करके हेलो राबी खान, हेलो हाय हाउ आर यू माजबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर एप्रिसिएशन। रोजी रिजवाना जी, गुड शो पसंद किया आपने, बहुत मेहरबानी। अरबाब अली बहुत शुक्रिया, कहते हैं सर जेलसी से रंग गोरा भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही आपस में जेलसी से होता है। आजकल क्रीमें ऐसी आई हैं, जलते क्यों, हमसा हसीन होना चाहती हो, हाँ अभी गोल्डन पर लगाओ। हम तो आपस में कजन किया करते थे, वो शुगर लगाते हैं, हाँ जल रहा है, हसीन होना चाहता है, चेरी ब्लॉसम माय डियर चेरी ब्लॉसम लगाओ कभी तुम्हें नजर नहीं लगेगी
1: तुम नजर ही नहीं आओगे किसी को
0: चले मैडम, मैं फिर यहाँ पे इजाजत देता हूँ जी, आखिरी आपकी कॉल थी और बड़े अरसे बाद आपकी कॉल आई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
1: थैंक यू, छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगी, मजा आएगा।
0: क्यों
1: सुनने पे?
0: मैं भी चुटकुला सी, मैं भी छोड़ता एक छोटा जा, क्यों
1: जी अच्छा लगेगा ना,
0: जो भी जा टिला है, क्या है, व्हाट हैपेंड,
1: वो नहीं सही हो जाएगा, दुख है
0: मुझे आज, बहुत दुख है। हाँ नहीं, आज वो कह रहा मैंने साइड शो करना, अच्छा बताए आज वो रहमान की जगह पे शो कर रहे हैं, सैड शो, वेरी सैड एंड बैड शो,
1: वो पूरे रहमान के स्टाइल में। अच्छा आप कलर की बात कर रहे थे ना डॉक्स, तो दो नेगरो थे वो मियां बीवी ना समंदर के किनारे रात के टाइम बैठे हुए थे और एक दूसरे से मियां बोले जा रहा था किसी बात पे, बोले जा रहा था,
0: ये गलत बात है, ये भी चुटकुला हो गया, मियाँ बीवी बैठे हैं, बीवी खामोश है, मियाँ बोली जा रहा है,
2: झूठ है।
1: हाँ तो सुने ना आगे क्या था
0: अच्छा जी,
1: वो बोल रहा था तो वो बेचारी चुपचाप सुन रही थी, थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि ये क्या हुआ, ये बोली नहीं, वो कहता है डार्लिंग हो के चली गई हो
0: अरे बंदा मतलब जीते जी हो ही नहीं सकता कोई औरत मर्द को बोलने दे इतने नॉन स्टॉप, बिल्कुल सही कह रही है थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी इसी लास्ट कॉल के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपेरेंटली बेमकसद हमें लगती हैं ना, और हंसते हंसते मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, कभी संजीदगी में करनी होती हैं। अब पिछले बड़े मैं लगातार संजीदा संजीदा शो किए, लास्ट वीक भी मैंने गैर संजीदा किए जानबूझ के, और मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट जाना चाहिए फ्लेवर, तो आज भी मैंने इसीलिए गैर संजीदा से रहते हुए एक चीज़ छेड़ने की कोशिश की, एक तार, कुछ जो बातें होती हैं फील, जिस तरह जेलसी है, खुशी है, गम है, परेशानी, रोना, हंसना, मोटिवेट होना, और इस तरह के और भी बहुत सारे इमोशंस हैं सारों में पाए जाते हैं, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएँ आपको मिलेगा, सारों में ये चीज़ मिलेगी, इट इज़ यूनिवर्सल। अब कोई भी चीज़ जो आप में मौजूद है इसको डायरेक्शनल अगर रखेंगे तो इसका बेनिफिट है, वो जेलसी नहीं है, वो कोई भी चीज़ है, मोटिवेशन है, मोटिवेशन अगर डायरेक्शनल होगी बेनिफिट देगी, मोटिवेशन फॉर क्राइम है दैट इज़ रॉन्ग, इसी तरह एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है कि आप खुशी ऐसी सेलिब्रेट करें जिसमें दूसरों को बेनिफिट है, व्हेन यू सी समवन हैप्पी आप एक्साइटेड होते हैं किसी दूसरे को देखकर खुश, दैट इज़ गुड। कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं किसी को तकलीफ पहुंचा के, डायरेक्शनल नहीं, सो ट्राई टू बी मोर डायरेक्शनल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा इमोशन आपका ट्रिगर हो रहा है। बाहैसियत इंसान मेरे अंदर बेशुमार मरतबा जेलसी का फैक्टर ट्रिगर होता है, लेकिन वो मेरी जात के अंदर ट्रिगर होता है, मैं उसे दबा लेता हूँ कि यार कितना फिट शो कर रहा है और इसने टाइटल भी हैशटैग बना लिया है टॉप ऑफ द टॉप आर द शिट मैन, मैं क्यों नहीं बना सका ये मैं क्यों नहीं बना सका, लेकिन फिर उसके बाद इसको मैंने खुद ही काम करना कि नहीं भाई ज़िया ज़िया है, ज़िया का अपना स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल पे चलूं, मैं ज़िया नहीं बन सकता,
2: बिल्कुल ठीक,
0: मैं डॉक्स हूं, मेरा अपना अंदाज है भाई, मुझे अपने आप पे फोकस करना चाहिए, आई कैन नॉट बी द वन। आप दुनिया में जिन लोगों से अक्सर जेलस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोल वो पोजिशन वो आपके लिए है ही नहीं, वो बंदा आपने बनना ही नहीं है, आप जिससे जेलस होकर तमाम उम्र अपनी जाया करते हैं और अपनी एफर्ट्स को खुद को बेहतर करने के बजाय उसे गिराने के लिए जाया कर देते हैं।
2: एग्जैक्टली,
0: सो अपने आप पे काम करें, इससे अच्छी और कोई चीज नहीं है, अपनी जात पे काम करें, थोड़ा कमा लें, सुकून से सो लें, अच्छा खा लें, अच्छा खाना मुर्ग मुसल्लम नहीं, अच्छा खाना है वो जो आपकी पसंद का हो और आपको इज्जत से मिले, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह ज़िया ने उस दिन घर बुला के हमें बारबेक्यू खिलाया, इज्जत से खिलाया, उसका एक पॉडकास्ट बनाया लेकिन वो अपलोड नहीं किया, पाए ना एत जास्ती है।
2: एडिट हो रहा है,
0: एडिट हो रहा है। अच्छा जी, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, बड़ा ब्यूटीफुल ट्रैक रुबाब फ्यूजन के साथ, आपकी समातों की नजर और इन्हीं अल्फाज के साथ, बस एक ही सुर में, एक ही लय ने, एक ही सुर में, एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी, फुहार की मलमले दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रस रही है ये कायनात सारी, हर एक शय भीग भीग कर देख कैसे बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं, थके थके से बदन में बस धीरे धीरे से सांस का गरम लोबान जल रहा है, बस एक ही सुर में, एक ही लय पे सुबह से। This is Ajay Doc signing off. Take care. Enjoy करें. And आज रहमान नहीं है, ज़ियान जम है उनकी जगह पे. And thank you very much जी अमीनुल्लाह. Thank you very much. वालेकुम अस्सलाम. Thank you मैडम सलमा पसंद करने के लिए. Thank you. यार ये सुन के जाना है आपने.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101.

100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। उलझना मुझे कहते हैं जहां अंजुम और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम हरफे जुनू 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहने वाला है। गो के आज प्रोग्राम रहमान अनवर साहब का होता है, अधूरी बातें के नाम से, लेकिन आज उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से मुझे आना पड़ा। कल भी आपसे मुलाकात हुई थी और आज फिर आपसे एक मुलाकात हो रही है। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि पिछले प्रोग्राम से साथ साथ हैं और मेरा भी अब साथ देंगे और आगे न जाने ये कब तक सफ़र चलने वाला है। आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का, समातों का शुक्रिया। 12:40 हो चुके हैं, एक लंबा वक्त तो गुजर चुका है हमारे इस प्रोग्राम का, लेकिन कुछ लम्हे बाकी हैं। कोशिश करते हैं कि इनको अच्छे से, मज़े से गुजार सकें।

एक मसला है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है। ज्यादातर लोगों से जिनसे मुलाकात होती है, जिनसे मिलना होता है, और खास तौर पे रात के इस पहर में जो हमारे प्रोग्राम हो रहे होते हैं, हमें सुनने वाले जो सामईन हैं वो भी अक्सर इस वजह से हमें सुन रहे होते हैं कि नींद नहीं आ रही होती। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। कभी कभी यूं होता है कि बदन थका होता है, आपका जहन भी थका होता है, आंखें भी थकी होती, लेकिन जब आप अपने बिस्तर पे, अपने तकिए पे लेटते हो सोने के लिए, तो नींद नहीं आती। और कभी कभी तमाम रात नींद नहीं आती। गालिब का भी एक मिसरा है ना कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो यही एक मिसरा मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप भी वही लोग हैं हमारी तरह रात के राही, जो रात के इस पहर में जागते हुए हमें सुनते हैं। ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। आप बताइएगा कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, क्या वजह है जागने की, क्यों जागते रहते हैं। चले, कभी कभी तो हम कुछ काम कर रहे होते हैं, रेडियो सुन रहे होते हैं, किसी काम में मसरूफ होते हैं, लेकिन जब तमाम चीजों से थक हार के, सब चीजों को तर्क करके हम दोबारा से आते हैं अपने बिस्तर पे लेटते हैं, तो फिर भी सो नहीं पाते, होता है ना ऐसे। वैसे मेरे साथ ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनको नींद नहीं आती। मेरे वाला मामला जरा स्पेशल है। मुझे तो रात को भी नींद आती है, सुबह भी नींद आती है, और फिर दोपहर को और शाम को। मुझे जब मर्जी, जहां मर्जी, जितनी मर्जी देर के लिए सुला दो, मैं सो जाऊंगा। लेकिन यहां पे बात हो रही है आपकी और आप जैसे और बहुत सारे दोस्तों की, जिनको नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आती। तो आइएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। आपके जवाब बात का, आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। जरूरी नहीं है कि आके कोई फलसफा झाड़ना है, जरूरी नहीं है कि आके कोई बहुत गंभीर किस्म की बात करनी है। आप आके कोई शेर भी सुना सकते हैं, कोई जुमला भी कह सकते हैं, इसी मौजू से मिलता जुलता कोई शेर, कोई गजल, कोई नज्म सुना सकते हैं, कोई गाना अगर जहन में आए तो हल्का सा वो भी गुनगुना के सुना सकते हैं या फरमाइश कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि इस मौजू से रेलेवेंट अगर कोई गाने हो सके तो उनको आज प्लेलिस्ट में शामिल भी करूं। बहरहाल आज मौजू हमारा रात का है, नींद का है, बेदारी का है, रत जगे का है। ये तेरी झील सी आंखों में रत जगों के भावर, क्यों पड़ जाते हैं ये रत जगों के भावर आंखों में। आइएगा, बताइएगा, बात कीजिएगा। बात करेंगे तो बात बनेगी, बात बनेगी तो एक सिलसिला चल निकलेगा, सिलसिला चल निकलेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सुन रहे हैं। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, गाने से वापस आके बातचीत के सिलसिलों को यहीं से शुरू करने की कोशिश करेंगे। क्या ख्याल है, ठीक है ना? बहुत अरसे बाद एक गाना अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ।
इस गाने से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। कुछ चीजें होती हैं, कुछ नगमे, कुछ गीत, कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिन्हें सुन के आप एक खास किस्म के नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, किसी और वक्त, किसी और दौर, किसी और मुकाम पे चले जाते हो। हाय, वो जो पल गुजर गए हैं वो कहीं से लौट आए।

तुझे कैसे भूल जाए। सुनते रहे, साथ साथ रहे FM 101 पे। इस गाने के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा।

आप सुन रहे हैं FM 101। सुनते रहिए FM 101। 101 101।

मैंने देखा था उन दिनों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे, जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था। लोग पढ़ते थे खालुखद उसके, वो अदब की किताब जैसा था। बोलता था जुबां खुशबू की, लोग सुनते थे धड़कनों में उसे। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। सारी आंखें थी आईने उसके, सारे चेहरों में इंतखाब था वो। सबसे घुल मिल के अजनबी रहना, एक दरिया नुमा सराब था वो। ये हकीकत है कोई ख्वाब था वो, दिल की धरती पे आसमां की तरह, सूरते साया ओ सहाब था वो। अपनी नींदें भी उसकी नजर हुई, मैंने पाया था रथ जगों में उसे। अपनी नींदें भी उसकी नजर हुई, मैंने पाया था रथ जगों में उसे। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। जब वो हंस हंस के बात करता था, जब वो हंस हंस के बात करता था, दिल के खैमे में रात करता था। रंग पढ़ते थे आंचलों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर दूर का फसाना है। उसके मेरे मिलाप में हायल, अब तो सदियों भरा जमाना है। अब तो यूं है हाल अपना भी, दश्ते हिजरां की शाम जैसा है। क्या खबर इन दिनों वो कैसा है, क्या खबर इन दिनों वो कैसा है। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। जब वो हंस हंस के बात करता था, दिल के खैमे में रात करता था। मैंने देखा था उन दिनों में उसे। वो लोग, वो चेहरे, वो रूहें, जो हम में कहीं रह तो गई हैं, लेकिन जुदा भी हो गई हैं। जिनको देखे, जिनसे मिले, एक अरसा हो गया है। अक्सर रात को सोते वक्त जब वो याद आते हैं, तो फिर बेशुमार याद आते हैं। और जब कोई इस तरह से याद आए और बेशुमार याद आए, तो फिर आंखों का ताल्लुक नींद से टूट जाता है। फिर कहां नींद आती है। फिर तो कोई शख्स, उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी बातें, साथ बिताए हुए लम्हे और जमाने, और फिर उसके बाद कितने ऐसे फर्जी किस्से जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन की इख्तरा होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो होता तो फिर क्या क्या कुछ होता। आज मौसम कितना हसीन था, आज लाहौर की फिजाएं एक नया लुत्फ दे रही थी, कुछ नए रुख दिखा रही थी, लेकिन साथ साथ कुछ चेहरों की भी याद दिला रही थी।
और रात को बिस्तर पर लेटते हुए वो चेहरे याद आते हैं और हम सोचते हैं कि काश आज के दिन, इस मौसम में, इन लम्हों में वो भी अगर हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। कभी कभी इन बातों की वजह से भी तो नींद नहीं आती। आप बताएं, तुम बताओ, तुम्हें क्यों नींद नहीं आती, क्यों नहीं सो पाते, क्यों आंखें बोझल होती हैं लेकिन नींद से दूर होती हैं। इसी मौजू पे कुछ मिलती जुलती बात कर रहे हैं। आपके मैसेजेस, आपके फीडबैक मुझ तक पहुंच रही है, इनको भी शामिल करते हैं। सलमा DHA लाहौर से वेलकम कहती हैं। थैंक यू सो मच सलमा जी, आप हमें सुन रही हैं। मुल्तान पाक आर्मी से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आज आपके शो के लिए स्पेशल ड्यूटी के बाद जाग रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप जाग रहे हैं। वैसे आज मेरा प्रोग्राम नहीं था, आज रहमान भाई का प्रोग्राम था, लेकिन वो क्योंकि नहीं आ सके तो उनकी जगह आज मुझे आना पड़ा। कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो प्रोग्राम करते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, आज कुछ उस तरह सा भी प्रोग्राम किया जाए, उस तरह की भी बातें की जाए। लेकिन रहमान साहब तो फिर रहमान है ना, बड़े आदमी हैं, वड्डे लोग, वड्डियां वड्डियां गल्ला। रहमान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छे आदमी हैं यार, आप कैसे कर लेते हैं। वजाहत नवाज FM 101 सियालकोट से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, यू लुक गॉर्जियस इन ब्लैक। अच्छा, थैंक यू। किधर देख लिया आपने मुझे? वैसे मैं इस वक्त हूँ तो ब्लैक में ही, लेकिन तस्वीर भी ब्लैक में ही लगी हुई है। चलें, अच्छा लगता है कि जब कोई कहे कि आप अच्छे लगते हैं, कितना अच्छा लगता है। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौके नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। कायनात अशरफ हैं हमारे साथ। कायनात बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप भी हमारे साथ हैं। और कहती हैं कि ये कंपैरिजन ओके, ठीक हो गया, पुरानी बातें हैं ये। आतिफ हैं हमारे साथ, आतिफ थैंक यू सो मच। AQ आर्टिसन, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, हमेशा परेशान रहता है, हमेशा घबराया हुआ रहता है, लेकिन अच्छा आदमी है। ये जो आप BGM मुझे मेरे इस वक्त प्रोग्राम में सुन रहे हैं, ये AQ का ही कंपोज किया हुआ है, और ये क्रेडिट जो है वो हर बार देना बनता है। तौसीफ अहमद हमारे साथ हैं, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर जी, ऑसम शो, एक गज़ल सुना दें, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। क्या बात है, मैडम का ये गाना आज मैं जरूर प्ले करूंगा। ये गाना मुझे भी पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। मुझे याद आता है कि एक दौर था जब हम छोटे हुआ करते थे, केबल्स का भी दौर नहीं आया था, एंटीने पे सिर्फ PTV और एक दो और चैनल्स आया करते होते थे, तो दोपहर के वक्त अक्सर नगमे और गीत PTV पे चला करते होते थे। उनमें ये गाना अक्सर PTV पे चलता होता था, और कभी बैठ के तो नहीं उस तरह से सुने थे ये गाने, लेकिन चलते फिरते कानों में ये बजते होते थे। तब मौसीकी का और मौसीकी में ये जो लिरिक्स हैं, शायरी है, उनका इतना अंदाज़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं कानों में पड़ी हुई चीज़ें
जब आगे जाने वाले वक्तों में आप दोबारा सुनते हैं तो एक खास किस्म का नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। वो बचपन की एक याद के मैडम नूरजहां का ये वाला गाना जब अक्सर लगा होता था तो हम चलते फिरते अक्सर सुनते होते थे। बड़े होके जब दोबारा सुना, इसको फील किया, इसके लिरिक्स को, इसकी धुन को, इसकी फील को महसूस किया तो बड़ा लुत्फ आया।

यकीन जानिए इस वक्त बाहर अगर आप आसमान की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि रात मुकम्मल तरह से फैली हुई है। उफ, ऐसे में ये गीत, ये नगमा, क्या बात है।

बेवफाओं से वफा करते गुजारी है हयात, क्या बात है। कभी कभी इंसान को ना कुछ गिल्ट भी लेके बैठ जाते, कभी कभी दिन की मसरूफियात में वो लम्हे वो बातें वो चीजें याद नहीं आती, लेकिन रात को जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो फिर बहुत सारी बातें बहुत सारी यादें याद आती हैं, और हमें ये भी याद आता है कि हम कितनी वफाओं को ठुकरा के यहाँ तक पहुँचे। हमेशा यूं ही तो नहीं होता ना कि सिर्फ हमें ही लोग बेवफा मिलते हैं, कभी कभी हमने भी बहुत सारी बेवफाइयाँ की होती हैं, जानते बूझते हुए बामकसद बेवफाइयाँ। कहीं ना कहीं गिल्ट रह जाते हैं, कोई गिले शिकवे अंदर ही अंदर पड़े रह जाते हैं। बाज़ औक़ात वो बेवफाइयाँ मसलहतन होती हैं, कभी कभी वो बेवफाइयाँ इसलिए होती हैं, कुछ जगहों पे अगर आप वफा करने लग जाएं, वफा निभाने लग जाएं, तो ऐसा भी होता है कि उसमें बर्बादियां शायद ज्यादा होती हैं। कुछ अहद कुछ कौल टूट ही जाएं, कुछ कस्में कुछ वादे तोड़ ही दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होते हैं। होता है ना, कभी कभी हम यूं भी करते हैं, लेकिन गिल्ट रह जाते हैं अंदर ही अंदर, बहुत सारे गिले शिकवे रह जाते हैं। रात को जब सोने के लिए लेटते हैं तो फिर याद आते हैं अक्सर वो लम्हे, याद आता है कि यार हमने उस शख्स के साथ अच्छा नहीं किया था, हमने किस कदर शदीद वफाओं के बदले अगले शख्स को जफाएं पेश की थी। आप बताइएगा, आपसे सवाल है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, क्या वजह होती है, क्यों नहीं आती। वन ओ वन के पेज पे कुछ मैसेजेस हैं, इनको भी शामिल करते हैं। 101 लाहौर के पेज पे आप आके हमें कमेंट्स कर सकते हैं। प्रोग्राम हरफे जुनू की पोस्ट है, मरीना बिलाल का पहला कमेंट है, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, ज़िंदगी में सिर्फ दो ही नुक्ते हैं। जी हाँ, मौत में भी सिर्फ दो ही नुक्ते हैं, लेकिन गल तो फिर एक नुक्ते थे मुक दिए ना, आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। खुर्शीद रिजवी का शेर भेजा है मरीना ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्वीट कुड़ी सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। मरीना कहती हैं, ज़िया आपका बीजीएम स्टार्ट हुआ और ट्रांसमिशन ही गायब हो गई, अब यकीनन आ रही होगी। फैसल अब्बास सलाम करते हैं, लाहौर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ज़फ़ीर अब्बासी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं ज़फ़ीर इस्लामाबाद से, कब से वेट कर रहा था आपके प्रोग्राम का, कल भी आप जल्दी चले गए थे, कल भी हम पूरे वक्त पे गए थे, 2 बजे गए थे, आज तो खैर मेरा प्रोग्राम था ही नहीं, आज आपने रहमान अनवर साहब को सुनना था लेकिन वो नहीं आ सके तो उनकी जगह मैं आया हूँ। मेरे प्रोग्राम की जो टाइमिंग्स होती हैं वो हर मंगल और हर जुमे को होती हैं रात 12 से 2, तो आज तो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था। मौजू पूछ रहे हैं, मौजू यकीनन अब तक आपको पता चल चुका होगा, अगर नहीं पता चला तो एक दफ़ा फिर बता देता हूं कि आज का हमारा मौजू है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। खासतौर पे आप तमाम लोग जो रात के इस पहर जाग कर मुझे सुन रहे हैं, कोई तो मजबूरी रही होगी, कोई तो वजह होगी कि सोने के इस पहर में आप जाग कर मुझे सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ये वक्त गुजार रहे हैं। मरीना कहती हैं, ज़िया नींद तो बस स्कूल लाइफ में ही आती थी, वैसे मुझे अभी भी आती है मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी आती है, नहीं आती तो अक्सर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो फिर वैसे ज्यादातर आती है। कल
हमारे प्रोग्राम में मेरे एक दोस्त, एक गेस्ट शहजाद अब्बास भी मौजूद थे। शहजाद और मेरा बड़ा पुराना एक सिलसिला है, एक ताल्लुक है। तो हम अक्सर ये कहा करते हैं, हम दोनों का ये मुश्तरका एक जुमला है, एक डायलॉग है कि न जाने हमारे बड़ों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगियों में कितनी मेहनतें की हैं, किस कदर मेहनतें की हैं कि उनकी मेहनतों की थकन नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंची है कि हम जितना मर्जी सो लें वो थकन नहीं उतरती। दिल करता है थोड़ा और सो लें। तो कुछ लोगों के साथ तो यूं भी होता है कि उनको बहुत नींद आती है, लेकिन आज सवाल है उन लोगों से जिनको नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्या वजह है। शुमाइला जावेद कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, गायब हो गए थे आप। पहले ये बताएं, मैं बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ था, मेरे रेगुलरली प्रोग्राम्स हो रहे हैं हर मंगल और हर जुमे को रात 12 से 2। शायद आप सुनती नहीं हैं या आप हमारा पेज फॉलो नहीं करती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पोस्ट नज़र आ जाती। तो अगर अब आप सुनना चाहें तो हर मंगल को और हर जुमे को रात 12 से 2 मेरा प्रोग्राम होता है। आज का जो ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा अपना ज़ाती प्रोग्राम नहीं है, ये रहमान अनवर साहब का प्रोग्राम है, वो नहीं आ सके तो इस वजह से मैं आया हूँ। तो अगर अब आप सुनना चाहें तो हर मंगल को और हर जुमे को रात 12 से 2 मेरा प्रोग्राम होता है। आज का जो ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा अपना ज़ाती प्रोग्राम नहीं है, ये रहमान अनवर साहब का प्रोग्राम है,

0: रात को नींद ना आने की वजह यकीनन ओवरथिंकिंग है, ख्यालात की भरमार है, ख्यालात की एक बम्बारमेंट होती है। वो फिर कई तरह के ख्यालात होते हैं। अभी हम कुछ मोहब्बत की बात कर रहे हैं, कुछ वसल की, कुछ जुदाई की बात कर रहे हैं, कुछ उन बिछड़े हुए चेहरों की बात कर रहे हैं जो अक्सर याद आते हैं, तो फिर हम उनकी याद में कुछ ऐसा मगन होते हैं, कुछ हसरतों में चले जाते हैं, कुछ गिले शिकवों में चले जाते हैं, कभी रिग्रेट्स में चले जाते हैं, कभी किसी उम्मीद में चले जाते हैं, कभी दुआ में चले जाते हैं, कभी हम खुद को कूसने लग जाते हैं, कभी जिंदगी को और कभी किस्मत को, और इसी तरह सोचते सोचते रात गुजर जाती है। लेकिन हर किसी के अपने अपने, हर किसी की अपनी अपनी कयामतें होती हैं। हर किसी की कयामत की नौयत फर्क होती है। हो सकता है मेरे लिए जो बात बड़ी कयामत खेज है, आपके लिए वो बड़ी मामूली सी बात हो। आप सुने और आप सुन के कहें कि ठीक है, लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं। ओके, मूव ऑन करो, अब आगे बढ़ो। हमें अपने दुख और अपनी कयामतें हमेशा बड़ी लगती हैं। दूसरों की खुशियां बड़ी लगती हैं, दूसरों के दुख छोटे लगते हैं और खुशियां बड़ी लगती हैं, और अपने दुख हमेशा बहुत बड़े लगते हैं। अपने दुख दुख नहीं लगते, कयामतें लगती हैं। होता है ना? और जब जब हम अपनी रात के इस तरह के किसी पहर में उस कयामत से गुजर रहे होते हैं, तो फिर उस कयामत में कहाँ नींद आती है, कौन कम बख्त सो पाता है। रजा रिजवी कहते हैं, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। रात भर नींद ना आने की एक वजह उदासपन है और दिल की बेसुकूनी भी होती है। कभी इंसान बाजाहिर नॉर्मल लगता है, मगर अंदर से किसी याद, परेशानी, तन्हाई या अधूरी बात में उलझा होता है। दिन भर की थकन, खामोश फिक्र, मुस्तकबिल की परेशानी और दिल का बोझ नींद को आंखों से दूर कर देते हैं। ऐसे वक्त में दुआ, मस्बत सोच और दिल का सुकून बहुत जरूरी है। नींद भी आती नहीं उदास रातों में, दिल उलझा रहता है खामोश बातों में। मैं आपका शो दुबई से सुन रहा हूँ। मुझे लगता है ये आपने लिखवाया किसी से, चैट जीपीटी से लिखवाया। चले, अगर उससे भी लिखवाया तो अच्छा ही लिखवाया। मरीना कहती हैं कि कुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती लहू से, और जख्म जुदाई है कि भर भी नहीं जाता। वसीम मलिक अवान मुंडा सियालकोटी हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम करते हैं, सब सुनने वालों को सलाम करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं। आरजे डॉग्स हैं, क्या बात है जी, कहते हैं कि हाय रात फैली है कमाल लिरिक्स। सर, कमाल तो आप करके गए हैं, अभी हम तो बस आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर लेते हैं आप? कॉल्स का सिलसिला लेते हैं, 04211100101 पे आपकी कॉल्स लेते हैं, देखते हैं पहले कॉलर कौन है। और आज हम पूछ रहे हैं कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है?
0: ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। रिमशा बात कर रही?
1: जी बिल्कुल, मैं लाहौर से रिमशा।
0: जी रिमशा, क्या कहना चाहेंगे?
1: अल्लाह
0: का शुक्र।
1: अपनी नींद के ऊपर बात शेयर थी भाई आज।
0: जी
1: बड़े जालिम टॉपिक लेके आते हैं वैसे आप।
0: अब तो ले आए हैं, अब भुगते हैं आप।
1: अच्छा।
0: तो
1: मैं नींद के ऊपर भाई ये कहना चाहूंगी कि नींद बार दफा किसी की याद में भी नहीं आती, और नींद जो है ना बार दफा ऐसा होता है कि जब इंसान का एतबार टूटा हो तो नींद उस वजह से भी नहीं आती।
0: आपको क्यों नहीं आती?
1: मैं अपने भी बात कर रही ना, मुझे भी नींद नहीं आती।
0: तो आपके भी एतबार टूटे हुए?
1: नहीं नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ ना, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ ना, फिर मैं आपको अपने बारे में भी बताती हूँ। और नींद बस ऐसा होता है कि

0: कुछ लोग ना कुछ लोगों को ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज बोल देते हैं जिनकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती। दिलो दिमाग में वो लफ्ज घूम रहे होते हैं, और क्योंकि उनको पता होता है कि हम कैसे लफाज इस्तेमाल कर रहे हैं और अगले के दिल में लगते हैं वो लफाज, तो वो दिमाग में बैठ जाते हैं जिसकी वजह से वो सारी रात उसे सोचते रहते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई जो कुछ लोग होते हैं कि किसी की नींद चुरा लेते हैं।
1: लोगों की बात ना करें, अपनी बात करें सिर्फ।
0: मैं अपनी बात ये करती हूँ कि भाई मुझे यानी कि मुझे 4-5 महीने ही हो चुके हैं ये मुझे नींद नहीं आती।
1: क्यों नहीं आती?
0: जब से यानी भाई मेरे बाबा की डेथ हुई है ना, ऐसा है कि मेरी नींद जो है ना उड़ सी गई है। क्योंकि जब आप देखें कि कोई शख्स ऐसा हो जिसके साथ आपकी नींद जुड़ जाती है, बार बार जैसे की आवाज सुन के आपको सुकून से नींद आ जाती है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। और जब इंसान किसी को देख लेता है तो सुकून मिल जाता है और नींद अच्छी आ जाती है। जब इंसान उसकी आंखों से ओझल हो जाता है ना, तो नींद जो है ना बस आंखों में होती है लेकिन इंसान जब भी लेटता है ना भाई, बस ऐसा होता है कि इंसान के जिस्म से कोई दर्द नहीं होती। जब अचानक से वो लेटता है तो जिस्म का कोई हिस्सा दर्द होना शुरू हो जाता है, तो पहले उसके जिस्म में कोई दर्द नहीं होती। अब नींद शिद्दत से आंखों में भरी होती है,
1: बिल्कुल ठीक।
0: अचानक से कमर में दर्द स्टार्ट हो जाती है, इंसान उठ के बैठ जाता है सो नहीं पाता दर्द की वजह से। उससे पहले उसके चाहे जिस्म में कोई भी दर्द ना हो रहा हो लेकिन वो दर्द उसे सोने नहीं देती।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: बार दफा मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन सो नहीं पाती। और जब से मैं क्योंकि अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती, क्योंकि मैं अपने हमेशा मेरी आदत होती थी भाई मेरे बाबा जब भी सोते थे तो अच्छा रोजाना मैंने ना देख के सोती थी, अपने बाबा की आवाज़ को सुन के सोती थी, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। लेकिन अब मैं तरसती हूँ कि एक बार मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजे, एक बार वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आए ताकि मैं सुकून से सो पाऊँ। लेकिन मुझे नींद नहीं आती, आंखों में शिद्दत नींद भाई मेरी भरी होती है लेकिन मैं नहीं सो पाती।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप रेमशा। और
0: इंसान के जिंदगी से भाई कोई प्यारा चला जाता है ना, तो इस वजह से भी नींद नहीं आती। और बस तब ऐसा होता है कि नींद इसलिए भी नहीं आती कि जब इंसान अगर नॉर्मली बात की जाए तो अगर जब इंसानों को आदत होती है कि कुछ लोग होते हैं जो दिन के टाइम सो लेते हैं नींद मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें रात को नींद नहीं आती।
1: बिल्कुल
0: और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रात को सो लेते हैं, फिर बाद में जब वो दूसरों को देखते हैं कि आप लोग दिन में सोते हैं मैं तो रात उतनी अच्छी नहीं जाती और दिन से दिन ही काम से सोया नहीं जाता। और ऐसा जब आप रेडियो सुनने के जब किसी को आदत पड़ जाती है तो कुछ लोगों की आवाज़ें ऐसी होती है कि ये यानी कि किसी प्यारे की आवाज़ सुने बगैर नहीं आती।
1: बिल्कुल ठीक है रिमशा, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और आइंदा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी बात को ना ज़रा कट शॉर्ट करना है, बहुत ज़्यादा लंबी कॉल नहीं करनी, ठीक है?
0: और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, मैंने आपने बहुत टाइम दे दिया, आपने मुझे टाइम दिया। और सभी सुनने वाले समाता का नाम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरी तमाम लिसनर से गुजारिश है कि जब आया करें तो अपनी बात को थोड़ा समेट के किया करें, बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगु से थोड़ा परहेज़ किया करें, क्योंकि इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो क्यू में होते हैं, वो कॉल कर रहे होते हैं तो फिर हम ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाते, फिर आप ही सब गिला करते हैं कि आप प्रोग्राम में हमें शामिल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जिया?
1: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी हैं?
2: हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैं ऐसा टॉपिक छेड़ा है ना कि बस, लेकिन मजबूरी में कोई जाके आपको नहीं सुनता, दिल चाहता है तो हम सुनते हैं आपको जाके, सो सकते ही नहीं अगर ना सुने तो फिर लगी रहती है फिक्र कि प्रोग्राम हो रहा होगा। और आज तो ज़्यादा कमाल किया है, जो पहली नज़्म पढ़ी ना वो गज़ल थी, मैंने देखा तो उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत दफ़ा वो पढ़ी है। लेकिन आज तुमने जिस अंदाज में वो पढ़ी है भाई, कमाल कर दिया। पहले से जितनी अच्छी थी मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगने लगी, इतना खूबसूरत तुम्हारा अंदाज था, कमाल थे। उससे पहले डॉग्स जो प्रोग्राम करके गए बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उनके प्रोग्राम में कॉल मिलाने की कोशिश नहीं की, बस मैं सुन रही थी। आज बड़े अच्छे मूड में बोल रहे हैं, गाड़ी में बैठे कह रहे थे ये क्या चाहता है मई, क्या चाहता है। मैंने दिल में आया था, मैं कहूँ ये जा रहा है कि आप शादी कर लें, अकेले ना निकला करे गाड़ी में, भाई कोई साथी हो तो एंजॉय करे मौसम को, बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते फिरते हैं। क्या ख्याल है, बोल दो सुन रहे होंगे। और हाँ, सबसे पहले रहमान की तबीयत मैं पूछूंगी। जिया रहमान अक्सर क्यों बेचारा को तकलीफ हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। मेरी बहुत सारी दुआएं रहमान के लिए, अल्लाह उन्हें जल्द से अच्छा करे।
1: आमीन आमीन।
2: तो उस दिन आप मेरे पीछे लग गए, गाना सुनाए गाना सुनाए, मुझे बाद में इतनी शर्माई, मैंने कहा अल्लाह इतना सयाह ने गाओ, मैं इतनी ढीठ, और वाकई मुझे आता ही नहीं था। आज पता है मुझे खामो खामी बैठे बैठे रहमान का मैंने सुना तो मुझे वो याद आ गए होते हैं। तो लफ्ज में ही कहूँगी कि है मेरी ये दुआ, तुम सलामत रहो, तुम जहाँ भी रहो बन के चाहत रहो, कोई गम न मिले जिंदगी भर तुम्हें। और आगे का भूल गई, ये जिया के लिए भी था, ये रहमान के लिए भी था, ये डॉक्स के लिए भी था, तमाम प्यारे प्यारे आर्जेस के लिए, तमाम प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। सब हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, सब हमें बहुत अजीज हैं। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कोई किसी से कम या कोई किसी से ज़्यादा, सब छाए हुए हैं। आज सुना कि आप आ गए हो तो मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, कल का जो प्रोग्राम करके गए हैं मोहतरम आप, बस वो मैं खामोशी से बैठ के सुनती रही, मैंने कॉल मिलाने का सिलसिला किया ही नहीं। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, और वो जो मुस्तफाई साहब एक आए हुए थे
1: जी,
2: दोनों ही की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको सुन के मुझे बड़ा मजा आया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने या तो इनको कहीं सुना है या मैंने इनको कहीं पढ़ा है उनके नाम से, लेकिन मुझे सही याद नहीं आ रहा था कि कहाँ पे। और जब फिर वो लोग बोले हैं और पता चला कि डिबेटर भी हैं वो, भाई इतना शानदार था ज़िया प्रोग्राम के, वाकई सुनने के काबिल था, और मैंने बड़ा ही इंजॉय किया। मैंने ट्राई ही नहीं की कॉल, मैंने कहा बस आज मैं सुनती
1: हूं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच।
2: इतना अच्छा प्रोग्राम था, और आज जो सिलसिले हैं कि नींद क्यों नहीं आती, तो ज़िया इसके लिए ना बहुत सारी बातें हैं। कोई एक बात नहीं कि जी वो इश्क में शायद हार गए हैं या कुछ बेवफाई हो गई है या कुछ हो गया तो नींद नहीं आई, नहीं नींद में ना आने की मेरे नज़दीक तो बहुत सी वजूहत हैं।
1: आप बताएं आपको क्यों नहीं
2: आती। मैं आपको बताती हूँ जो मेरा अपना जो मेरा है, अगर रात गए या शाम के वक्त में कोई भी मुझे ऐसी वैसी कोई खबर सुनने को मिल जाती है मेरे लिए तकलीफ देह होती है, उस दिन मैं बहुत बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। या जैसे मैं आज अपनी एक अजीज़ा है मेरी, मैं उनको देख कर आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज भी मैं सुन सकूँगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं जितनी देर भी प्रोग्राम सुनूँ, जिससे जिसका भी आ रहा है अच्छा है मैं सुन लूँ, क्योंकि मुझे बहुत डिप्रेशन होने लगता है ज़िया। और फिर मैं आँख बंद भी करूँगी ना तो मेरी वही बातें रिपीट होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, यहाँ तक कि फजर हो जाती है। मुझे बड़ी ही अजियत होती है। मैं सबसे ये कहती हूँ भाई रात के वक्त में ना मुझे कोई ऐसी वैसी बात मत बताया करें, वो मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, मैं क्या करूँ। मेरी बहुत अजीज दोस्त इस दुनिया से चली गई, उनका मुझे इतना गम था, आप यकीन करो कि मैं बहुत अक्सर डिप्रेशन में रही, चली गई थी डिप्रेशन में शदीद, मैं कितने दिन नहीं सोई, मुझे ये भी नहीं याद, और मैं भूल गई थी कि सोते कैसे हैं, नींद कैसे आती है, इतनी टैबलेट्स खाने के बावजूद। तो मैं इस अजियत को समझती हूँ कि कितनी शदीद अजियत है, अल्लाह ताला किसी को भी इससे दो चार ना करे, कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। तुमने बहुत मजे की बात बताई, मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं मिले डाले किसी को भी डाले सो जाते हो, तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी हो, अल्लाह मियाँ ऐसे ही रखे।
1: चले बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच।
2: शायरी नहीं सुनो,
1: जल्दी से सुना दे,
2: अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं,
1: टाइम तो वाकई नहीं है।
2: अच्छा चलो फिर हो जाएगी, बात हो गई, यही बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू,
2: बहुत सलाम तुम्हारे लिए, बहुत दुआएं, सबको सलाम, सब जीते रहे, अल्लाह हाफिज़,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, टॉप ऑफ द टॉप आज है ज़ियान जम साहब।
1: कौन बात कर रहे हैं, कहां से,
3: कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आपकी दुआएं।
3: हक नवाज बात कर रहे हैं रावलपिंडी से सर।
1: हक नवाज भाई ठीक है, आप खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं।
1: नींद आती है?
3: बिल्कुल भी नहीं, इतनी टैबलेट्स खाता हूँ नींद की फिर भी नहीं आती।
1: क्यों नहीं आती?
3: डर लगता है मौत से।
1: मौत से डर लगता?
3: हाँ ना।
1: ओए होए होए,
3: मैं कहता हूँ कि मैं गहरी, सुने ना, मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं गहरी नींद में सो जाऊं, कोई आके मुझे छुरा घोंप जाए, या मेरे ऊपर कोई आके गोली चला दे, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी नागहाना आफत आ जाए।
1: तो दिन भर आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको डर होता है कि रात को कोई आके छुरा मार जाएगा?
3: मैं कुछ नहीं करता, लेकिन माइंड ऐसा चलता है ना, इसमें अब मेरा क्या कसूर है, सारे मेरे दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं। हाँ, जब आजान होती है सुबह की, फिर नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद फिर इतनी मजे की नींद आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता।
1: यानी अजान से पहले, नमाज से, फजर से पहले आपको नींद नहीं आती और आपको खौफ रहता है कि कहीं आप मर ना जाए?
3: हाँ ना, मरना तो वाकई ही है एक दिन, मौत बराक है, लेकिन पता नहीं मेरे मेरे दिमाग में ये बातें क्यों चलती रहती।
1: यार मौत तो बड़ी अच्छी चीज है यार।
3: अच्छी चीज है वाकई,
1: मौत तो बड़ी प्यारी चीज है।
3: मुझे डर लगता है ना यार, मुझे डर लगता है।
1: अच्छा
3: क्यों ऐसा है मेरे साथ, मुझे बताएं क्यों ऐसा है।
1: क्योंकि आपको डर लगता है ना मौत से, लेकिन मुझे तो लगता है कि मौत बड़ी अच्छी चीज है।
3: नहीं, शहादत की मौत अच्छी चीज है ना, वैसे बिला वजह को मार जाए
1: नहीं, वैसे कोई क्यों मार के जाएगा। आप क्या करते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा करते हैं सारा दिन कि आपको कोई मार जाएगा। वैसे तो कोई नहीं मार के जाता होता
3: इसको नहीं मारता, मतलब मैं मुतमईन हो जाऊंगा आपकी बात पे।
1: मतलब आप, आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द किसी को इस तरह कोई मार के गया है?
3: हाँ, बहुत सारे हादसात हुए हैं सर।
1: अच्छा
3: नहीं, आप मुझे मुझे अपनी तरफ से मुतमईन करें कि मैं मुतमईन होकर सो जाया करूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ के, दुआए कुनूत पढ़ के, इस तरह की सूरतें पढ़ के, मतलब है सो जाया करूँ। अल्लाह को सपोर्ट,
1: बिल्कुल अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, या जो भी आपको सूरतें या जो भी चीज याद है तो आप वो जरूर विर्द करें, और उसके बाद आप अपनी टेंशनें फिक्रें अल्लाह के सुपुर्द करके सो जाएं। आप अपनी फिक्रमंदियाँ, वो वाली फिक्रमंदियाँ जो आपकी हैं ही नहीं, जो टेंशन आपकी है ही नहीं, वो आप लेके अगर बैठ जाते हैं, वो आप फजर के बाद भी तो सोते हैं ना, वो भी तो आ ही जाती है।
3: मेरे ख्याल से उज़्मा गिलानी के।
1: उज़्मा गिलानी तो एक्ट्रेस थी।
3: अच्छा, एक्टर थी, सॉरी। फिर ये किन के शेर है, नींद की रात भर नहीं आती?
1: ये गालिब का शेर है।
3: अच्छा, मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर है
1: जी।
3: मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती,
1: पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती,
3: बात भर नहीं आती। बहुत शुक्रिया सर, और भी बहुत सारे,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू हक नवाज।
3: और अनिला, आप मुझे याद नहीं करती, अनिला आप ही मेरी आपसे कुटी होगी। ओके, आइंदा मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। अल्लाह हाफिज़।
1: काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन नींद क्यों रात भर नहीं आती।

0: बहुत सारी बातें हैं जो मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो कहूँ करूँ, लेकिन चलें पहले आपकी कुछ कॉल्स ले लेते हैं। वैसे मौत के हवाले से भी एक पूरा प्रोग्राम किया था कुछ अर्सा पहले कि मौत तो बड़ी खूबसूरत शय है, बड़ी अच्छी शय है। मौत का एक नाम विसाल भी होता है। विसाल तो बड़ा खूबसूरत होता है। एक आशिक को तो हमेशा से ख्वाहिश रहती है वसल की, विसाल की, मिलने की, दीद की। वो तो चाहता है कि कुछ हो के विसाल हो। जुदाइयां कहां काटी जाती हैं? हां, जुदाइयों में नींद नहीं आती। शौके विसाल तो फिर विसाल का डर कहां होता है? कभी कभी खुशी में भी, शिद्दते खुशी में भी, और कभी कभी शिद्दते गम में भी नींद नहीं आती। बहुत ज्यादा खुशी हो, कभी कभी यूं होता है ना कि हमें सुबह किसी से मिलने जाना है, सुबह कोई खास हमारा कोई ऐसा दिन है, खास दिन है जिसका हमें बहुत अरसे से इंतजार था, तो मारे खुशी के एक्साइटमेंट के बाजूकात हमें रात को नींद नहीं आ रही होती। हमें यह भी फिक्र होती है कि फटाफट से हम सोएं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के हमने ये सारे काम करने हैं क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कभी कभी इस वजह से भी नींद नहीं आती, और कभी कभी इस वजह से भी नींद नहीं आती कि कल का दिन फिर कितना कठिन होने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है, रात कैसे गुजारूं मैं, दुख है, परेशानियां हैं। तो कोई भी जज्बा, कोई भी इमोशन जब एक्सट्रीम पकड़ लेता है, शिद्दत पकड़ लेता है, इंतहा पकड़ लेता है, तो पहला असर जो होता है वो हमारे जहन, दिल और दिमाग पे, और उसके बाद आंखों में यही होता है कि नींद उड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम। रोजी बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: रोजी, आप बहुत अरसे बाद आई हैं।
1: हाँ, बस कुछ ये था कि कुछ प्रोग्राम्स कुछ माँ से नहीं सुन सकी, कुछ बिजी थी ऐसी, और कुछ कराची गई हुई थी और वहाँ पे अपने सब रिलेटिव में और शादी अटेंड करने में थी, इसलिए मैं प्रोग्राम्स ही नहीं सुन रही थी चंद माह से, और इसको मैंने खुद भी बहुत मिस किया।
0: चलें, अच्छा हुआ कि आज आप आ गई। मुझे बताइएगा, नींद आती है आपको रात को?
1: नींद तो नहीं आती, अक्सर नहीं आती।
0: क्यों नहीं आती?
1: वो ये होता है, एक तो हमें आदत है एफएम सुनने की, और अच्छे अच्छे अपने होस्ट जो हैं, आप लोग जिस तरह आते हैं आपके प्रोग्राम सुनने की एक आदत हो गई है, और इस वजह से भी नहीं आती। और ये भी होता है कभी एक्चुअली ख्यालात का एक सिलसिला होता है। मेरे साथ ये आदत है कि मैं छोटी सी बात जो मेरी जिंदगी में हुई होती है वही मेरे दिमाग में रिपीट होती है, और मैं उसको हर जाविये से जांचती हूँ, परखती हूँ कि ये बात अगर ऐसे की मैंने, किसी ने मुझसे ऐसे की तो क्यों की, और अगर वैसे उस वे में की तो क्यों की। तो वो मैं इस तरह की चीजें ना मुझे मतलब परेशान कह लें करती हैं, या ख्यालात आते हैं जहन में, तो ज्यादातर इसी तरह बस सोचते सोचते अगर नींद आ गई तो सो गई, और अगर नहीं आई तो फिर जागते रहते हैं।
0: तो ज्यादातर वो ख्यालात फिक्रों वाले ख्यालात होते हैं।
1: हाँ, कह सकते हैं कि कुछ कुछ अजीब सी बात हुई हो तो वो बार बार दिमाग में घूमती रहेगी, तो तरह तरह के ख्यालात होते हैं। और आज दिन में तो वैसे ही मैं 12 बजे के बाद खूब डट कर सोई 6 बजे तक, तो आज तो मैं इसलिए
0: अच्छा, ये क्या वजह होती है कि दिन को नींद आ जाती है लेकिन रात को नींद नहीं आती?
1: कभी ये होता है कि हमारा कोई गैप ऐसा होता है ना, तो नींद हमें होती है, हमारे अंदर में थकन फील हो रही होती है, तो फिर हम कहते हैं कि चलो अब ये टाइम फ्री है तो हम लेटते हैं, हालांकि हमारा इरादा भी नहीं होता सोने का, लेकिन खुद बहुत मतलब सो जाते हैं, नींद आ जाती है।
0: चले, ठीक हो गया। रोजी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू।
1: अच्छा बात सुने, ये आपको बहुत जल्दी है, एक दो शेर ना सुनाऊं कोई?
0: चलें, सुना दे फटाफट से।
1: हाँ, बड़ा एहसान करेंगे सुन के आप मुझ पे। देखे ना, मैं ख्वाब ख्वाब उसके लिए जागती रही, मैं ख्वाब ख्वाब उसके लिए जागती रही, उसने भी नींद नींद में ढूंढा बहुत मुझे।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: हाँ, मैंने कहा ये आपके प्रोग्राम जिस तरह से कुछ जिस वे में हम जा रहे हैं, आप थोड़ा सा वो उसको भी टच करते हैं। अच्छा, एक और शेर भी है कि ख्वाब घोल के अशकों में बनाई हुई है, ख्वाब घोल के अशकों में बनाई हुई है, एक तस्वीर जो आंखों में सजाई हुई है, महकी महकी हुई आती है सरे शाम हवा, महकी महकी हुई आती है सरे शाम हवा, ताजा ताजा कहीं फूलों की चुनाई हुई है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया रोजी जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: ओके, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया तो बड़े एहतराम से अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे मिजाज है आपके?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: जी मैं सलमान राजपूत बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
0: जी सलमान, क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं आपका शो सुन रहा था और सबसे पहले तो अपने दिल की बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम आपके टॉपिक पे आएंगे। ओके, हार्ट भी तेज हो गई है, मतलब फर्स्ट टाइम किसी एफएम के शो पे दूसरी तीसरी बार कॉल मिली है, थोड़ा सा मेरी जो है ना हार्ट बीट है।
0: चलें आप रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो गए, आप अपने दिल की बात कीजिए।
2: ओके, मैंने ना जिंदगी का निचोड़ दो चीजों में निकाला है। नंबर वन के आपकी जहानियत, अकलमंदी और अंदाजे गुफ्तगू, जब आपके अकल आ जाती है तो आपको बोलने की सहानियत आ जाती है, मतलब तरीके कार आ जाता है। ये दो चीजें,
0: जहानियत नहीं जहानत,
2: हाथ भी तीज है समझा करें। अच्छा, ये दो चीजें होगी, अकल और बोलने का तरीके कार होना चाहिए। ये दो चीजें जिसके पास आ गई वो बेस्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद जिंदगी का एक सफर तय किया और सारी बातों का निचोड़ ये निकाला है, गम और खुशी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये तो जिंदगी भर रहेगा। ओके, मैंने फिर सारी जिंदगी गुजारने के लिए ना, जैसे कि मायूस हो जाते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अपनाया, तो बार औज़ बिल्लाह पढ़ो, शुरू बात जहाँ से होती है ना औज़ बिल्लाह, सो बार कलमा पढ़ो, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और सो बार दुरूद इब्राहिम करो और तीसरा कलमा। जैसे जैसे नॉलेज में इजाफा होता है ना, आप अल्लाह की तरफ, और नियत कर लें कि जितने भी मुसलमानों की कंट्रीज हैं इनका भला हो, ठीक है, जितने भी मुसलमान है जैसे कि हमारे घर में या भाई, इस तरह से बेहतरी आती है ना, मतलब सब बेहतर हो जाता है। आप अपनी तरफ से दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल रही हो, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक के ऊपर, नींद क्यों नहीं आती? आखिरी सांस है ना जब तक मेरी, क़यामत की निशानियों की लड़ाइयाँ और जहालियत ज्यादा हो जाएगी, सफात वगैरह ना,
0: जहालियत नहीं जहालत।
2: जी सर, ऐसा ही है बिल्कुल। तो जब तक मेरी आखिरी सांस है ना
0: जी,
2: मेरे नींद आने की ये वजह है कि दुनिया में बुराई है, ठीक है, और ये बुराई खत्म नहीं होगी, और मेरी अच्छी सोच यानी कि रात को अल्लाह का नाम लेना, ठीक है, मतलब ये चीज मेरे नींद ना आने की वजह यही है कि दुनिया में बुरे लोग हैं, ये कभी खत्म होंगे नहीं, ठीक है, और जो मेरी नींद है वो मुझे नहीं आएगी, यानी कि साबित ये चीज होती है कि आपको सुकून, आपकी मुझे पूरे शो में बताऊं कौन सी अच्छी बात लगी, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है ना वो, उसके लिए मौत एक खुश नसीबी है, मतलब मुझे आपकी अच्छी बात लगी कि मौत आना, जब आप पूरी तरह से पाक हो ना, तो जब फौत हो जाते हैं तो आप, जाहिर सी बात है अच्छे इंसान है तो दुनिया से तो आप रुखसत हो जाते हो, लेकिन दुनिया में भी कुछ हो जाती है और आखिरत में भी। और ज़ियान नाम है आपका, दूसरी तीसरी बार आपका शो सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आपका शो रोजाना रात 12 से 2 बजे तक हो, ताकि एफएम सुन देना, टेलीविजन और मोबाइल की दुनिया से हट जाएंगे, आपका शो जरूर सुनेंगे।
0: चलें, बहुत शुक्रिया राजपूत साहब, आपकी मोहब्बत, आपकी ज्यादा, आपकी आपकी बात भी हम तक पहुँच गई, आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
2: आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
0: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा तमाम उन अपने कॉलर से कि जो आए तो आके गुफ्तगू को थोड़ा सा समेट के करें। अस्सलाम वालेकुम
3: जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। शहजाद भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
3: हाँ, आपकी दुआएं अल्लाह ताला आपके करम का बहुत ही दुआ आई है।
0: आपको आती है नींद?
3: जी देखें जी, अब तो नींद आ रही है। जब फिक्र हो ना दिमाग में, जो दिन परेशान हो, फिर नींद नहीं आती।
0: फिर नींद नहीं आती
3: जी। मैंने जो आखिरी बेटी की शादी करनी थी, तीन महीने का टाइम था हमारा, तो उस दिनों में हमें नींद नहीं आती, आपकी पापी को भी और मुझको भी।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
3: सारी सारी रात सोचते थे क्या होगा, आगे खर्चा बढ़ा है, लेकिन अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है जी। बहुत मतलब काम हमारा अच्छा हुआ और अल्लाह ताला ने इज्जत से किया, ये खुश मतलब उनका शुक्रिया, मतलब शुक्र करते हैं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह
3: जी। तो ये जो टेंशन होती है ना, इंसान को ये नहीं सोने देती, तो लिहाजा ये टेंशन जो ना कम करनी चाहिए। अपने साथ सारी जो हम मोबाइल देखते हैं, वो जागते रहते नहीं, सुबह सोते रहते, ये भी अच्छी बात नहीं। वो रात की जो नींद है ना, रात की नींद वो 3 दिन की थकावट देती है जी। मुझे दो मुझे होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत बात।
3: बहुत अच्छा आपका शो, और आपको दुआएं बहुत अच्छी। बहन भाई आते सबको सलाम, और मेरा सब आरजे को दिल से सलाम।
0: बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो मच, सलामत रहे। हदीका क्यानी की आवाज। ये गाना भी मेरे दिल के बहुत करीब है। हदीका के ये उन अंडररेटेड गानों में से एक है जो बड़े खूबसूरत है, लेकिन कम कम सुने जाते हैं। आए मिलके सुनते हैं।

जितना भी मैंने उसको भुलाया वो मुझे याद आया, वो मुझे याद आया। जफीर अब्बासी हैं, कहते हैं सर असल में नींद का ना आना महज थकावट की कमी नहीं होती, अक्सर रात की खामोशी में हमारे जहन का शोर बढ़ जाता है, कभी अधूरे ख्वाब और कभी कल की फिक्र सोने नहीं देती। आजकल की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हमारा जिस्म तो थक जाता है मगर दिमाग को ऑफ करना मुश्किल हो गया है। क्या बात कही है आपने, क्या खूबसूरत बात कही है कि हमारे पास कोई ऐसा बटन नहीं है। बटन तो है लेकिन हमें उनको इस्तेमाल नहीं करना आता, हमने उनको इस्तेमाल करने की कभी प्रैक्टिस नहीं की कि हम अपने उस माइंड को, उस दिमाग को, उसके बटन को स्विच ऑफ करें कि जो ये ख्यालात की भरमार है, ये जो सोचों की भरमार है, जो सोच दर सोच दर सोच के सिलसिले दर सिलसिले दर सिलसिले खोलती जाती है और हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम सारी रात जाग जाग कर बेचैन गुजार देते हैं। मरीना कहती है कि आपने बहुत मर्तबा ये कहा कि पैसे मिलते हैं, फिर आज ये भी बता दें कि कितने मिलते हैं। बहुत सारे पैसे मिलते हैं, अन्य वाह पैसे मिलते हैं। मोहम्मद सिद्दीक डार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम आरजे से अंजुम भाई एंड ऑल स्वीट लिसनर्स, एफएम 101 शो इज वेरी नाइस। मोहम्मद सिद्दीक डार फ्रॉम नीलम वैली ठंडा पानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, आपका बहुत शुक्रिया आप हमें सुन रहे हैं। कहते हैं कि फितरत तो कुछ यूं भी इंसान की बारिश ख़त्म हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। बिल्कुल ठीक है आपने। फराफ जाल कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छा टॉपिक, मेरी अम्मा के इंतकाल को 21 साल हो गए हैं और मेरी नींद उनके साथ ही चली गई थी, मैं उनके पास सोती थी और उनके जाने के बाद अब नींद भी रूठ गई है, नहीं आती, साथ फिक्रें भी होती हैं जहन में तो एक आध घंटे की भी नहीं आती। सुबह हो जाती है फिर ख्याल आता है कि एक दिन सो तो जाना है तो उसी वक्त नींद पूरी कर लेंगे। क्या बात है, कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगियों से नहीं जाते बल्कि हमारी जिंदगियों का एक बड़ा हिस्सा, हमारे वजूद का हिस्सा, हमारी रूह तक को खींच के लेके चले जाते हैं। उनका जाना क्या होता है कि जैसे वो हमसे हमारी जिंदगी लेके चले गए हैं, जैसे हमसे हमारी रूह लेके चले गए हैं, जैसे हमसे हमारी सारी की सारी खुशियां लेके चले गए। कभी वो जाने वाला शख्स माँ की सूरत में होता है, कभी बाप की सूरत में होता है, कभी किसी बहुत अजीज की सूरत में होता है, कभी औलाद की सूरत में होता है, कभी खून के रिश्ते होते हैं और कभी कुछ ऐसे सिलसिले, कुछ ऐसे मोहब्बती लोग होते हैं कि जिनका जाना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। गो के एक हकीकत है, हम सबको मालूम है कि हम सब ने जाना है, दुनिया का दस्तूर है कि जाना ही है, लेकिन फिर भी कुछ जाने वाले जब जाते हैं तो पता नहीं क्यों हमसे हमारा बहुत कुछ लेके चले जाते हैं और उसमें एक नींद भी होती है, बहुत सारी खुशियां भी होती हैं। बड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों के जिंदगी से चले जाने के बाद मूव करना। कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाते हैं लेकिन हमें मालूम होता है, ये तसल्ली होती है, कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि चलो वो हमारे साथ इस वक्त यहां पे मौजूद नहीं है लेकिन दुनिया में किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं वो ठीक हैं, आबाद हैं, सही हैं, सलामत हैं। लेकिन अगर कोई ये दुनिया ही छोड़ के चला जाए तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं होता और बाज़ुकात कई कई साल, कई कई दहाइयां गुजरने के बावजूद भी उन लोगों की कमी बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। हम ये बाज़ुकात तस्लीम ही नहीं कर पाते हैं कि कोई हमें इस तरह से कैसे छोड़ के जा सकता है। हमें हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास उनकी आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई देती हैं, उनके चेहरे नजर आते हैं और कभी उनकी शिद्दत की याद में
सोचते सोचते नींद आ ही जाए तो वो अक्सर ख्वाब में आ जाते हैं। ख्वाब में आके कोई ना कोई बात कह जाते हैं, कोई इशारा कह जाते हैं, कुछ समझा जाते हैं, और फिर उसके बाद आंख खुलती है तो एक नई तकलीफ के दौर का आगाज होता है। जहां पे बिछड़ना एक तकलीफ है, वहीं पे उनका दोबारा से कहीं ना कहीं नजर आ जाना, चाहे ख्वाब की सूरत में ही क्यों ना हो, ये भी एक बड़ी तकलीफ दे चीज होती है। ये भी रिग्रेट बड़ा शदीद होता है कि क्यों वो ख्वाब ही क्यों था, वो हकीकत क्यों नहीं थी। ये तो सोचा भी नहीं था कि वो मर जाएगा, चांद एक कब्र के सीने में उतर जाएगा। जिंदगी बड़ी जालिम है, बड़े बड़े प्यारे हमसे छीन लेती है, लेकिन जिंदगी का एक इंसाफ ये भी है कि ये सबके साथ ऐसा करती है, आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करती। हमसे पहले भी बहुत लोग आए और चले गए, हमारे आसपास हमारे साथ भी बहुत सारे लोग आए और चले गए, हम भी चले जाएंगे और फिर हमारे आने के बाद हमारे बाद आने वाले भी चले जाएंगे। ये दुनिया है, दुनिया का दस्तूर है। अगर कभी आप अपनी सोचों के पैटर्न्स के ऊपर गौर करें ना कि हम सारी रात क्या क्या कुछ सोचते रहते हैं, अपनी सोचों का तज्जिया कीजिएगा, अपनी सोचों का एनालिसिस कीजिएगा कि जो सोचें रात को हम सोचते हैं और जिन सोचों को सोचने की वजह से हम सारी रात सो नहीं पाते, उनको सिर्फ सोचने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि हमारी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं और हमारी नींद उड़ जाती है और हमारी सेहत खराब हो जाती है, हमारी रूटीन और हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, सिवाय इस चीज के उन सोचों को सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसी फिक्रें होती हैं जो हमारी फिक्रें होती ही नहीं है, या वो ऐसी फिक्रें होती हैं कि उन फिक्रों की फिक्र करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्र वो करनी चाहिए कि जिसका आप कोई हल निकाल सकते हो, जिसका कोई सलूशन निकाल सकते हो, जिस फिक्र का, जिस परेशानी का, जिस सोच का कोई हल ही नहीं है, तो उसको फिर रब पे छोड़ देना चाहिए। हर चीज को, हर चीज का बर्डन, हर चीज का भार खुद पे नहीं लेना चाहिए। यकीन जानिए, रात को सोते हुए हमारी ज्यादातर फिक्रें यही होती हैं जिनकी वजह से हम सो नहीं पा रहे होते, और हमारे पास उनका कोई हल नहीं होता। तो अगर हमारे पास उनका कोई हल नहीं है, तो फिर जिसके पास उसका हल है उस पे वो छोड़ दें फिक्र, रब पे छोड़ दें वो फिक्र, उसका नाम लें, सुपुर्द कर देना। जैसे माँ साथ होती है ना बच्चे के, तो बच्चा बड़े सुकून से सो जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरी हिफाजत करने वाली, मुझसे मोहब्बत करने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली मेरी माँ मौजूद है, तो मुझे अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी फिक्रें हैं वो उसकी फिक्रें हैं, वो देख लेगी, वो संभाल लेगी, वो कर लेगी। और हम कितनी बेफिक्री से सो जाते हैं, और वो जो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, हमने बहुत सारी ऐसी फिक्रें और सोचें जो पाल के रखी होती हैं, जो हमारी होती नहीं, वो रब की फिक्र होती है, रब पे छोड़ दिया करें। अगर आपको ये आरजा लाहक है कि आपको नींद नहीं आती, तो सबसे पहले अपनी सोचों का एनालिसिस कीजिएगा, तज्जिया कीजिएगा, और देखिएगा कि क्या ये वो फिक्रें, ये वो सोचें, ये वो परेशानियां, ये वो टेंशंस हैं जो मेरे लेने वाली हैं। इन टेंशनों की टेंशन लेके कुछ मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा?
अगर तो पड़ेगा तो उनकी जरूर टेंशन लें और उसका हल निकालने की कोशिश करें, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर उसको छोड़ दें रब पे। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, एकदम से नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, हो सकता है। बड़े खुश नसीब वो लोग होते हैं जो इस फॉर्मूले पे बड़े दिल से, बड़े ईमान से अमल करते हैं कि यार जो होगा देखी जाएगी, और वो अपनी फिक्रें सुपुर्द करके रब के सो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा, नींद आना शुरू हो जाएगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, 2 बज चुके हैं, वसीम साहब स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं। मेरे बाद आप प्रोग्राम गुंचाए शौक सुनेंगे वसीम अहमद साहब के साथ। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त, कोई गलती कोताही हुई हो कहा सुना माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट जुमे को, यानी कि परसों रात 12 से 2। मेरा वीकली प्रोग्राम जो होते हैं वो मंगल और जुमे को रात 12 से 2 प्रोग्राम हरफ़े जुनू। अगर आप मेरे इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी सुनना चाहें तो आप YouTube पे सर्च कीजिएगा दाज़िया अंजुम के नाम से, या Google कीजिएगा दाज़िया अंजुम के नाम से, तो आपको मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें Facebook है, YouTube है, Instagram है, X है, TikTok है। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स YouTube पे देख सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग दूसरों की दुआओं में आबाद रहते हैं उन्हें कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और मेरा ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआ करता होगा और उसकी दुआएँ ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत रहती है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM 101.
2: Smile and dial 111 111 FM.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ खान है। बुनियाद मनसूस के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगरचे इसकी इब्तिदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जंगी तनाजुर में हुई थी, लेकिन अब हम इसको एक लार्जर पैराडाइम में देखते हैं। ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने और इलाकाई तनाज़ात और रीजनल मसाइल के हल करने में इसका बड़ा किरदार रहेगा, और मेरे ख्याल में एक नई डिफेंस पैराडाइम शुरू हो रही है जो कि माशी और तहजीब एतबार से भी हमें बहुत फ़ायदा देगी। शायद इकबाल का ख्वाब के नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर भी पूरा हो जाए, और हमें मुस्लिम तहजीब इस्लामी ममालिक में एक दूसरे के साथ मिल के गुजरने और एक दूसरे के साथ उठ बैठने का मौका भी मिले। तो मेरी इतनी एक तमन्नाएँ हैं इसके लिए, और उम्मीद है इससे पाकिस्तान को और सारी दुनिया को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।

अस्सलाम वालेकुम वन वन एफ एम पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज़ है आपके अपने मेज़बान वसीम अहमद की तमाम खूबसूरत समातों को प्रोग्राम गुंचे शौक में मेरा बहुत बहुत मोहब्बत भरा, खुलूस भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। मोहतरम सामईन, गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान अलबनियान अलमरसूस के नाम से जारी होने वाला कौमी अज़म, इत्तेहाद और दिफाई जज्बा आज भी कौम के दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई या जंगी हिकमत अमली नहीं थी, बल्कि ये उस जज्बे का नाम था जहां पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी नजर आई। और इत्तेहाद मजबूती और यकजहती की अलामत बन के उभरी। इस मौका पर कौम ने यह साबित किया कि जब बात वतन की सलामती की हो तो पाकिस्तानी कौम हर इख्तलाफ को बुलाकर एक परचम तले। और इत्तेहाद मजबूती और यकजहती की अलामत बन के उभरी। इस मौका पर कौम ने यह साबित किया कि जब बात वतन की सलामती की हो तो

सलाम पेश करते हैं जो आज भी सरहदों पर जाग रहे हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम सुकून और आराम से इत्मीनान की नींद सो सकें। पाकिस्तानी अफवाज की जो वर्दी है वो सिर्फ लिबास नहीं, ये एक अहद है, एक जिम्मेदारी है, एक कुर्बानी है। आइए अपने वतन के साथ अहद करते हैं, अपनी अफवाज और अपनी कौमी यकजहती के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहेगा और हम हमेशा अपने पाक अफवाज के साथ कदम ब कदम शाना बशाना साथ खड़े होंगे और हमारी पाक फौज हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। मार्का हक पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल हो चुका। पाक फिजाइया की गैर मामूली महारत और पाक फौज और बहरिया की मुकम्मल मामनत से भारतीय फिजाइया के तैयारों को तबाह किया गया जो पाकिस्तान की दिफाई तैयारी अस्करी बरतरी और हम पेशा वाराना सलाहियत का वाज मजर है। पाकिस्तान अपनी सलामती खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के तहफ्फुज़ के लिए हर लम्हा मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। हम हैं बनियान मरसूस हमेशा तैयार। भारत गुज़श्ता 3 दहाइयों से कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद आजादी को दबाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा ले रहा है। बेगुनाह शहरियों को कैद करना, जाली मुकाबलों में शहीद करना और फिर इसका मलबा पाकिस्तान पर डालना भारत का पुराना वतीरा है जिसका मकसद आलमी तवज्जो असल मसले से हटाना है। पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया। पुलवामा या पहलगाम, पाकिस्तान ने हमेशा भारत की जारहियत का बरवक्त और मुअस्सर जवाब दिया है। पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी और सच्चाई पर मबनी बयानिये ने हमेशा आलमी सतह पर भारत के चूरन को नकारा बना दिया है, हमेशा नकारा बनाया है। अब दुनिया भारत के इन ड्रामों पर यकीन नहीं करती। मोदी सरकार के दौर में भारत ने दहशतगर्दी के तौर पर रियासती पॉलिसी को अपना लिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अब कनाडा, अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक में भी भारतीय एजेंडों के हाथों सिख रहनुमाओं का कत्ल इस बात का सबूत है कि भारत एक ग्लोबल टेररिस्ट स्टेट बन चुका है। पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत भारत के अपने किसी पड़ोसी ममालिक से तल्लुकात मिसाली नहीं है क्योंकि वो उन ममालिक में मुदाखलत करता रहता है। श्रीलंका से लेकर नेपाल और बांग्लादेश तक भारत की मुदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्पराही की एक तवील तारीख है। कुलभूषण यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ होने का ये सबसे बड़ा सबूत है और ये गुलभूषण यादव जो है वो हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर था और यहां तकरीब कारी करते हुए पकड़ा गया। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। टीटीपी और बलोच अलहदगी पसंदों की माली मावनत और तरबियत के जरिए पाकिस्तान में बदमनी फैलाना भारत का वाज़े एजेंडा है। मार्का हक बनियान अल मरसूस, आज हम भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी का एक साल मुकम्मल होने पर उसे बेनकाब कर रहे हैं। एक साल मुकम्मल हो चुका और इस सिलसिले में बेशुमार तकरीबात जो हैं वो मुनक़िद की गई हुकूमत की तरफ से, लोगों की तरफ से, और एक नया जज्बा जो है वो दिल में पैदा किया गया कि पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये सालगिरह भरपूर तरीके से मनाई जा रही है जो हमारी अफवाज और अवाम की नाकाबिले तस्खीर अज़म की अलामत है। और हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज चाहे सुबह हो या रात हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह के हालात हो, अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद, हर वक्त चाको चौबंद रहती है। हम सलाम पेश करते हैं अपनी अफवाज को, दिल की गहराइयों से
और फखर करते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर सबसे बहादुर फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: जब भी आंखों में तेरे वस्ल का लम्हा चमका, जब भी आंखों में तेरे वस्ल का लम्हा चमका, चश्मे बे आप की दहलीज पे दरिया चमका। जब भी आंखों में तेरे वस्ल का लम्हा चमका। फसलें वो लाई खिले बाग में खुशबू के अलम, दिल के साहिल पे तेरे नाम का तारा चमका। अक्स में नक्श हुए आईने धुंधलाने लगे, दर्द का चांद सरे बाम, दर्द का चांद सरे बाम में तमन्ना चमका। रंग आजाद हुए गुल की गिरे खुलते ही, रंग आजाद हुए दिल की गिरा खुलते ही, एक लम्हे में अजब बाग का चेहरा चमका। पैरहन में भी तेरा हुस्न न था हश्र से कम, पैरहन में भी तेरा हुस्न न था हश्र से कम, जब खुले बंद कबा और ही नक्शा चमका। दिल की दीवार पे उड़ते रहे मलबूस के रंग, दिल की दीवार पे उड़ते रहे मलबूस के रंग, देर तक उनमें तेरी याद का साया चमका। रूह की आंख चकाचौंध हुई जाती है, रूह की आंख चकाचौंध हुई जाती है, किसकी आहट का मेरे कान में नगमा चमका। लहरें उठ उठ के मगर उसका बदन चूमती थी, लहरें उठ उठ के मगर उसका बदन चूमती थी, वो जो पानी में गया खूब ही दरिया चमका। हिजर पिनपा ना तेरा वस्ल हमें रास आया, हिजर पिनपा ना तेरा वस्ल हमें रास आया, किसी मैदान में तारा ना हमारा चमका। जैसे बारिश से धुले सहन गुलिस्तान अमजद, जैसे बारिश में धुले सहने गुलिस्तान अमजद, आंख जब खुश्क हुई और वो चेहरा चमका। जब भी आंखों में तेरे वस्ल का लम्हा चमका, चश्मे बे आप की दहलीज पे दरिया चमका। अस्सलाम वालेकुम आदम सामने गुंजे शौक, दिल की गहराइयों से एक दफा फिर आपको आदाब पेश करता हूं। यकीनन सभी समाते माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप खैर खैरियत से होंगे, आप खैर खैरियत से हैं ना? बिल्कुल ठीक। रात का ये खूबसूरत पहर, मैं से खूबसूरत इसलिए कहूँगा कि इसमें तन्हाई होती है और हम सब लोग अलग से अपने अपने जगह पे मौजूद होते हैं। कुछ लोग सोने की तैयारी तो नहीं बल्कि उठ चुके होते हैं मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए थोड़ा सा सोने के बाद, और कुछ लोगों की नींद मेरी तरह उड़ जाती है कि आज तो जनाब मेरा शो है, और कुछ लोग सुनने के लिए शो को सुनने के लिए जाग रहे होते हैं। तो तमाम समातों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आप इस वक्त मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए जाग रहे हैं। 101 FM को ट्यून किया हुआ है आपने। आपको बताता चलूं कि आप 101 FM के नेटवर्क से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जहां जहां पे रेडियो पाकिस्तान FM 101 के स्टेशन मौजूद हैं, जैसे कि चंद एक नाम लेता हूँ, पिशावर है, कराची है, क्वेटा है, सियालकोट है, मुल्तान है, लाहौर है, लाहौर से तो मैं बोल रहा हूँ, और इसके साथ साथ जहां जहां भी हमारा प्रोग्राम पहुंच रहा है आप तक, और जिन जिन इंजीनियर्स ने इस प्रोग्राम को उठाया हुआ है, बड़ी मेहनत के साथ आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ आप हमारी जो नेट स्ट्रीमिंग है उससे भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और उसके लिए आप अपने मोबाइल फोन पे हमारा जो है रेडियो पाकिस्तान का ऐप, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से लेके। और इसके साथ साथ आप रेडियो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.radio.gov.pk पे जाके भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ 11 FM को बल्कि दूसरे हमारे जो स्टेशंस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी आप 24 घंटे एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दुनिया में कहीं भी आप मौजूद हों, आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको फेसबुक पे आना पड़ेगा, जिसका पता है www.facebook.com/FM11Lahore। दोबारा से बताता हूँ, www.facebook.com/FM11Lahore। इस पे आके आप हमारे प्रोग्राम में अपने कमेंट्स देंगे और अपने जो राय है वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है, आपके जो पैगामात हैं वो हम तक पहुंचते हैं तो प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हो जाता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे आसमान पे सितारे होते हैं ना ढेर सारे, ये चाँद होता है चमकता हुआ, चौदहवीं का चाँद, बिल्कुल वैसे ही आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो पैगामात होते हैं प्रोग्राम को खूबसूरत बना देते हैं, रात को खूबसूरत बना देते हैं, रात के अंधेरे को और ज़्यादा अट्रैक्टिव खूबसूरत बना देते हैं। तो अपने कमेंट्स भेजना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स से प्रोग्राम सज जाता है। इसी तरह से आप SMS भी कर सकते हैं, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम पैगाम लिखना है और उसे भेजना है 4471 पे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि क्योंकि ये शायरी के ऊपर प्रोग्राम बेस करता है, हम ज़्यादा पोइट्री इसमें शामिल करते हैं, तो हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी जब प्रोग्राम में आएँ तो कुछ ना कुछ शायरी ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा, शायरी लेके आइएगा, चाहे एक शेर लेके आएँ, चाहे एक बंद लेके आएँ, चाहे एक मिसरा ही क्यों ना लेके आएँ, चाहे एक पूरी गजल लेके आए, नज्म लेके आए, हम आपको वेलकम कहेंगे, दिल की गहराइयों से वेलकम कहेंगे। हमेशा की तरह प्रोग्राम में एक टॉपिक फॉर्मेट के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं, कुछ ऑफिर कॉल्स होती हैं, कुछ लाइव कॉल्स होती हैं, कुछ दिल की बातें आप हमारे साथ करते हैं, कुछ हम अपने दिल की बातें आपके साथ करते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाता है सुबह के 4 बजे तक। मतलब सामने जब दिल को ऐसी चीजों पर मजबूर किया जाए जो वो नहीं चाहता तो कैसा लगता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिल को अच्छी नहीं लग रही होती। दिमाग की बात हम नहीं कर रहे, हम दिल की बात कर रहे हैं। जब दिल को ऐसी चीजों पर मजबूर किया जाए कि जो वो नहीं चाहता, जो वो नहीं करना चाहता, जो उसको अच्छी नहीं लगती, तो पता क्या होता है, इस तरह की जबरदस्ती दिल के साथ नहीं करनी चाहिए। इस तरह ये होता है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उदासी की तरफ चला जाता है, जिसे कहते हैं ना कि दिल का टूट जाना, दिल का बंद हो जाना, वो इस तरह से यास के अंधेरों में गुम हो जाता है। तो अपने दिल को हमें कभी भी ऐसी चीजों पर मजबूर नहीं करना चाहिए जो वो नहीं चाहता। फर्ज करें आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपका दिल वहां पे उस काम में आपका दिल नहीं लग रहा, या आप कोई कारोबार करते हैं, आपने शुरू किया, आपको वो उसके अंदर आपका दिल नहीं लग रहा, अगर आप जबरदस्ती उसको कंटिन्यू करेंगे, जबरदस्ती उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, या किसी शख्स से आपका मिलने को दिल नहीं चाह रहा, आप जबरदस्ती उससे मिलना पड़ रहा है, तो कुछ अर्सा तक तो आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ अर्सा तक तो हम उसके साथ गुजारा कर लेंगे, मगर उसके बाद अगर जबरदस्ती हमें मजबूरन तवील अरसे तक उसके साथ चलना पड़ेगा तो हम जिच हो जाएंगे, हमारा दिल जो है वो बुझ जाएगा। तो वैसे तो कहते हैं कि जबरदस्ती किसी भी चीज में नहीं चलती, मगर खास तौर पे दिल के मामले में दिल के साथ जबरदस्ती कभी नहीं चलती। आप क्या कहते हैं? क्या ऐसा जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ? अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसको हम बात को आगे भी बढ़ाएंगे, आगे भी लेके चलेंगे। मगर आपके लिए पोइट्री भी मौजूद है और आपके लिए एक टॉपिक भी मौजूद है। मोहब्बत जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और हमेशा मोहब्बत को महसूस किया जाता है। मोहब्बत को अगर हम मापने लगे, मोहब्बत को हम किसी तरह से तोलने लगे, किसी तरह से उसको मैयर करने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मोहब्बत को हम किसी भी तरह से मैयर नहीं कर सकते, किसी भी तरह से उसको माप नहीं सकते। वो सिर्फ एहसास है, उसको महसूस किया जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी के साथ हम सोच रहे होते हैं कि हमारी मोहब्बत उनके साथ मौजूद है, हम उनके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे, तो इस तरह से हमारी जो मौजूदगी है ना दिल के अंदर किसी की, वो उसके अहमियत को बयान करती है कि कितना हम उसको चाहते हैं, कितनी उसकी अहमियत है हमारी नज़र में। तो वो कहते हैं कि सबकी मौजूदगी में किसी की गैर मौजूदगी को महसूस करना ही अहमियत की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। कभी कभी कोई भी हमारे पास मौजूद नहीं होता, सिर्फ वही मौजूद होते हैं हमारे ख्यालों में, हमारे दिल में, हमारी धड़कन में, हमारी सोचों में। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी महफिल होती है, बेशुमार हमारे दोस्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, मगर हम अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी हम बहुत शोर शराबे में मौजूद होते हैं, जैसे किसी प्लेलैंड में मौजूद हैं, बहुत शोर है, बहुत झूले हैं, बहुत रौनक है, मगर वहाँ भी हम जब अपने महबूब के बारे में सोचते हैं ये उसको वहां पाते हैं, तो एक चारों ओर जो होती है वो खामोशी छा जाती है। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। मोहब्बत को महसूस किया जा सकता है, ये मोहब्बत के एहसासात है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो मोहब्बत होती है वो लाजवाल होती है। मौसम कोई आए, मौसम कोई जाए, किसी भी तरह का मौसम हो, खिजां आए, बहार आए, पतझड़ आए, सर्दी आए, गर्मी आए, मगर जो दिल का मौसम है, जो मोहब्बत का मौसम है, वो कभी तब्दील नहीं हो पाता, वो वैसा ही रहना चाहिए। अगर आप उसको तब्दील कर देते हैं तो समझ लीजिए आपने अपनी मोहब्बत को ही ख़त्म कर दिया, आपको कभी मोहब्बत थी ही नहीं। जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उस दिन ही क्यामत की शुरुआत हुई थी। इतना है मुझे याद कभी बात हुई थी, इतना है मुझे याद कभी बात हुई थी, रस्मन ही सही उनसे मुलाकात हुई थी। खत पढ़ के खफा तो हुआ और उसने किया क्या कहा, खत पढ़ के खफा तो हुआ और उसने क्या कहा, कासिद मेरे बारे में कोई बात हुई थी। कासिद से भी तो लोग पूछते हैं मेरे बारे में कोई बात हुई थी, मेरे खत को देख के उनके चेहरे के तासरात कैसे थे। खत पढ़ के खफा तो हुआ और उसने क्या कहा, कासिद मेरे बारे में कोई बात हुई थी, कुछ याद नहीं बाजी उल्फत का नतीजा, कुछ याद नहीं बाजी उल्फत का नतीजा, तुम जीत गए थे कि हमें मात हुई थी, कुछ याद नहीं बाजी उल्फत का नतीजा। मैं हूं वो रहे इश्क में मजलूम मुसाफिर, मैं हूं वो रहे इश्क में मजलूम मुसाफिर, मंजिल के करीब आके जिसे रात हुई थी। हाँ याद है मुझको तेरे गेसू का बिखरना, हाँ याद है मुझको तेरे गेसू का बिखरना, बरसा था ये बादल कभी बरसात हुई थी। हाँ याद है मुझको तेरे गेसू का बिखरना, बरसा था ये बादल कभी बरसात हुई थी। महरूम हूं अब ख्वाब में भी उसकी झलक से, महरूम हूं अब ख्वाब में भी उसकी झलक से, जिस रुख की ज़ियारत मुझे दिन रात हुई थी। काबिले गौर शेर है, ये चांद ये तारे भी बताते हैं चमक कर, ये चांद ये तारे भी बताते हैं चमक कर, तकसीम तेरे हुस्न की खैरात हुई थी। बैठे थे सरे बज्म नसीर उनके करी हम, बैठे थे सरे बज्म नसीर उनके करी हम, कल रात की ये बात है कल रात हुई थी। जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी उस दिन ही कयामत की शुरुआत हुई थी। मुनमुन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आवाज आपकी समाप्त तक पहुंच रही है। आपके अपने मेजबान वसीम अहमद की रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो से आपके मैसेजेस का मुझे शिद्दत से इंतज़ार। आपके ऑफर कॉल्स भी अभी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ी देर में हम आपके लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे जनाब एक टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। कुछ तो हमने बात की थी कि जनाब दिल के बारे में बात की, मोहब्बत के बारे में बात की, दिल के साथ ज़बरदस्ती की बात की कि नहीं करनी चाहिए वरना दिल जो है वो मुरझा जाता है, एक गुलाब का फूल होता है जो कुमला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जो दिल है वो घबरा जाता है, कुमला जाता है, मुरझा जाता है। तो दिल के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, क्या हो सकती है आप इसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि क्या हकीकी रिश्तों में भी मुफाद परस्ती होती है। पंजाबी जी कहते हैं कि जी अपना जेड़ा ना मारेगा बिना ते मार के सिटेगा ते छा थल्ले सिटेगा, यानी अगर कोई अपना आपको मारेगा भी और कोई ज्यादती करेगा भी, कोई जुल्म करेगा भी, तो उसके बाद भी वो आपको धूम में नहीं फेंकेगा, मारने के बाद भी वो छांव में फेंकेगा कि ये मेरा अपना है, कहीं पे कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर ये बात जरूर होगी। मगर फी जमाना या ये बात सही है, मुमकिन है, क्या हकीकी रिश्तों में भी मुफाद परस्ती होती है या वो बिल्कुल बेलौस होते हैं, हम उनको बेलौस समझ सकते हैं, हम बेलौस हैं कि नहीं है, इसके बारे में भी बात आप कर सकते हैं। वर्मन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आपके लिए खूबसूरत पोइट्री और खूबसूरत शायरी लेके मैं आपकी खिदमत में आज के दिन शामिल होता हूँ, हाजिर होता हूँ, प्रोग्राम में शामिल करता हूँ आपकी पसंद की खूबसूरत पोइट्री शायरी। फूल थे बादल भी था और वो हसी सूरत भी थी, फूल थे बादल भी था और वो हसी सूरत भी थी, दिल में लेकिन और ही एक शक्ल की हसरत भी थी। जो हवा में घर बनाए काश कोई देखता, दश्त में रहते थे पर तामीर की आदत भी थी। कह गया मैं सामने उसके जो दिल का मुद्दा, कुछ तो मौसम भी अजब था कुछ मेरी हिम्मत भी थी। अजनबी शहरों में रहते सारी उम्र कट गई, अजनबी शहरों में रहते सारी उम्र कट गई, गो जरा से फासले पर घर की हर राहत भी थी। क्या क्यामत है मुनीर अब याद भी आते नहीं, क्या क्यामत है मुनीर अब याद भी आते नहीं, क्या क्यामत है मुनीर, अब याद भी आते नहीं वो पुराने आशना जिनसे हमें उल्फत भी थी, वो पुराने आशना जिनसे हमें उल्फत भी थी। क्या क्यामत है मुनीर, अब याद भी आते नहीं वो पुराने आशना जिनसे हमें उल्फत भी थी।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: कुछ चाहे कुछ आंसू लेकर प्यार का महल बनाया मैंने। अभी आपने मेहदी हसन की खूबसूरत आवाज़ सुनी, फिल्म का नाम था जिंदगी। आपके लिए बहुत ही यूनिक और खूबसूरत सॉन्ग्स मैं तलाश करके लाता हूँ और यकीनन आपको ये गाने सुन के लुत्फ आता होगा। पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ बात कर रही है?
1: जी, मेरा रिमशा भाई, कैसे हैं आप?
0: जी शुक्र अल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। रिमशा बात कर रही हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: कैसी हैं आप रिमशा? फर्स्ट क्लास?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ मैं। और वाकई आपको यकीन नहीं होता, मुझे तो यानी बिलीव नहीं हो रहा कि आप वही पंजाबी बोले हैं वसीम भाई, है ना?
0: अच्छा, क्यों?
1: क्योंकि आप यकीन करें आपकी पंजाबी बिल्कुल ठोस, और फिर हैरान होती हूँ पंजाबी बोलने वाले की उर्दू इतनी अच्छी होती है। मैंने पहली मतलब आपका ना मतलब इस तरह से आपका जो है ना शो में सुन रही हूँ और मुझे बिलीव नहीं होता, मैं कहा ये वाकई वही भाई है ना।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: और माशाल्लाह आपकी जो उर्दू है, जो आप जिस लज्जत से शायरी पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा अंदाज है आपका।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
1: और जो आपका थोड़ा सा गला खराब है तो मैं यही दुआ करूंगी अल्लाह पाक से कि आपका जल्दी से गला ठीक हो जाए और आप थोड़ा सा भाई एहतियात किया करें।
0: बिल्कुल, ये ठंडा ठंडा ठंडा पानी शुरू हो गया ना, ये गड़बड़ कर देता है ठंडा पानी।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मौसम में ना खट्टी चीजें खाने की वजह से ना गला पकड़ा भी जाता है।
0: बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा एहतियात करूं। थैंक यू रिमशा, क्या कुछ है आपके पास?
1: मेरे पास एक छोटा सा शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं लिखती रहती हूँ। लेकिन ना आप ये जो मेरी डायरी है ना वो मेरे बैग के अंदर है, सारे सुते हुए हैं ना, बैग की जलाइए।
0: अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।
1: तो मैं एक शेर ना हर वक्त पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि तू मंगे ते जान भी हाजिर, तू मंगे ते जान भी हाजिर, मैं करना इनकार ते नहीं ना।
0: बहुत अच्छे।
1: तू मंगे ते जान भी हाजिर, मैं करना इनकार ते नहीं ना। सारी दुनिया मिल भी जावे,
0: सारी दुनिया मिल भी जावे
1: प्यार ते ना, तेरे यानी सारी दुनिया मिल भी जावे तेरे वर्गा यार ते नहीं ना।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, तेरे वर्गा यार ते नहीं ना।
1: बिल्कुल, और ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खूबसूरत आपने पोएट्री सुनाई पंजाबी में।
1: बिल्कुल, आप भी पंजाबी बहुत ही प्यारा मतलब बोलते हैं, लेकिन मैं भाई एक आपसे गुजारिश करूंगी लेकिन कि प्लीज आप ना एक से तीन बजे जो आपका शो है ना वो प्लीज आप करें, बहुत लोग आपको मिस करते हैं। और मैं तो कहती हूँ मैंने कहा शायद आपकी जो शो की टाइमिंग है ना वो चेंज हो गई है।
0: नहीं नहीं नहीं, अभी अभी तक तो वही है, देखती है इंशाल्लाह, इस दफा कोशिश करेंगे कि जरूर करें आपके साथ।
1: मैंने कहा मेरे पंजाबी वाले भाई गुम हो गए ने।
0: जी जी, पंजाबी के करेंगे इंशाल्लाह।
1: ओके भाई, और सभी सुनने वाली समातों को सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल पिक की,
0: बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, रिमशा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। रिमशा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आज के प्रोग्राम का जो फॉर्मेट पे आपने बात नहीं की मगर आपने पोएट्री हमें सुना दी, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वाले जब आए तो साथ शायरी भी लेके आए। कुछ लोगों की गुफ्तगु ही शायराना होती है, वो शायरी ना भी लेके आए ना वो इतनी मजे की गुफ्तगु करते हैं कि वो लगता है कि शायरी फरमा रहे हैं। देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी फरीद जी, वेलकम, शुक्र है लगा ठीक हो।
2: दिनों के बाद आपसे बात हुई है।
0: जी जी, काफी दिनों बाद बात हो रही है। कहिए।
2: मार का हक जो है ना
0: जी,
2: पाकिस्तान की ईद पाकिस्तान की
0: जी,
2: उसके लिए बहुत सारा सलूट हमारी तरफ से।
0: बिल्कुल,
2: हमारी खातिर ना ये इतने बड़े ना कदम उठाया उन्होंने, उनके छह राइफल जो तबाह किए।
0: जी जी,
2: तो इनको ना जैसे लड़ाई नहीं है उसमें दाने भूनते हैं ना वैसे भून के ना रख दिया।
0: सही बात है, सही बात है। जो जो भी बुरी नजर पाकिस्तान की तरफ उठेगी हम उसको, हमारी पाक फौज उसको पाश पाश कर देगी, तोड़ के रख देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी हमेशा हमेशा।
2: तो प्यार मोहब्बत और अमन की पग बांध दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का कितना बड़ा बुलंद होगा इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह
2: खुशियाँ मिलेंगी हमारे पाकिस्तान को।
0: क्या खूबसूरत बात है कि आपने इस वक्त माशाल्लाह से आप जाग रही हैं और प्रोग्राम को सुन रही हैं, इतनी खूबसूरत बात है, अपने वतन के लिए कर रही है, अपनी पाक फौज के लिए कर रही है, जीती रही है।
2: तो बाकी महफूज जिंदगी मिले पाक फौज को, हमारी दुआ इनके साथ है। तो अनिला जी आएंगी, छोटे तारक आएंगे, तो वो बेबी सेलिया वाली के लिए बहुत सारी दुआएं, बोधी जद भी सलाम भेजते हैं।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: बहुत सारी दुआएं,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, क्या हकीकी रिश्तों में भी मुफाद परस्ती हो सकती है, क्या कहते हैं आप? 04 2 111 000 101 हमारा टेलीफोन नंबर, पाकिस्तान से बाहर से करेंगे तो 0092 मिलाइएगा, उसके बाद 42 मिलाइएगा, फिर 111 यानी 111 000 101 मिलाइएगा, आपकी कॉल हम तक पहुंच जाएगी। हेलो,
3: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, कौन बोल रहे हैं? आतिफ अब्बासी। कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, ठीक हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े अरसे बाद रहा हूं, मैं कुछ शहर से बात कर रहा हूं, मैं रेडियो सुनाई।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे सर?
3: बड़े अरसे के बाद सुना है, व्या भाई को सुना और आपको
0: सुना।
3: माशाल्लाह, वैसे का वैसा अच्छी का अच्छा प्रोग्राम है आपका, माशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बताइए कि क्या हकीकी रिश्तों में भी मुफाद परस्ती मौजूद होती है कि नहीं?
3: जवाब मेरा ख्याल क्या तो है, तो भी होती है, मेरे ख्याल में तो होती है, जहां तक मैंने देखा।
0: मतलब वो बेलॉस वाला सीन खत्म हो चुका है?
3: खत्म हो चुका है, पहले शायद होता होगा, लेकिन आप भी शायद होता होगा, लेकिन यहाँ तक देखा।
0: मतलब ज्यादा जो है वो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो अगर देखें तो उसमें मुफाद परस्ती नजर आती है।
3: आती है, बिल्कुल आती है।
0: क्यों, क्या हो गया, ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई कि आप हकीकी रिश्तों में भी बहन भाई, आपस में सगे बहन भाई, खूनी रिश्ता, उसके अंदर भी मुफाद परस्तियां, उसके अंदर भी ये सारी चीजें, क्यों?
3: वक्त में कुछ मसला है या हमने कोई मसला है, लेकिन है कुछ ना कुछ जरूर है
0: ना, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कहीं कहीं पे हम मुफाद परस्त हो जाते हैं, कहीं पे कोई हमारे साथ मुफाद परस्त हो जाते हैं,
3: बिल्कुल
0: है ना। चले चले, बहुत शुक्रिया, कुछ और कहेंगे? जी जी जी, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जी
3: कितने बेदर्द हैं, सर सर को सबा कहते हैं, कैसे जालिम हैं, जुल्मत को जिया कहते हैं,
0: सही,
3: जबर को मेरे गुनाहों की सजा कहते हैं, मेरी मजबूरी को तस्लीम और रिजा कहते हैं, गम नहीं कर लबे इजहार पे पाबंदी है,
0: वाह,
3: खामोशी को भी तो एक तर्ज नवा कहते हैं,
0: वाह,
3: पुश्तगाने सितम जोर को भी देख तो लें, अरे दानिश के जफाओं को वफा कहते हैं,
0: बहुत बढ़िया।
3: कल भी हक बात कहनी थी सरदार कही, आज भी पेशे बुता नाम खुदा कहते हैं, यो तो महफिल से तेरी उठ गए सब दिल वाले, एक दीवाना था वो भी न रहा कहते हैं,
0: वो भी न रहा,
3: ये मसीहाई भी, ये मसीहाई भी क्या खूब मसीहाई है, चारागर मौत को तकमील शिफा कहते हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आतिफ अब्बासी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
3: बहुत शुक्रिया जी,
0: बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मोरमुन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, प्रोग्राम में गुंजे शौक और आवाज़ आपकी समात तक पहुंच रही है, आपके अपने मेज़बान वसीम अहमद की। ये मेरे दर्द की दौलत मेरी मताए फिराक, ये मेरे दर्द की दौलत मेरी मताए फिराक, इन आंसुओं की वजाहत मैं उम्र भर न करूं। वो एक पल को कहीं दिखाई तो दे मोहसिन, वो एक पल को कहीं दिखाई तो दे मोहसिन, मैं जान गवा के भी उस पल को मुख्तसिर ना करूं, मैं जान गवा के भी उस पल को मुख्तसिर ना करूं। 111-0101 is the number to dial. Next caller, assalamu alaikum.
4: वालेकुम सलाम वसीम भाई, कैसे हैं?
0: शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। कौन
4: जी? मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन से।
0: जी मलक साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मंडी बाउद्दीन का क्या हाल है?
4: अल्लाह का शुक्र है, बस ईद की तैयारियाँ मंडी बाउद्दीन में बहुत ज्यादा धूमधाम से चल रही है। तो यार मैं तो आपको तलाश कर रहा था, आज किसी लाहौर के मुझे कॉलर ने बताया कि आज वो रात आपको 3 बजे मिलेंगे।
0: बड़ी मेहरबानी, आप जाग रहे हैं मेरे लिए, थैंक यू।
4: मैं बस आपके लिए जाग रहा था, तो पंजाबी का शेर अर्ज करूंगा। तो टॉपिक पे ये भाई बात करूंगा कि हर कोई बंदा वो ही बात करेगा जो उसके साथ बीती हो।
0: अच्छा।
4: तो मैं ये बात बताऊंगा कि बहन भाइयों से बढ़कर आजकल जो एहसास के रिश्ते होते हैं ना, वो ज्यादा बंदे की कदर करते हैं। क्योंकि बहन भाई कहते हैं अगर बंदा बीमार हो जाए तो वो कहते हैं छोड़ो यार, ये पता नहीं कब ठीक होगा। जो एहसास वाले होते हैं ना, वो कहते हैं यार इनके बस की बात तो नहीं ना।
0: नहीं, हम ये बात कर नहीं रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो हकीकी रिश्ते हैं उसके अंदर भी मुफाद परस्ती है, कोई मतलब आ जाता है उसके अंदर।
4: तो आजकल काफी जो है ना मिल रहा है ना देखने को।
0: अच्छा।
4: दुआ ही कर सकते हैं कि यार खूनी रिश्तों में तो ऐसी बात नहीं ना होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि वो भाई बहुत ना इंसान को टूट के रख देते हैं जब कोई खूनी रिश्ता ऐसे करता है ना। तो शेर पंजाबी का सुनाऊंगा क्योंकि साल लंबी हो जाएगी
0: जी।
4: वो कहते हैं क्या पूछ सकता कादर साईं, क्या पूछ सकता कादर साईं, क्या यार दा प्यार गुनाह है, इश्क मोहब्बत जुर्म आई ता होई कहत होई बतदाए, वत क्यों खसिए वत क्यों खसिए, मेरा दिल भर जाने केड़े जुर्म दिए सजा है, मैं कोई यार दे सदके यार मिला चा तेरा कर सै शुक्र अदा,
0: ना तेरा कर सै शुक्र अदा। वाह वाह वाह, क्या बात।
4: सुनने वालों का सलाम जहां तक आवाज जा रही है और आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अच्छा लगा यार इतने दिनों के बाद आपको सुनकर।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, प्रेम जब आप आए तो ये देख लें, चाहे पंजाबी के पोइट्री आ रही है, चाहे बातें हो रही है, मगर आपकी तरफ से जो शायरी है वो हम तक पहुंच रही है, आपका बहुत शुक्रिया। दियारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, कुछ लोग हमारे दिल में, हमारे उदासी में, हमारी अंधेरी रात में चिराग बन गया आते हैं और चिराग बन के रोशनी फैला जाती है। दियारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया, वो दोस्ती तो खैर अब नसीबे दुश्मना हुई, वो दोस्ती तो खैर अब नसीबे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया, वो छोटी छोटी रंजिश, बहुत लुत्फ आता है छोटी छोटी रंजिशों का, छोटी छोटी बात पे नाराज होना, मुस्कुरा देना, मान जाना, जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया, पुकारती हैं फुर्सतें कहां गई वो सोहबतें, जमीन निकल गई उन्हें कि आसमान खा गया, ये सुबह की सफेदियां ये दोपहर की जर्दियां, अब आईने में देखता हूं मैं कहां चला गया, ये किस खुशी की रीत पर गमों की नींद आ गई, वो लहर किस तरफ गई ये मैं कहां समा गया, ये किस खुशी की रेत पर गमों को नींद आ गई, वो लहर किस तरफ गई ये मैं कहां समा गया, गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, अलम कशो उठो कि आफताब सर पे आ गया, दियारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। 111-000-101 अस्सलाम वालेकुम
5: जी। हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम
5: जी। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, कैसे हैं?
0: जी जी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ।
5: लाहौर से मेजर उमर बात कर रहा हूँ।
0: जी मेजर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं,
5: अल्लाह का बड़ा एहसान। मैंने आज आपका जो प्रोग्राम है, आई एम लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम।
0: अच्छा,
5: और बड़ा अच्छा लगा, और जो आपका क्वेश्चन था उसके बारे में मैं कुछ जवाब देना चाहता था।
0: जी जरूर जरूर
5: जी जी। एक्चुअली रिश्ते तो खैर सारे ही एहसास के होते हैं, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से जो बेसिक चीज है रिश्तों के बारे में वो घर का माहौल होता है
0: जी।
5: आपकी बेसिक ग्रूमिंग हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट के रिश्ते आगे फर्दर लाइफ में कैसे निभाए जाते हैं, वो सब बेस करते हैं बेसिकली घर के माहौल पे, पेरेंट्स ने तरबियत कैसी की है।
0: बिल्कुल ठीक, आपकी लाइफ पे डिपेंड ही करती है कि आपके पेरेंट्स ने किस तरह से ग्रूमिंग की है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक,
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं मतलब है कुछ चीजें आप और आपसे कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी के लिए
0: जी जी कहता
5: हूं कि आप लोग जरूर, जो लोग सुन रहे हैं जरूर दुआ वगैरह किया करें।
0: आपने प्रोग्राम का स्टार्ट में सुना था, हमने मर के हक के हवाले से गुफ्तगू की थी और बड़ा मतलब सैर हासिल गुफ्तगू की थी, बड़ा उसके बड़ा लुत्फ आया था मुझे वो बातें करने में भी, बयान करने में भी, कि किस तरह पाक फौज ने अपने वतन की, अपने हम वतनों की हिफाजत की, किस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत सारी दुआएं, सारा वतन, हर पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, वो पाक फौज के लिए, अपने वतन के लिए दिल से दुआ करता है।
5: बिल्कुल, तो मतलब हम देखते हैं आजकल रोज खबर आती है कि जी फलां जगह पे इतने सोल्जर्स, इतने ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं
0: जी।
5: तो वो भी किन्हीं कुछ माओ के ही बच्चे हैं बेचारे, किसी को शौक तो नहीं होता मरने का। तो
0: उसमें ये कि वो शहादत का जज्बा जो है ना, वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसको आप लोग उसको सबसे पहले आप जो है ना उसको देखते हैं। हमारे जो फौजी भाई हैं वो सबसे पहले शहादत को वो देखते हैं कि जी अगर हमें मिलेगी तो हम तो खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाएंगे।
5: बिल्कुल, वो इस मुल्क की मोहब्बत में होता है ना सारा।
0: बेशक,
5: कुछ
0: बेशक बेशक।
5: तो बस इस मोहब्बत को अल्लाह ताला बरकरार रखे। मुल्क है तो हम सब हैं, और हम सब हैं तो मुल्क है, मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं।
0: बिल्कुल ठीक।
5: तो आपका प्रोग्राम सुन के मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और मेरा भी दिल चाह के आई शुड चिप इन समथिंग फ्रॉम माई सेल्फ।
0: जी जरूर।
5: और जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको सलाम है। और
0: आप ऐसा करें ना, आप मुझे कोई शेर तो सुना के जाए ना। आप हमारे फॉर्मेट के ऊपर भी
5: हैं। मैं आपको जरूर शेर सुनाऊं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट मच इनटू पोइट्री। और लेकिन ये है कि मैं लोगों की जो शेर लोग सुना रहे हैं
0: सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, है ना?
5: जी जी, मैं उनमें सुनने में जरूर इंटरेस्टेड हूँ। और इसी और साथ ये भी उन सबको कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे बॉर्डर्स पे सर्व कर रहे हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो एफसी के हैं, उन सब के लिए दुआएं करें। और दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए और सेफ्टी के लिए। डेफिनेटली,
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। दुआओं से ही तकदीर बदल जाती है, दुआओं से तो सब कुछ बदल जाता है। बस सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए, है ना?
5: जी बिल्कुल ठीक है। तो वसीम भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे पास नंबर नहीं था, आई फाउंड इट ऑन इंटरनेट।
0: बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत की और माशाल्लाह से आप इतने फ्रेश लग रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। लग ही नहीं रहा कि रात के 3 बजे हुए हैं।
5: सर देखिए, हम भी इस वक्त कहीं ना कहीं पे ड्यूटी पे बैठे हैं।
0: जबरदस्त,
5: उसमें अगर आप फ्रेश नहीं रहेंगे तो यू कैन नॉट वर्क वेल।
0: बिल्कुल ठीक है, आपके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस। जीते रहिए, आबाद रहिए और हमारी हमारी हिफाजत करते रहे, आमीन।
5: थैंक यू सो मच।
0: अल्लाह हाफिज़।
5: बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा किसी
0: जरूर, इंशाल्लाह।
5: और कोशिश करूंगा कि कोई अच्छे सारे शेर याद करके आऊं, ताकि आपके जितने सुनने वाले हैं उनको अच्छा लगे।
0: हाँ, आपने शेर याद करके आने हैं, शेर फाड़ना ले आना, साढ़े देना छड़ देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
5: अल्लाह
0: ओके जी। मेजर साहब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, बहुत शुक्रिया आपका और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंतजार की लज्जत, न आरजू की थकन, نہ انتظار کی لذت نہ آرزو کی تھکن، بجھی ہے درد کی شمعیں کہ سو گیا ہے بدن، سلگ رہی ہے نہ جانے کس آنچ سے آنکھیں، سلگ رہی ہے نہ جانے کس آنچ سے آنکھیں، نہ آنسو کی طلب ہے نہ رجگوں کی جلن، غریب شہر کسی سایہ شجر میں نہ بیٹھ، غریب شہر کسی سایہ شجر میں نہ بیٹھ کہ اپنی چھاؤں میں خود جل رہے ہیں سرو و سمن، بہار قرب سے پہلے اجاڑ دیتی ہیں جدائیوں کی ہوائیں محبتوں کے چمن، پھر آج شب تیرے قدموں کی چاپ کے ہمراہ، پھر آج شب تیرے قدموں کی چاپ کے ہمراہ سنائی دی ہے دل نامراد کی دھڑکن، یہ ظلم دیکھ کے تو جانے شاعری ہے مگر میری غزل میں تیرا نام بھی ہے جرم سخن، یہ ظلم دیکھ کے تو جانے شاعری ہے مگر میری غزل میں تیرا نام بھی ہے جرم سخن، ہوائے دہر سے دل کا چراغ کیا بجھتا مگر فراز سلامت ہے یار کا دامن، نہ انتظار کی لذت نہ آرزو کی تھکن، بجھی ہے درد کی شمعیں کہ سو گیا ہے بدن۔ احمد فراز کا کلام آپ کے لیے پیش کیا، ٹیلی فون نمبر 111-000-101، شروع میں لاہور کا ایریا کوڈ 042 ضرور ملائیے گا۔ السلام علیکم۔
6: وعلیکم السلام۔
0: حمید گل صاحب ویلکم، ویلکم، کہیے کیسے ہیں؟
6: الحمدللہ آپ سنائیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے؟
0: جی شکر اللہ کا ٹھیک ہوں۔
6: اچھا میں بیچ میں سو بھی گیا تھا، دیکھ۔
0: اچھا ٹھیک ہے، بڑی مست طرح سے نا ریڈیو سنتے سنتے، میں بھی اکثر گانے لگا لیتا ہوں ریڈیو پہ نا، تو ان کو سنتے سنتے سو ہی جاتا ہوں۔
6: میں میری بات ہوئی آر جے ڈاؤس کے پروگرام میں، نے جب اس میں بات کی تو میں سو گیا بیچ میں۔
0: اچھا
6: پھر وہ میری تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔
0: اچھا حمید گل صاحب، کچھ کچھ لوگ بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں، شکر ہے آپ بات کرتے کرتے نہیں سو گئے۔ کچھ لوگ،
6: جی میرا ایک دوست تھا فوت ہو گیا، پھر وہ میری تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔
0: اچھا حمید گل صاحب، کچھ کچھ لوگ بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں، شکر ہے آپ بات کرتے کرتے نہیں سو گئے۔

0: के होते हैं, फोन करते करते ना दरमियान में खराटे जा रहे होते हैं, यार हेलो और तुम सो गए हो, मैं बातें कर रहा हूँ, तो उसके खराटे जा रहे होते हैं, यार ये तो सो गया बातें करते करते।
1: वो कहते हैं ना खड़े खड़े सो जाना या बैठे बैठे सो जाना, ये हमने देखा है।
0: सही बात, सही बात।
1: वो आपके टॉपिक में जो आपने बात की, मुख्तसर सी बात करके गजब सुनाते हैं
0: जी।
1: मैं समझता हूँ जब से ये शेवर आया ना, खा खा के लोग जो है ना रिश्तों में बड़ी वो हो गई है,
0: दूरियां हो गई
1: हैं। दूरियां हो गई हैं
0: मतलब परस्ती हो गई है, मतलब परस्ती।
1: मैं नहीं खाता शेवर।
0: अच्छा।
1: मैं मतलब मुझे नहीं पसंद।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: मैं कहता हूँ ये ऐसी नस्ल है कि जो खुद उठ नहीं सकती, इधर से उधर एक दो कदम चल नहीं सकती है। जिसे हम खा खा के ना सारे जहन शेवर हो गए हैं।
0: ऐसे ही है, ऐसे ही है।
1: मैं आपको तहजीब हाफी की गजल सुनाता हूँ
0: जी। जरूर इरशाद।
1: तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया।
0: वाह, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया।
1: इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। और यू नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया,
0: बैठ गया। वाह।
1: और इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा,
0: क्या बात है, क्या मिसरा है, क्या बात है, क्या बात। इतना
1: मीठा
0: था वो गुस्से भरा लहजा, ना पूछ। वाह वाह वाह।
1: मत पूछ। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। उसने जिसको भी जाने को कहा बैठ गया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: उसने जिसको भी जाने को कहा
0: बैठ गया,
1: बैठ गया। और अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं। क्या खूबसूरत शेर है ये भी, कि अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं।
0: वाह वाह।
1: चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: और उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया।
0: हाँ हाँ हाँ। इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। वाह।
1: और बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ। बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया।
0: आहा, आहा, आहा।
1: और आखिरी शेर है गजल का, के आपकी नजन कर रहा हूँ तमाम समातों की, कि बज़्मे जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस।
0: वाह। बज़्मे जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस,
1: जो भी एक बार जहाँ बैठ गया
0: वहाँ बैठ गया। आहा, आहा, आहा, क्या बात है, क्या बात है। जो भी
1: एक बार जहाँ बैठ गया, बैठ गया,
0: बैठ गया। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या।
1: वो बैठने पे मुझे मैशर अफरीदी के कथा याद आया, मैं वो भी आपको सुना।
0: जी जरूर जरूर।
1: वो उनके शायरी का प्रोग्राम है कि मैशर अफरीदी ने कहा था कि जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे।
0: वाह वाह। जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे,
1: जहाँ मकाम हमारा तो हम वहीं बैठे। और अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठ।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: सर खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इस मुल्क के लिए, अल्लाह सब कुछ आदो आबाद रखें।
0: आमीन।
1: मैं एक बार सोच रहा था वसीम भाई
0: जी, जी
1: 3:32-33 फजर दाखिल हो जाती है
0: जी जी।
1: मेरी एक रिक्वेस्ट थी तमाम FM की जो आपका इदारा है, उसमें जो जो आप देखेंगे ना तो फजर का टाइम करीब होता चला जाएगा,
0: होता जाएगा।
1: सब फजर की अजाने हो जाती हैं, हमें मतलब उस वक्त इस प्रोग्राम को इस टाइम में ना, इसका थोड़ा सा ना ड्यूरेशन को कम से कम इन दिनों में ना थोड़ा सा, क्योंकि फजर दाखिल हो जाती
0: हाँ,
1: है।
0: देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा इसके टाइम।
1: ये हमारी, मैं चूंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल ठीक।
1: हाँ
0: बिल्कुल ठीक
1: में रहते हैं, तो ये आवाज पहले भी एक दफा उठाई गई थी, लेकिन उस पर एक आदमी ने इसको काम करना छोड़ दिया था 1:01। मतलब ये है कि मतलब उस टाइम में फिर हम क्या
0: मैं

0: आपकी बात को फॉलो कर गया, समझ रहा हूँ मैं बिल्कुल। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ जी, मैं नोटिस में लाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। हमीद गुल साहब खूबसूरत पोइट्री से हमें नवाज के गए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मगर जो मेरी रिक्वेस्ट थी ना कि आप फेसबुक पे ज़रूर आया कीजिए, वहाँ भी मुझे कुछ ना हमेशा की तरह कुछ कमी सी महसूस हो रही है। मैं देखता हूँ कि जनाब आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और जी हमारे प्रोग्राम में रोज़ी रिजवाना साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय पीरज़ादा ग़ुलाम रोज़ी रिजवाना जी, वालेकुम अस्सलाम। और पीरज़ादा ग़ुलाम मुश्तबा शाह बाराको इस्लामाबाद से, मत समझना फजूल होते हैं, अपने अपने असूल होते हैं। हिजर का दर्द मैंने झीला है, आप क्यों कर मलूल होते हैं। प्यार में ऐब एक दूजे के, सिद के दिल से कबूल होते हैं। शाम ढलते ही हमसे लोगों पर वहशतों के नजूल होते हैं। उसको तोहफा पसंद आए तो मेरे पैसे वसूल होते हैं। जो गुजरते हैं साल फुरकत में, चंद लम्हों की भूल होते हैं। प्यार खिलास के बगैर मुश्तबा सब तल्लुक फजूल होते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्तबा जी, माशबी हमारी रेगुलर सुनने वाली हैं और माशाल्लाह से हर प्रोग्राम में इनकी मैसेज हम तक पहुंचते हैं। और कहते हैं वसीम, हकीकी रिश्तों में मुफाद आना तो नहीं चाहिए, लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि दुनिया में ऐसा हो रहा है। बाकी अल्लाह हमें हक और सच पे कायम रखें। और जो अल्लाह ने ये हकीकी रिश्ते दिए हैं, इनके दरमियान मोहब्बत और खुलूस कायम रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया माजबी, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम वसीम, वो जिसे ज़ख्म लगाकर हमें तस्कीन मिली, वो जिसे ज़ख्म लगाकर हमें तस्कीन मिली, हमको महबूब वही शख्स रहा। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छे। वो जिसे ज़ख्म लगाकर हमें तस्कीन मिली, हमको महबूब वही शख्स रहा। एक दुनिया की तलब हम थे मगर हमको सदा हाय मतलूब वही शख्स रहा। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आगे लिखती हैं कि नए सिरे से मोहब्बत की आरजू थी, मगर नए सिरे से मोहब्बत नहीं हुई मुझसे। मैं जिम्मेदार हूँ तेरी उदास आंखों का, मैं जिम्मेदार हूँ तेरी उदास आंखों का। मैं मानता हूँ हिफाजत नहीं हुई मुझसे, मैं मानता हूँ हिफाजत नहीं हुई मुझसे। बहुत खूब। मलिक मोहम्मद आदिल ने प्रोग्राम को लाइक किया है, माजबी ने लाइक किया है, रोज़ी रिजवाना ने प्रोग्राम को लाइक किया है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट जरूर किया कीजिए, आपकी कमेंट से प्रोग्राम जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। और ऐसे लगता है कि जैसे आप सब लोग मेरे बिल्कुल पास बैठे हैं। SMS हम तक पहुंचा है जनाब अली का, पाक आर्मी सियालकोट बॉर्डर से, कैसे हैं सर जी? शुक्र अल्लाह ठीक हूँ। और कहते हैं कि फौजी जवान की वर्दी सिर्फ वर्दी नहीं, कफन समझ के पहनते हैं, और इस पाक वतन की तरफ बुरी नज़र से देखने वाली हर आंख नोश लेंगे इंशाल्लाह। पाक आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद। और रही बात मुफाद परस्ती की, तो जहां मुफाद परस्ती है आ जाए तो वो रिश्ते नहीं दिखती, रिश्ते नहीं दिखते। ओके, हाँ बहुत शुक्रिया अली आपका, पाक आर्मी से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, सियालकोट बॉर्डर से आपने हमें मैसेज किया है, SMS किया, आपके SMS का शुक्रिया। और हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हमारी दुआएं अपनी पाक फौज के साथ हमेशा मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ मौजूद हैं जो हमारी आप इस वक्त भी सरहद पे मौजूद हैं, हिफाजत कर रहे हैं। सारी जो पाकिस्तानी आर्मी है, हम फिजाओं में, हवाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों पे, सख्त मौसम में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ़ में, हर जगह पे हमेशा 24 घंटे हमारी हिफाजत करती है। हमारी दिली दुआएं उनके साथ हैं, हमारा हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार उन पे निछावर है। आपका बहुत शुक्रिया अली भाई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। 04221100101 इज़ द नंबर टू डायल। इस नंबर को डायल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, लाहौर से रोजी बात कर रही हूँ।
0: जी रोजी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं।
1: जी वसीम भाई, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस वो आपका प्रोग्राम सुनने में जरा महक थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कॉल अटेंड हो गई है।
0: जी
1: तो ये है कि माशाल्लाह जैसे मार्क का हक बनियानुल मरसूस यानी सिसा अप्लाई दीवार की आप बात कर रहे थे कि हम उसके जो हम पिछले साल हमारे फौजी भाइयों ने जिस तरह से काम किया और फखर से सर बुलंद हुआ पाकिस्तान का और हर पाकिस्तानी का, तो सब फौजी भाइयों का सलाम मेरी तरफ से और अपने वतन के लिए एक चंद शेर दो एक शेर कहना चाहती हूँ।
0: जी
1: ए मेरे वतन तेरी फिजा कितनी भरी है, ए मेरे वतन तेरी फिजा कितनी भरी है, जन्नत से भी प्यारी तेरी एक एक गली है। क्या इसको डराएगा ये सफाक जमाना, क्या इसको डराएगा ये सफाक जमाना, वो कौम जो तलवारों के साए में पली है।
0: वाह जी वाह, वाह वाह, क्या
1: बात। और लिख सकती नहीं तेरे दरो बाम की रौनक, तामीर तेरी नूर के सांचे में ढली है।
0: वाह
1: जी,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपने जिस तरह से जोश और जज्बे से पढ़ा है, मुझे अपने स्कूल की असेंबली याद आ गई है।
1: एकदम वो अब मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो टाइम याद आ जाता है और जी करता है कि उस तरह से,
0: हाँ उस तरह से साथ हम परफॉर्म भी करते थे, तो साथ साथ ही इस तरह से जोश और जज्बे के साथ हम शेर भी पढ़ते थे इसी तरह से जोर जोर से।
1: ऐसा भी है और भी वो कुछ अपने आप ही
0: वो हो जाता है, वो कुदरती तौर पे हो जाता है, वो उसके अल्फाज जो है ना वो हमारे हमारी बॉडी पे हमारे दिमाग पे असर कर डालते हैं, तो वो बिल्कुल वो नेचुरल वे में हो रहा होता है, वो जोश और जज्बा नेचुरल होता है, हमारे दिल से निकल रहा होता है।
1: जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो जो अपने वतन से जुड़े हैं उनके साथ ये
0: बेशक बेशक बेशक ऐसे ही है।
1: और ये कि हकीकी रिश्ते तो सिर्फ सबसे ज्यादा तो सिर्फ माँ और बाप तक ही महदूद होकर रह गए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अब वो रिश्तों में सच्चाई पन मुखलिसपन और वो सच्चाई वो बात आज रही नहीं, मतलब बहन भाई भी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं, मतलब बहन भाइयों में भी नहीं रही इतनी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आज का दौर बहुत मतलबी सा हो गया है, बहुत इनके पहले एक लिहाज होता था ना, जो वो लिहाज अब नहीं रहा।
0: अच्छा मजे की बात यह कि ज्यादातर जो हम लोग मिलते हैं ना, हम अपने रिश्तेदारों से ही मिलते हैं, अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, अपने अजीजों का जो क्लोज है उनसे ज्यादा मेल जोल बढ़ता है ना, ज्यादा ताल्लुक होता है, तो उसी उसी के अंदर ही ये दराड़े नजर आनी शुरू हो गई हैं, बजाय इसके कि किसी बाहर के बंदे के साथ कोई ताल्लुक हो तो वहां पे समझ आती है कोई दराड़ आ गई है, कोई उसमें कोई मुफाद परस्ती उसकी आ गई या हमारी आ गई, हम भी इंसान है, मगर ये कि ये चीजें हमें अपने खूनी रिश्तों में हमारे जो हकीकी रिश्ते हैं उनमें दिखाई देना शुरू हो गई है।
1: ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम इनसे ही मिलते हैं और इन्हीं से छोटी छोटी बातों में आपस में हसद और दिल में मतलब चीजें पैदा कर लेते हैं। वो क्या है ना, मतलब जैसे अभी हसद के हवाले से बात हो रही थी ना, डॉक्स आज ये डॉक्स हसद कर रहे थे बात, कि हसद जो है वो मतलब कहीं कहीं पैदा मतलब मौजूद तो है लेकिन फायदा मंद भी है, वो तो ये बात कह रहे थे ना कि फायदा भी पहुंचाता है, आपको लगता है कि कहीं फायदा पहुंचाता है, तो वो ये होता है कि जब हम हसद को इस वे में लेते हैं कि जिसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव वे में कि अच्छा इसने ये इतना अच्छा फर्स्ट पोजीशन लिया तो मैं भी,
0: मतलब हम रश्क की बात करेंगे, हम हसद की बात नहीं करेंगे, हम रश्क करेंगे कि हमें रश करना चाहिए कि अगर ये पहली पोजीशन पे है तो मुझे भी वाह भी वाह क्या बात है, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए मैं पहली पोजीशन पे आ जाऊं, मैं भी आऊं,
1: ये रश की बात है। और हसद जो होता है ना वहाँ पे, हम ये रिश्तों में जैसे प्यार और मोहब्बत खलूस की बात अब करें, वहाँ जब हसद आ जाता है ना हसद में होता है कि हम दूसरे की ना बुराई करते हैं, हम उसके लिए दिल में थोड़ा सा मतलब बुरा सोचने लग जाते हैं।
0: अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो डायरेक्ट ही कहते थे ऐ बंदा सही नहीं है, कहते ना दोस्ती छोड़ दे। वो उसके पास अल्फाज नहीं होते, वो इतना जेलस हो चुका होता है अंदर से कि वो जा कहता है यार वो बंदा सही नहीं है तुम उसके साथ दोस्ती छोड़ दो, वो बंदे शक्ल देखने लग जाते हैं कि तुझे क्या तकलीफ है, अभी वो सही है कि नहीं है, मेरी दोस्ती है मैं जानू वो जाने, तू तो प्यार में क्यों आते, नहीं नहीं तू उसको छोड़ दे यार, उसको छोड़ दे।
1: मतलब लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं जब और कुछ कर नहीं पाते तो वो यूं जुबान से भी कहने लग जाते हैं ना। ये जो बात है एक ये बड़ी एक मतलब नई चीज एक देखने को मिल रही है, वो क्या ना मतलब वो किसी शायर ने कहा था, पहले तो एक बात ये कहूंगी कि अना पर चोट पड़े तो कौन देखता है, फिर सभी मतलब आगे से टूट पड़ते हैं, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चुप रहना कोई गलत नहीं है, चुप रहना कोई गलत नहीं है, खामोशी मसले दा हल ते नहीं है, तो कोई ना कोई हल तो ढूंढना होता है ना। वो प्रवीण चक्र ने भी इसी तरह का एक कहा है ना कि अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं, अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं, रोज एक मौत नए तर्ज की इजाद करे है।
0: हाँ, नई तर्ज की इजाद करते हैं, बिल्कुल ठीक है।
1: हाँ, वो मतलब देखे ना अगर कहीं जेलसी पैदा होती है, और वो होती भी है, मतलब ये नहीं मैं कह सकूंगी कि होती नहीं है, मतलब हमें अक्सर एक दूसरे से होती है जेलसी, मगर उसे पॉजिटिविटी में तब्दील कर देना मतलब अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि उसको जब हम पॉजिटिविटी में और रश की हालत में लेके आते हैं तो हम उसमें खुद को बेहतर बनाते हैं, और मैं खुद को बेहतर बनाना पसंद करती हूँ। मतलब मुझे में ये चीज़ नहीं है कि मैं हसद है तो हसद ही रखूंगी उसे, नहीं मैं कहूंगी कि अल्लाह ने उसको दिया है दिल में, मैं उसको रश्क में चेंज करूंगी।
0: बिल्कुल ठीक है, रश्क करना चाहिए
1: रब ने जी, कि मुझे भी अल्लाह ऐसा दे,
0: बिल्कुल ठीक है,
1: ऐसा करे।
0: तो कुछ शायरी सुनाएंगी आप कुछ?
1: हाँ जरूर, ऐसा कैसे
0: सुनाइए जल्दी,
1: मैं और शायरी ना सुनूं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है
0: तो है,
1: तो है।
0: वाह,
1: सच को मैंने सच कहा, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है
0: तो है, है। बिल्कुल ठीक,
1: कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है
0: तो है, तो है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: दोस्त बनकर दुश्मनों सा बताता है वो मुझको, दोस्त बनकर दुश्मनों सा सताता है वो मुझको, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है।
0: बहुत अच्छे
1: सर, ये गौर कीजिएगा, ये वही हसद वाली बात आ जाती है, दोस्त बनकर दुश्मनों सा सताता है वो मुझको, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। तो आपके उस पर भी पूरा उतर रहा था, टॉपिक के मुताबिक भी थोड़ी सी बात हो रही थी ना
0: जी।
1: और मैं चाहूंगी कि अपनी नीला आपी आती हैं तो वो अगर एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी उनको सुन के थोड़ी कोशिश करूंगी, वो है ना पतंगबाज सजना से, अगर वो सुनाए तो क्या ही बात है।
0: अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
1: और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आपको सुन के हमेशा अच्छा लगता है, इसी तरह अच्छे से आते रहे, प्रोग्राम करते रहे, और वो एक बजे वाला जो शो है वो तो जरूर आप उसको स्टार्ट करें,
0: इंशाल्लाह
1: वो हम सबको पसंद है, और हम इनके सुनना पसंद करते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम कॉल करें मैसेज करें, भाई कभी होते हैं हम बिजी होते हैं तो हम रेडियो ऑन करके सुनते हैं।
0: सही बात है, सही बात है, वो ज्यादा मजा आ रहा होता है बिल्कुल
1: जी। हाँ, वैसे ये जरूर था कि मैं पिछले दिनों कराची थी और मैं प्रोग्राम नहीं सुन रही थी 2-3 माह से, पिछले हफ्ते ही मैं क्योंकि आई हूँ और मैंने आपका वो प्रोग्राम सुना और उसमें मैं शामिल हुई। इसके अलावा एक वो है हमारे भाई हैं, एक मतलब वो फेसबुक पे करते हैं प्रोग्राम, तो उसको सुनना हर जगह आसान है, इसलिए वो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं पिछले हफ्ते ही आई हूँ और अभी सुनना मैंने शुरू किया है, और कोशिश करूंगी कि शामिल।
0: आप हमारा ऐप अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल करें ना, दुनिया में जहाँ मर्जी बैठ के 101 FM लाहौर को सुन सकती हैं आप।
1: हाँ जरूर,
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज। ओके जी, खुश रहें भाई, अल्लाह
0: हाफिज। ओके जी, करे तर्क ज़मीं या जाएं जहां से, वही अंदाज उनके आसमां से, अगर चाहें तो वो दीवार पढ़ लें, हमें अब कुछ नहीं कहना जुबान से। सितारा ही नहीं जब साथ देता तो कश्ती काम ले क्या बादबां से। जरूरी हो गई अब दिल की जीनत, मकीन पहचानने जाते हैं मकान से। बसाते जीस्त पर अक्सर जमाना पलट लेता है अपने हक में पान से। वगरना फसले गुल की कद्र क्या थी, बड़ी हिकमत से वाबस्ता खिजा से। वगरना फसले गुल की कद्र क्या थी, बड़ी हिकमत है वाबस्ता खिजा से। किसी ने बात की थी हंस के शायद, जमाने भर से हम हैं, जमाने भर से हैं हम खुशगुमा से। कभी तन्हाई का डर रोकता था और अम मुश्किल हजूमे हम रुबा से। अलाव ही जलाने की शबे हैं, अलाव ही जबान जलाने की शबे हैं, मगर हटकर किसी के सायबान से। अलाव ही जलाने की शबे हैं, मगर हटकर किसी के सायबान से। सभी सौदे खसारे के नहीं थे, सभी सौदे खसारे के नहीं थे, मगर फुर्सत न थी कारे जहां से। मोहब्बत और वो भी गैर मशरूत, मोहब्बत और वो भी गैर मशरूत। बहुत मुश्किल है ऐसे मेहरबान से। निकाली भी गई थी सुइयां क्या, कोई तस्दीक करता किस्सा कहां से। एक एक तीर पे खुद ढाल बनती, अगर होता वो दुश्मन की कमान से। मैं एक तीर पर खुद ढाल बनती, अगर होता वो दुश्मन की कमान से। जो सब्जा देखकर खैमे लगाए, उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचे खिजा से। जो अपने पेड़ जलते छोड़ जाए, कहता है लगता है वो अपने पेड़ जलते छोड़ जाए। उन्हें क्या हक की रूठे बागबान से। जो अपने पेड़ जलते छोड़ जाए, उन्हें क्या हक की रूठे बागबान से। उम्र शहजाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, प्रोग्राम को सुन रही हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, कह रही हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत लुत्फ आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया उम्र शहजाद, आप हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम, कौन
2: जी? मेरी 101 पे कॉल मिल गई है
0: जी। आप ऑन एयर हैं, आपकी आवाज जा रही है पूरी दुनिया में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो कसम से कोशिश कर रहा था।
0: अच्छा,
2: मेरा नाम सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी।
0: वालेकुम सलाम, आपका क्या नाम है
2: जी? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ।
0: पिशावर से जी मोहम्मद अली, हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं लाहौर में अपने प्रोग्राम में। कि ये कैसी है, ठीक ठाक है?
2: बहुत तो शुक्रिया आपका, आपने जो कहा कि गहराइयों से आप मेरे मुझे वेलकम कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि मैं पहली बार मेरी कॉल लगी है।
0: अच्छा, वाह वाह वाह, तो ये मेरी जी जी बोलिए बोलिए
2: जी जी बोलिए।
0: मैंने कहा ये हमारी गुड लक है जनाब कि आपने पहली दफा कॉल की है 101 पे, मेरे प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली है। ये
2: मैं दरअसल FM 101 के प्रोग्राम सुनते रहता हूँ और टॉपिक भी मैं 101 के सुनते रहता हूँ। माशाल्लाह प्यारे टॉपिक्स होते हैं आपसे।
0: जी जी बहुत शुक्रिया।
2: उसमें भी टॉपिक बड़ा प्यारा था और आपने जो टॉपिक लिया ये भी बड़ा प्यारा टॉपिक है और मैं अक्सर सुनता हूँ 101।
0: जी जी बहुत शुक्रिया आपका।
2: मैं कोशिश करता हूँ और कसम से मुझे ये कॉल नहीं मिलती।
0: चले आज आपकी कॉल मिल गई। आज आप कुछ सुना रहे हैं, कुछ पोएट्री लेके आए हैं, कुछ शायरी वायरी सुनाएंगे?
2: पोएट्री तो खैर मुझे आती नहीं है, कभी की नहीं है। हाँ जो है मैं शुक्र अदा करता हूँ आपके, पाक फौज का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारे वतन की जो खिदमत कर रहे हैं और हम उनकी वजह से सुकून की नींद सो रहे हैं।
0: बेशक
2: हमारी हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नेवी है, हमारे एयरफोर्स है, इन जवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद है,
0: पाकिस्तान
2: हमेशा जिंदाबाद रहेगा।
0: انشاءاللہ,
2: کیونکہ پاکستان کا ایک نام ہے اس دنیا میں.
0: بے شک بے شک, اور بہت اونچا نام ہے, بہت بڑا نام ہے.
2: جی جی, اور رہے گا
0: انشاءاللہ
2: قیامت تک انشاءاللہ.
0: بہت شکریہ محمد علی. آپ یہ بتائیے کہ پشاور کا موسم کیسا ہے, بارش بارش ہوئی آج؟
2: نہیں سر, بارش نہیں.
0: اور سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں, آج لاہور میں میرے ایریا میں بارش, بلکہ سارے لاہور میں میرا خیال ہے کہ بارش ہوئی, اور بڑے زیادہ مزے کے تو نہیں کہوں گا میں, بہرحال بڑے زیادہ اولے بھی پڑے.
2: جی جی, آپ سے پہلے جو میں نے پروگرام سنے نا, اس میں انہوں نے بھی یہی کہا.
0: میں ڈر رہا تھا میں کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے اولے آ گئے کہ کہیں گاڑیوں کے شیشے نہ ٹوٹ جائے, مگر وہ بچت ہو گئی, ایسا نہیں ہوا کچھ, شکر اللہ کا. مگر یہ کہ موسم, ہاں
2: یہ اللہ کا شکر, انہوں نے تو یہ کہا کہ کہتے میں تو ایسے وہ ہو گیا تھا کہ میری گاڑی کہتے اڑا کے لے جائیں گے.
0: ایسے مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا, پھر میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یار یہ نا بس اب بچت ہو جائے, اب فضل ہو جائے اللہ کا.
2: کل ہماری بارش ہوئی تھی, پرسوں ہوئی تھی, اور بڑا پیارا موسم.
0: چلے محمد علی, جیتے رہیے, بہت شکریہ آپ نے کال کی, بڑا مزہ آپ سے بات کر کے.
2: اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے بات کی, اور مجھ جیسے ایسے انسان کو جیل لیا.
0: نہیں نہیں, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, ہمارے لیے بہت بہت بہت آپ کی اہمیت ہے, ہمارے لیے آپ بڑے, ہمارے پروگرام کی رونق ہیں, آپ کی وجہ سے ہم ہیں ورنہ نہیں ہیں, ہے نا.
2: بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. میں آپ لوگوں کو ہم سنتے رہتے ہیں,
0: بہت شکریہ,
2: آپ ہی لوگوں سے ہم سیکھتے رہتے.
0: اوہو, کال ڈراپ ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا محمد علی, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. تو وقت بتاتا چلوں, 3:42, تو جناب پتہ ہی نہیں چلا کس طرح سے جلدی جلدی ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے. اوکے جی, ورمن ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن, آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے, آپ کے اپنے میزبان وسیم احمد کی, پروگرام کا نام ہے غنچہ شوق. غنچہ شوق میں آپ آ سکتے ہیں, تو برے جہاں میں کوئی میرا یار تھا ہی نہیں, برے جہاں میں کوئی میرا یار تھا ہی نہیں, کسی نظر کو میرا انتظار تھا ہی نہیں, بھرے جہاں میں کوئی میرا یار تھا ہی نہیں, کسی نظر کو میرا انتظار تھا ہی نہیں, نہ ڈھونڈیے میری آنکھوں میں رجگوں کی تھکن, نہ ڈھونڈیے میری آنکھوں میں رجگوں کی تھکن, یہ دل کسی کے لیے بے قرار تھا ہی نہیں, سنا رہا ہوں محبت کی داستان اس کو, سنا رہا ہوں محبت کی داستان اس کو, میری وفا پہ جسے اعتبار تھا ہی نہیں, قتیل کیسے ہواؤں سے مانگتے خوشبو, قتیل کیسے ہواؤں سے مانگتے خوشبو, ہماری شام میں ذکر بہار تھا ہی نہیں, برے جہاں میں کوئی میرا یار تھا ہی نہیں, کسی نظر کو میرا انتظار تھا ہی نہیں. ہلو,
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟
3: ہم ہیں پاکستانی,
0: بالکل,
3: اور ہماری فوج ہے سب سے پیاری,
0: ماشاءاللہ.
3: حیدرآباد سے کال کرتے ہیں آپ کو, شاہد انصاری.
0: کیا بات ہے, شاہد انصاری, جس طرح آپ نے کہنا شاہد انصاری, اس کے ساتھ میوزک بھی ہونا چاہیے تھا, ڈنگ ڈنگ, ہے نا.
3: اب یہ دیکھو, وہ ہے کہ تیرا میرا کوئی نہ کوئی ناتا ہے, ورنہ کون کسی کا پیچھے آتا ہے رات کے 4 بجے, مجھے یہ بتاؤ.
0: ہاں یہ تو ہے, یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے.
3: آپ کی آواز سنی میرے بولا یار, یہ لگ تو وسیم بھائی کی آواز رہی ہے.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ.
3: مگر آپ بڑے سلو ٹیمپو میں رہے نا, میں نے بولا یار یہ شاعری تو مجھے ہضم بھی نہیں ہوتی ہے.
0: چلے بہت شکریہ, آپ نے کال کیا, کیا کہیں گے اس کے علاوہ, ٹاپک پہ بات کریں گے
3: کیا؟ ٹاپک پہ لمبی ہو جائے گی, مجھے آپ کو پتا ہے کہ گانے کا شوق ہے, تو میں آپ کو
0: جلدی جلدی سے سنا دے, جلدی سے
3: غزل سناؤں گا.
0: ہاں جلدی سے, تھوڑی سی,
3: ہاں ایک انترا,

0: बसात कदे जाना।
1: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
0: तेनू मांगों को बहलात कदे जाना।
1: बहुत शुक्रिया।
0: आने को ना तुम आए, की कौन से मजबूरी, खाना कोई जूता
1: ओहो ओहो हो हो, आपकी लाइन भी ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत आपने गजल भी हमें सुनाई, उसका भी बहुत शुक्रिया। याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। जो लोग हमारे दिल में समय होते हैं, उनको इतना भी याद ना कीजिए कि फिर उनके बगैर जी ना सके। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अनीला जी को वेलकम कहते हैं।
2: थैंक यू सो मच। और जो सुन रहे सबके लिए बहुत सी दुआएं। मेरा गला खराब हो गया
1: आज बिल्कुल आपका और आपके भाई का, यानी मेरा, दोनों के गले खराब है आज।
2: ऐसे ही है मेरा तो, सडनली मैं तो परेशान हूँ कि मेरे गले को क्या हो गया। वो मैं सोच रही थी कॉल ही ना करूँ, मैंने कहा नहीं, हिस्सा तो डालने जाना है ना।
1: जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तबीयत खराब होने के बावजूद और इतने रात को आपने आपको बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपका शुक्रिया अदा करने के।
2: ये तो हमें तो ऐसा लगता है हमारा फर्ज होता है कि हम जरूर
1: आए। जैसे वो फिल्म देखने जाते थे ना सिनेमा, उसमें तो उसमें पहले कौमी तराना, वो कहते हैं अब आप पर फर्ज है कि आप कौमी तराने के इतराम में बा अदब खड़े हो जाए।
2: तो हमारे भी कौन खड़े हो जाते हैं ना, बहुत मसीन भाई का शो है। अब देखे ना, आप भी तो इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से आते हैं,
1: आपने अपने लिए फर्ज बना लिए इसे, है ना।
2: बिल्कुल, तो आना बनता है फिर।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: स्टार्टिंग बड़ी खूबसूरत की आपने आके बुनियादन महसूस के बारे में, आपने जितना मतलब जो बताया सब वो, अब देखे ना कि पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में फ्लूट पाकिस्तान को दिया जा रहा है।
1: बेशक बेशक।
2: और टंके की चोट पे पाकिस्तान का नाम जो है ना बच रहा है।
1: बेशक बेशक।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी अफवाज को, हमारे मुल्क कौम को इसी तरह सलामत रखे और ढेरों कामयाबियां खुशियों से भरा रखे। और जितने भी हमारे भाई हैं सरहदों पर बैठे हैं इस वक्त, और हमारी जितनी भी अफवाज है, सबको सलूट, बहुत सी दुआएं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे इन शेरों को जो हमारी हिफाजत पे मामूर हैं। अल्लाह इनको अपनी हिफाजत में रखे।
1: आमीन आमीन
2: आमीन। और जबरदस्त टॉपिक आपका चल रहा था कि रिश्ते
1: जी।
2: हाँ, बात तो है ना, अब तो खलीफ खत्म ही हो गया है रिश्तों में से। बहुत कम ऐसा है, जैसे खास खास जैसे भी रोजी भी कह रही थी कि पेरेंट्स के दरमियान बहुत कम बहन भाई हैं जिनमें इस तरह का खलूस रह गया है। इंसानियत के नाते अगर ये कहे ना कि रह जाए तो शायद शायद, वरना नहीं है। अब तो इधर बहन कहती है कि ये मेरा हिस्सा है तो मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तो लूंगी भाई। हालांकि भाई बेचारा मजबूर होगा, वो डिजर्विंग होगा कि उसको दिया जाए, वो डिजर्व करता होगा कि उसको दे दे हम। नहीं जी नहीं, वाली पैदा नहीं होती। उधर भाई है तो वो हिस्सा देने से इनकार कर देंगे कि नहीं जी नहीं, बहन चाहे कितनी भी मजबूर है, साल वालों से बेचारी को पढ़ भी रही है, लेकिन नहीं देंगे। मतलब खलूस खत्म हो,
1: मतलब मुफाद परस्ती बहरहाल एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है,
2: करती है। अब तो कुछ ताल्लुक कैसे हो गए हैं कि शक्ल नहीं देखना गवारा कर।
1: शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते, फोन सुनना भी गवारा नहीं करते,
2: नहीं करते, बल्कि वो,
1: हालांकि ये मुआशरे की एक बहुत ही खौफनाक शक्ल है ये इस तरह के रवैये, इस तरह की चीजें जो है ना, ये खौफनाक हैं। इसमें अगर हम दोनों पार्टियां जो है ना, दोनों लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये नफरतें, ये दूरियां खत्म हो सकती हैं, अगर दोनों कोशिश करेंगे तो। वरना वो अगर एक बंदा कोशिश करेगा ना तो दूसरा कहेगा ये बेवकूफ है, इसको तो तरीका ही नहीं जिंदगी गुजारने का, ये अगर 100 रुपया खर्च कर रहा है, इससे दूसरा 100 भी छीन लो इससे। ये बेवकूफ है, वो ये कहेगा
2: हाँ ताली दोनों हाथों से बस।
1: हाँ सही बात है, अगर आप लीनियंट है ना, अगर आप हाँ। हेल्प करते जा रहे हैं, आप बिल्कुल सिंसियर हो गए चल रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए सारा कुछ करने को तैयार हैं, कर रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है, उसको नजर भी आ रहा है, फिर भी वो जब आप वहां से निकलेंगी ना या मैं निकलूंगा तो वो पीछे से हंसेगा, मजाक उड़ाएगा कि यार ये बिल्कुल पागल है, ये आजकल जमाने में ये इस तरह कर रहा है मेरे साथ, कौन करते हैं
2: मफाद पूरा जिसका होता है तो ऐसे अगले को परिचित रहे ना। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों अगर चाहेंगे तो ही ना, लेकिन अभी तो ये है कि एक कहता है कि बाहर में जाए जो भी है अपना काम निकालो और बस चलते बनो,
1: सही बात।
2: अब तो ये हाल है ना, अब ना आप किसी पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और किसी को अगर आप भरोसा करते भी हैं तो उसके लिए भी ना आपको बहुत बहुत सारी मसले मसाइल सोचने पड़ते हैं।
1: सही बात है, सही कह रही हैं।
2: तो दुनिया सिर्फ हमें चकमा देके अपना मुफाद निकाल के आगे निकल जाती है,
1: ऐसी ऐसी
2: तो जमाना ऐसा आ गया, डर लगता है। तो बहरहाल अल्लाह सबके लिए अच्छा करे, बेहतर करे, अच्छी गुफ्तगू, सब कॉलर आ रहे हैं सबके लिए बहुत सी दुआएं, सलाम मेरे बहन भाई जितने आते हैं, और वसीम भाई आपके लिए प्लीज पंजाबी के शो का कुछ करें आपको तो कहा है, आप टाइमिंग आपकी कुछ सेट नहीं हो रही शायद।
1: जी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह,
2: अल्लाह खैर करे। नहीं कोई ऐसा करें कोई आपका टाइम ही चेंज कर दे, मतलब अगर आप दिन में नहीं आ सक रहे हैं तो जैसे पहले आप 8 से 10 करते तो कुछ ऐसा ही हो जाए, क्योंकि काफी सारे डेज ऐसे हैं जिनमें कोई मेरा ख्याल बन सकता होगा,
1: डॉक्टर ठीक हो गया
2: जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। मैंने सोचा था दो लाइनें सुनाती हूँ अपने वतन के लिए।

0: सलाम कहती है
1: शहीदों।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: मैं भी हिस्सा डालूं आके अपने वतन के लिए।
0: बहुत अच्छा लगा, बड़ा जीती रहिए।
1: थैंक
0: यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ओके ओके, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम लियाकत भाई।
0: जी क्या बात है लियाकत भाई, आप इस वक्त जाग रहे हैं, वेलकम। बड़ा दिल खुश हुआ आपकी आवाज़ सुन के।
2: हाँ बस वो असल में वो आपका शो उधर शुरू हुआ, उधर मैं काम कर रहा था।
0: अच्छा,
2: तो हाँ मैंने क्या अब पूरा प्रोग्राम आपका सुन के तो फारिग हो के अब मैंने कॉल की।
0: चले चले, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे?
2: हाँ असल में वो यूं बिखरे हुए हैं क्योंकि असल में जो होता है ना मिलना जुलना खत्म हो गया, मिलना जुलना कम हो गया। देखें एहसास खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म हो।
0: क्यों क्यों खत्म कर दी, क्यों खत्म कर दी हम लोगों ने ये सारी चीजें?
2: ये देखे इंटरनेट आ गया, ठीक, वो इतना जदीद दौर आ गया और किसी को टाइम ही नहीं है।
0: टाइम ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। एक ये भी मेन मेन कॉज यही है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अब जाके गपशप लगाने का, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने का टाइम ही नहीं है। जब आप नहीं मिलेंगे तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी,
2: जब मिलेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, बरौने एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। बात ये हो रही थी कि क्या हकीकी रिश्तों में भी मुफाद परस्ती होती है। सभी लोगों ने कहा कि होती है, ऐसा क्यों है? हम भी तो शामिल हैं उसमें। हम दूसरे को इल्जाम दे देते हैं कि उससे मुफाद परस्ती है, वो अपने फायदे के लिए हमसे बात करता है, उसको अपना फायदा है, वो अपनी अपनी चीज हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए, रुपया पैसा हासिल करने के लिए, या किसी भी तरह से हमारे जो असर और सुख है उसको इस्तेमाल करवाने के लिए हमारे साथ मोहब्बत का रवैया रखता है। तो हम भी तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ करते हैं, ऐसा क्यों है दोनों तरफ से? अगर हम कोशिश करेंगे इस मुफाद परस्ती को खत्म करने की, बिल्कुल बेलॉस होने की, तो यकीनन अच्छाई जो है वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। कोशिश जारी कर दीजिए आज से ही, हम मिलके कोशिश जारी करते हैं, कोशिश शुरू करते हैं कि हम कम से कम अपने जो हकीकी रिश्ते हैं उनमें मुफाद परस्ती को कहीं, अव्वल तो कहीं भी नहीं आना चाहिए, मगर कम से कम अपने हकीकी रिश्तों में अपनी मुफाद परस्ती को पसे पुश डाल देंगे, दूर कर देंगे अपने से, तो इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की जानब बढ़ते चले जाएंगे, हकीकी मोहब्बत की जानब बढ़ते चले जाएंगे। हमीद गुल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहे हमेशा। कि आंखें चार कर ले तो अच्छा था, कि आंखें चार कर लेते तो अच्छा था, किसी से प्यार कर लेते तो अच्छा था, ताल्लुक गायबाना ही सही लेकिन यूं ही इजहार कर लेते तो अच्छा था। वाजी वाह, बहुत खूब हमीद गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से माज भी कहती हैं कि वो जैसे जख्म लगाकर हमें तस्कीन मिली, वो जिसे जख्म लगाकर हमें तस्कीन मिली, हमको महबूब वही शख्स रहा, एक दुनिया की तलब हम थे मगर हमको सदा हाय मतलूब वही शख्स रहा। बहुत शुक्रिया। और कह दिया कि नए सिरे से मोहब्बत की आरजू थी मगर नए सिरे से मोहब्बत नहीं हुई मुझसे, मैं जिम्मेदार हूँ तेरी उदास आंखों का, मैं मानता हूँ हिफाजत नहीं हुई मुझसे। बहुत शुक्रिया आपका माशबी। प्रेम के आखिर में आपके लिए एक खूबसूरत सा गीत है, उससे पहले नासिर काजमी का कलाम है, जब रात गए तेरी याद आई, सो तरह से जी को बहलाया, कभी अपने ही दिल से बातें की, कभी तेरी हद को समझाया। यूं ही वक्त गवाया मोती सा ही उम्र गवाई सोना सी सच कहते हो तुम भी हो सच कहते हो तुम भी हम सुखनो इस इश्क में हमने क्या पाया जब पहले पहल तुझे देखा था दिल कितने जोर से धड़का था वो लहर ना फिर दिल में जागी वो वक्त ना लौट के फिर आया फिर आज तेरे दरवाजे पर बड़ी देर के बाद गया था मगर फिर आज तेरे दरवाजे पर बड़ी देर के बाद गया था मगर एक बात अचानक याद आई मैं बाहर से ही लौट आया एक बात अचानक याद आई मैं बाहर से ही लौट आया एक और शेर मुझे याद है अहमद फराज का कि पहले पहल का इश्क अभी याद है फराज पहले पहल का इश्क अभी याद है फराज दिल खुद ये चाहता था कि रुसवाइयां भी हों इजाजत दीजिए अपने मेजबान वसीम अहमद को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी दुआ में जरूर याद रखिएगा इजाजत दीजिए अल्लाह